आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 24वीं तिथि तदनुसार 15 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 8:54 और 29 सेकंड्स हुए हैं। हमारी आज की सभा अब शुरू होती है।

हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए हमारे आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

शाम 7 बजे सुनिएगा कार्यक्रम खेती बाड़ी। रात 8 बजे आप सुनेंगे लोकगीतों का फरमाइश फरमाइशी फन इन कार्यक्रम हेलो गौरबंद।

रामचरितमानस गाना आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर और 9:20 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना में सुनेंगे कुछ भक्ति रचनाएं। लोकगीतों का कार्यक्रम गोरबंद आप सुनेंगे सुबह 9:40 पर और 6:20 पर होगा कार्यक्रम माटी के स्वर।

फिल्म संगीत आपको सुनाया जाएगा सुबह 10 बजे, गाने पुराने ज़माने के में, और 10:30 पर आप सुनेंगे गाने नए तराने नए में, और इसके साथ ही शाम 6:05 पर भी फिल्म संगीत सुनाया जाएगा।

शाम 5 बजे युवा दोस्तों के लिए होगा कार्यक्रम युवाणी, और 5:30 पर आप सुनेंगे बहनों का कार्यक्रम पणिहारी। रात 9 बजे सुगम संगीत के प्रोग्राम में आप सुनेंगे चंद गजलें।

कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे हमारे आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी नागौर के चिन्मय चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से अमृत महोत्सव की शुरुआत। उद्घाटन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भाग लेंगे। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की प्रसव पूर्व जांच के लिए

0: आज से विशेष अभियान। भूमि पर प्राकृतिक गैस उत्पादन में राजस्थान देश भर में दूसरे और कच्चे तेल के उत्पादन में तीसरे स्थान पर। और गिवअप अभियान के माध्यम से प्रदेश भर में 99 लाख जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से अमृत महोत्सव शुरू हो रहा है। विधानसभा परिसर में होने वाले उद्घाटन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल होंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का समापन सत्र में शिरकत का कार्यक्रम है। इस दौरान राज्य के लोकतांत्रिक विकास, ऐतिहासिक कानूनों, संसदीय परंपराओं और डिजिटल विधानसभा के भविष्य पर मंथन होगा। वहीं वर्तमान और पूर्व विधायकों का समागम रहेगा। अमृत उत्सव के तहत साल भर तक विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसका समापन अगले साल राजस्थान स्थापना दिवस पर होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि समारोह में 6 और उससे अधिक बार रहे पूर्व विधायकों का सम्मान भी किया जाएगा।
1: सन 1952 में पहली बार चुनाव हुए और ये 16वीं विधानसभा है, तो इस 16वीं विधानसभा तक जो भी विधायक अभी हमारे बीच में है उन सबको इसमें सादर आमंत्रित किया है कि जो 6 बार से अधिक विधायक रहे ऐसे लगभग 26 लोग हैं जिनका सम्मान भी हम लोग करेंगे और उनके सम्मान के साथ साथ जो आज तक अध्यक्ष रहे जो उनका भी सम्मान समारोह होगा। तो इस तरह कुल मिला के 33 लोगों का उसे सम्मान किया जाएगा।
0: प्रदेश में सभी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य मानकों की सघन स्क्रीनिंग के लिए आज से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 5 दिन तक चलने वाले इस अभियान में गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच की जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने जयपुर में बैठक कर वीसी के माध्यम से सभी चिकित्सा अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर, एएनएम और सीएचओ के जरिए स्क्रीनिंग का ये काम करवाया जाएगा। श्रीमती राठौड़ ने प्रत्येक गर्भवती महिला की 4 गुणवत्तापूर्ण ANC जांच अनिवार्य रूप से कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि ज्यादा जोखिम वाली गर्भावस्था के लिए अलग से ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जाएगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि बीमित कामगारों और उनके परिवारों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने हैदराबाद से वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान सहित देश भर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 7 स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके तहत कोटा और भवानी मंडी में ESI औषधालय और शाखा कार्यालय शुरू किए गए हैं। कोटा और भवानी मंडी में आयोजित कार्यक्रमों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योग प्रतिनिधियों और जन प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वेस्ट जोन के बीमा आयुक्त रामजीलाल मीणा ने बताया कि इन केंद्रों से औद्योगिक क्षेत्रों के बीमित श्रमिकों और उनके आश्रितों को चिकित्सा तथा ESI की प्रशासनिक सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी।
2: यहाँ इन 2 स्थानों पर लगभग 85,000 परिवारों को ESIC की चिकित्सा और नकदी तलाब की सुविधाएं प्राप्त होगी। ये जो उद्योग नगर कोटा वाला जो डिस्पेंसरी है ये 5 डॉक्टरों वाला डिस्पेंसरी और यहीं पे शाखा कार्यालय है, तो यहीं चिकित्सा लाभ भी मिलेगा और यहीं नकदी तलाब भी मिलेगा।
0: विश्व युवा कौशल दिवस पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। करौली में युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए ITI तथा कौशल विकास संस्थानों में प्रशिक्षण, करियर मार्गदर्शन और प्रेरक व्याख्या

0: भूमि पर प्राकृतिक गैस उत्पादन में राजस्थान देश भर में दूसरे और कच्चे तेल के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। माइंस और पेट्रोलियम विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने कल जयपुर में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के चार बेसिन हैं। इनमें जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, बीकानेर, नागौर और विंध्यन बेसिन शामिल है। इनमें से तीन में तेल की खोज और दोहन का काम हो रहा है। श्रीमती अरोड़ा ने कच्चे तेल और गैस का एक्सप्लोरेशन और दोहन कर रही संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों को उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग करने को कहा। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि राजस्थान में उत्पादित कच्चे तेल का राज्य की रिफाइनरी में ही परिशोधन हो ताकि प्रदेश के आर्थिक विकास में योगदान दिया जा सके। वीबी जीरामजी योजना के तहत श्रम नियोजन में राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में आयोजित योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी। श्री शर्मा ने अधिकारियों को सभी विभागों के साथ मिलकर ग्रामीण विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने योजना के तहत ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और स्थायी तथा गुणवत्तापूर्ण कामों को प्राथमिकता देने को कहा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पशु रोग नियंत्रण को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा भी की। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा है कि प्रदेश में चलाए गए गिवअप अभियान से 99 लाख पात्र जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिला है। वे कल बीकानेर जिले के कोलायत में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत 67 लाख अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा, जबकि 27 लाख लोगों ने EKYC नहीं करवाई। इससे पात्र परिवारों को योजना से जा सका। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा से वंचित ना रहे। इस अवसर पर मंत्री ने लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा प्रमाण पत्र भी वितरित किए। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने राजस्थान में मुनाबाव से तनोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोबाइल नेटवर्क सुविधाओं की गुणवत्ता का आकलन कर रिपोर्ट जारी की है। पिछले महीने 311 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर किए गए ड्राइव टेस्ट में मोबाइल कवरेज, कॉल की गुणवत्ता, कॉल ड्रॉप और इंटरनेट की गति का परीक्षण किया गया। और ब्यौरा समाचार कक्ष से।
1: ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल हाईवे 70 पर अधिकांश स्थानों पर मोबाइल सेवाएं उपलब्ध रही, हालांकि कुछ हिस्सों में नेटवर्क कवरेज की कमी और कॉल ड्रॉप की समस्या भी सामने आई। परीक्षण में 5G नेटवर्क पर डाउनलोड गति 40 से 55 MB प्रति सेकंड तथा अपलोड गति 7 से 14 MB प्रति सेकंड तक दर्ज की गई। ऐसे परीक्षणों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को मोबाइल सेवाओं की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को नेटवर्क में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करना है। रिपोर्ट संबंधित सेवा प्रदाताओं के साथ साझा कर दी गई है। समाचार कक्ष से जय किशन शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से अमृत महोत्सव की शुरुआत। उद्घाटन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भाग लेंगे। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की प्रसव पूर्व जांच के लिए आज से विशेष अभियान। भूमि पर प्राकृतिक गैस उत्पादन में राजस्थान देश भर में दूसरे और कच्चे तेल के उत्पादन में तीसरे स्थान पर। और गिवअप अभियान के माध्यम से प्रदेश भर में 99 लाख जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रामचरित मानस गान।

संतान के आसन्न विरह में तड़पते सिर धुनते राजा दशरथ ने पुत्र वधु को अनेक प्रकार से वनगमन से विमुख करने की चेष्टा की। संकोचवश सीता ने प्रतिवाद नहीं किया, किंतु उनका मन श्री राम के चरणों में अनुरक्त था, अतः उन्हें पति को छोड़कर घर में रहना श्रेयस्कर नहीं लगा और न ही वनगमन भयावह लगा। कैकेयी ने तमक्कर मुनियों के वस्त्र माला मेखला आदि और कमंडलू राम के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। प्रेम के वश में दुर्बल हृदय वाले राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ सकते। उनके पुण्य यश और परलोक भले ही बिगड़ जाएं, वे तुम्हें वन जाने को भी नहीं कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता कैकेयी की सीख श्री राम को भली लगी, किंतु राजा दशरथ को ये वचन वाण की भांति लगे और वो मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को सोच नहीं पड़ता कि वे क्या कहें। श्री राम मुनि का वेश धारण कर माता पिता के सम्मुख शीश नवाकर चल पड़े। राजमहल से निकलकर वे कुलगुरु वशिष्ठ के द्वार पर आ खड़े हुए। वहां ब्राह्मणों तथा याचकों की टोली को वर्षासन देकर उन्होंने दास दासियों को गुरु को सौंपा और हाथ जोड़कर कुलगुरु से प्रार्थना की कि वे माता पिता और पालक की भांति उनकी देखरेख करें। अयोध्या वासियों से उनकी प्रार्थना थी कि वे माता पिता को किसी भांति का कष्ट न होने दें।

अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। सुबह के 9:20 हुए हैं। लीजिए भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में सुनिए कुछ भक्ति रचनाएं। पहले सुनिए सुरेश वाडेकर के स्वर में

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लीजिए अब सुनिए अनूप जलोटा की गाई ये भक्ति रचना।

0: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: यह कार्यक्रम का अंतिम भक्ति गीत स्वर हरिओम शरण के।

आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम गोरबंद। इसमें हम आपको पहले सुनवा रहे हैं अनुराधा प्रकाश का गाया ये लोक गीत।

अनुराधा प्रकाश के स्वर में अभी आपने सुना लोकगीत, और लीजिए अब सुनिए नेक मोहम्मद लंगा का गाया ये लोकगीत।

आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम गौरबंद। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत में गाने पुराने जमाने के।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लीजिए प्रोग्राम का अगला गीत सुनिए, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के ही स्वर में, फिल्म का नाम माँ और ममता।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

फिल्म संगीत में अभी आप सुन रहे थे गाने पुराने जमाने के। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। 10:30 हुए हैं। लीजिए फिल्म संगीत के अंतर्गत ही सुनिए गाने नए तराने नए। इस प्रोग्राम का पहला गीत पेश है फिल्म माई नेम इज खान से। आवाजें हैं राहत फतेह अली खान, शंकर महादेवन और ऋचा शर्मा की।

0: लीजिए अब सुनिए, दे दे प्यार दे फिल्म का गीत, इसे गाया है सुनिधि चौहान और नवराज हंस ने।
1: We are controlling transmission.

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

आइए अब सुनते हैं आई हेट लव स्टोरी फिल्म का गीत। इसे गाया है शेखर रविजानी ने।

सुनिधि चौहान की आवाज में ये था फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई फिल्म का गीत। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं अजब प्रेम की गजब कहानी का ये गीत, जिसे गाया है हार्ड कॉर्न ने।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत के अंतर्गत गाने नए तराने नए। हम आकाशवाणी नागौर के चिरवी चैनल से बोल रहे हैं। 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण मुंबई केंद्र से।
1: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

मेरा नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली, मुन्ने मियां बधाई बनो

मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में कव्वाली अभी आप सुन रहे थे अधिकार फिल्म से। रमेश पंत ने इसे लिखा और आरडी बर्मन का संगीत था। आप इस वक्त सुन रहे हैं रंग तरंग। लीजिए इस प्रोग्राम की अगली पेशकश।

0: अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा था। आप सुन रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम रंग तरंग विविध भारती से।
1: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो है विवेक रंजन श्रीवास्तव।
2: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य एक स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
1: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मेड इन इंडिया, ये था एल्बम का नाम और अलीशा की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। बिटू का संगीत था। इस वक्त आप सुन रहे हैं रंग तरंग।

0: सोनू निगम की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, दीवाना एल्बम का नाम था। साजिद वाजिद ने म्यूजिक दिया और फैज अनवर ने इसे लिखा था।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: कार्यक्रम रंग तरंग की ये पेशकश थी दीवाना एल्बम से सोनू निगम की आवाज में। ये गीत अभी आप सुन रहे थे।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग और ये है उसकी अगली पेशकश।

हम किसी से कम नहीं, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में कव्वाली अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और आरडी बर्मन की तर्ज थी। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम रंग तरंग यहीं संपन्न होता है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, सीमा शुल्क प्राधिकरण और अन्य हितधारकों के सहयोग से 15 जुलाई की दोपहर को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसमें भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की शुरुआत के उपलक्ष्य में निर्यात खेप ब्रिटेन को भेजी जाएगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता और सामाजिक सुरक्षा समझौता लागू हो गए हैं, जिससे भारत के लगभग 99% निर्यात पर 0% शुल्क के साथ बाजार पहुंच प्राप्त होगी और द्विपक्षीय व्यापार मूल्य का लगभग 100% हिस्सा इसके अंतर्गत आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ज्ञान से बुद्धिमत्ता उत्पन्न होती है, कौशल विकास को गति देता है और स्वस्थ जीवन हर आकांक्षा को साकार करने की शक्ति प्रदान करता है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आज के युवा इन गुणों को अपना रहे हैं और राष्ट्र की पहचान को और मजबूत कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता के कामकाज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे महान नेताओं में से एक बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमिट विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि के कामराज भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक मजबूत स्तंभ और एक असाधारण सार्वजनिक व्यक्तित्व थे। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार विकसित भारत के सपने को साकार करने की सबसे मजबूत नींव है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज जगन्नाथ राव जोशी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक केसरी जगन्नाथ राव जोशी एक देशभक्त कर्मयोगी थे, जिन्होंने गोवा में परमिट राज को समाप्त करने के लिए अमानवीय अत्याचार सहे। उन्होंने कहा कि भाजपा के आदर्शों और संगठन को पूरे देश में फैलाने में जोशी जी की राजनीतिक सूझबूझ युवा नेताओं को प्रेरित करती रहेगी। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
1: The Security Council has been ineffective.
2: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
1: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
0: हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अन्य देशों के लिए हुर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए ये रास्ता बंद रहेगा। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल हुर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 495 अंक की वृद्धि के साथ 77,550 पर, जबकि निफ्टी 147 अंक बढ़कर 24,191 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे आशी की फिल्म से। समीर ने इसे लिखा और नदीम श्रवण का संगीत था। आज यादों की महफिल में वो गीत जो जिंदगी से जुड़े हैं और जीवन से जुड़े हैं, ऐसे गीत आपको सुनवा रहे हैं। फिलहाल फेरिस्त में ये अगला गीत।

भूपिंदर और अनुराधा पौड़वाल की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। दूरियां फिल्म का नाम था, सुदर्शन फाकिर ने इसे लिखा। अब वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का।

0: डियर जिंदगी, ये था फिल्म का नाम। जसलीन की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, कौसर, मुनीर ने इसे लिखा और अमित त्रिवेदी का संगीत।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं जिंदगी और जीवन शीर्षक से जुड़े गीत।
3: तुमसा कोई दूसरा इस समय पे हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी।

0: काला पत्थर। इस फिल्म से अभी ये गीत सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सखियों की आवाजों में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और राजेश रोशन का संगीत था। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है

0: का एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: प्रोग्राम यादों की महफिल की अगली पेशकश लीजिए सुनिए।

मेरी जंग इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

छुपा सकता नहीं। कितनी दिलकश

0: उदित नारायण और अलका याग्निक को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी कसूर। समीर ने इस गीत को लिखा, नदीम श्रवण का संगीत।
1: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो है विवेक रंजन श्रीवास्तव।
2: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य एक स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।

0: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

मासूम फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे अनूप घोषाल की आवाज में। गुलजार ने इस गीत को लिखा था आरडी बर्मन की तर्ज। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न होता है।

विविध भारती के बाकी प्रोग्राम्स आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचारों के बाद। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमिर चैनल से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने को है, अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सदन में हंगामे से नहीं बल्कि सार्थक बहस और तर्कपूर्ण चर्चा से जनप्रतिनिधि अपनी पहचान बनाते हैं। वे आज राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव के तहत विधायी गौरव यात्रा कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में लोकतांत्रिक संवाद और विचार विमर्श की समृद्ध परंपरा रही है। उन्होंने विधानसभा को लोकतंत्र की पाठशाला बताते हुए कहा कि सरकार को जनप्रतिनिधियों की आलोचना भी गंभीरता से सुननी चाहिए, क्योंकि उनके माध्यम से ही जनता की वास्तविक समस्याओं की जानकारी मिलती है।
1: अगर कोई मंच होता है तो लोकतंत्र के अंदर विधायी संस्थाएं होती है जहां से आप बेहतर शासन चला सकते हो। तो मेरा मानना है कि समय परिवर्तनशील है और समय परिवर्तनशील के समय अभी एक उत्तरदायी जवाबदेही शासन भी होना चाहिए, उत्तरदायी जवाबदेह जनपद भी होना चाहिए। अब समय गया, समय के साथ हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज जनता जवाबदेही उत्तरदायी प्रतिनिधि मानता है, आज जनता उत्तरदायी जवाबदेही शासन मानती है।
0: सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान विधानसभा की 75 वर्ष की यात्रा लोकतंत्र की गौरवशाली विरासत का प्रतीक है। श्री शर्मा ने कहा कि वरिष्ठ विधायकों ने प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा सदन में अकाल, बिजली और जनहित से जुड़े अनेक मुद्दों पर सार्थक चर्चा के साथ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
2: जनप्रतिनिधि होने के नाते विधानसभा के माध्यम से उन विषयों को आगे बढ़ाने का काम किया। आपने राजस्थान की प्रगति में अपना योगदान दिया, लेकिन एक बात मैं जरूर अवश्य कहूंगा कि आप सभी ने जिस तरह से राजस्थान की परंपरा रही है, क्योंकि ये हमारे संस्कार में, ये हमारे विचार में है और इस विचार और संस्कार के माध्यम से आपने संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए हमारे राजस्थान को गति देने का काम किया।
0: कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई पूर्व और वर्तमान विधायक शिरकत कर रहे हैं। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, सीमा शुल्क प्राधिकरण और अन्य हितधारकों के सहयोग से आज दोपहर कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की शुरुआत के उपलक्ष्य में निर्यात खेप ब्रिटेन को भेजी जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज बांसवाड़ा जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और हाल में प्रसूताओं की मृत्यु के मामलों के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। श्री खींवसर इसके बाद विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं और सुदृढ़ बनाने तथा उपचार व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। भीलवाड़ा जिले के आसींद में आज तड़के एक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार ब्राह्मणों की सरेरी गांव के पास राजमार्ग पर एक कार गड्ढे से बचने के प्रयास में अनियंत्रित होकर सामने से आ रही मोटरसाइकिल से टकरा गई। मृतकों में एक युवक भीलवाड़ा जिले का जबकि 2 युवक बिहार के रहने वाले थे और भीलवाड़ा में केटरिंग का काम करते थे। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक पंकज शर्मा ने रेल संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जयपुर स्थित उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने अधिकारियों से यात्री सुविधाओं, स्वच्छता, निर्माण कार्यों और कवच प्रणाली से जुड़े काम समय पर पूरा करने को कहा। साथ ही मानसून के दौरान रेलवे ट्रैक, विद्युत और सिग्नल प्रणाली की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी नागौर के सिनुशंगन से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं, आप फिर से सुनेंगे विविध भारती।
4: युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 015-82-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युवावाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे आंखें फिल्म से साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और रवि का संगीत। वैसे इस गीत को बहुत से श्रोताओं ने समझ लिया था, जान लिया था और लिख भी दिया था, तो सबसे ज्यादा जो कमेंट्स हमारे पास आए इसी एक गीत के जो भी आपने सुना है उसके आए थे और बहुत से प्यारे प्यारे संदेश हैं। रिश्ते वो बड़े नहीं होते जो जन्म से जुड़े होते हैं, रिश्ते वो बड़े होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। कितने अनमोल है ये रिश्ते, कोई याद न करे तो भी उनसे मिलने की एक उम्मीद रहती है, हमारे श्रोतागण लिखते हैं। और सचमुच यही रिश्ता है आपका, आप श्रोताओं का हमसे, यानी कि विविध भारती से, ये हमेशा बना रहे। एक और श्रोता लिखते हैं कि सितम दिल रिश्ता यार, इन शब्दों से सजे आज गीत सुनेंगे और एंजॉय करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश तीन अलग अलग भावनाओं को बयां करता हुआ प्रतीत हो चला है, जहां एक और सच्चे रिश्ते की आहट है तो दूसरी ओर प्यार की दास्तां, और वहीं तीसरा पहलू यादों और ख्वाबों की दुनिया रच रहा है, यानी जीवन के मिश्रित एहसासों को समेटे हुए यादों और ख्वाबों से सजाए हुए प्यार के रिश्ते जीवन यात्रा को अनंत अभिलाषा और इच्छाओं तक पहुंचा देते हैं। बिल्कुल, ये सभी मिले जुले रूप आज आपको इस प्रोग्राम में मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत को पढ़कर तो ऐसा लग रहा है कि काश प्यार ना किया होता तो अच्छा होता, क्योंकि पहले कर्म फिर सितम फिर अपने प्यार के लिए रोना गिड़गिड़ाना, अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, दिन रात उसी में लगे रहिए। लेकिन ये भी है कि प्यार एक ऐसा एहसास है कि हर कोई अपनी जिंदगी में से गुजरता जरूर है, और वो कहते हैं ना कि जरूर करना चाहिए, प्यार इंसान को बदल देता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये भारत जीवन के एक सुंदर उत्सव का सजीव चित्र प्रस्तुत करती है, जहां प्रेम स्मृतियां और आत्मीयता मिलकर हमारे रूखे जीवन को एक सजीव कलाकृति में बदल देते हैं। बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय जीवन के विविध रंगों का मिलन है और गीत इन्होंने लिखा है जो कि हम शामिल कर सकते हैं, देखते हैं अब कितने सारे गीत शामिल होते हैं आपकी पसंद के। चलिए बिना देरी के अगला गीत आपको सुनवाते हैं और देखते हैं कि कितने सारे लोगों ने ये गीत लिखा है लिस्ट में, और उसके बाद हम अपने सवाल जवाबों पर भी आएंगे। प्रोग्राम का ये अगला गीत

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे प्रियतमा, फिल्म का नाम, योगेश ने इसे लिखा और राजेश रोशन का संगीत। आपके खूबसूरत संदेश हम तक पहुंच चुके हैं और इस गीत की डिटेल्स भी हम तक पहुंच चुकी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सच्ची मोहब्बत जिंदगी का वो खूबसूरत ठहराव है जहां वक्त के सितम और हर दर्द भी प्यार में बदल जाते हैं। रूह से जुड़े ऐसे पाक रिश्ते किसी नाम या पहचान के मोहताज नहीं होते। बिल्कुल सही लिखा आपने। एक और श्रोता लिखते हैं कि रिश्ता नाम का मोहताज नहीं होता, ये तो विश्वास, अपनापन, सम्मान और सच्चे एहसास से बनता है। कई बार खून के रिश्ते भी दूर हो जाते हैं और कुछ अनजाने लोग दिल के इतने करीब आ जाते हैं कि जीवन का अहम हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि ख्वाबों की दुनिया बेहद खूबसूरत होती है, कभी बादल, कभी पानी, कभी कोई जुदा हो गया तो फिर सपनों में आकर मिल जाता है और हम खुश हो जाते हैं। कभी कभी ख्वाब में रिश्ते टूट जाते हैं और सपने में टूटते ही वो रिश्ते भी टूट जाते हैं। रिश्तों की डोर भी नाजुक होती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। सपनों के साथ और हकीकत के साथ एक बिल्कुल महीन सी एक रेखा होती है उसके बीच। बस ये जरूर है कि मन उड़ उड़ कर उस तरफ जाना चाहता है, यानी कि सपनों की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि जो हकीकत में नहीं मिलता उसे कहीं ना कहीं वहां प्राप्त करना चाहता है, वहां उसे पाकर आनंदित होना चाहता है। हमारे पहले गीत के बारे में

बात करते हुए एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी के सफर में कभी सितम मिलते हैं तो कभी दिल को छू लेने वाला प्यार मिलता है। सच्चा रिश्ता वही होता है जो हर दर्द को मुस्कुराकर सहले और हर मुश्किल में साथ निभाए। बिल्कुल, रिश्ता अगर सच्चा हो तो दर्द की गुंजाइश ही नहीं रहती, सिर्फ प्यार ही प्यार होता है दो दिलों के बीच में, ऐसा भी कहना है हमारे एक श्रोता का। तो ये एक्सपीरियंस की बात है और जिस तरह से हमारी जिंदगी गुजर रही है हर किसी का अपना अपना अनुभव है। बिल्कुल, और इसीलिए तो हम यहाँ पर साझा करते हैं अपने विचार ताकि हर कोई अपने बारे में अपने अनुभवों के बारे में लिख पाए। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सितम अपनों के अक्सर हमें अंदर तक तोड़ देते हैं क्योंकि अपनों से चोट की उम्मीद कोई नहीं करता। ऐसा दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है और साहिर लुधियानवी ने अपनी मशहूर शायरी में भी इस दर्द को घोल डाला है और वो गीत बहुत प्यारा है, ऐसा इन्होंने लिखा। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे जो हिंदी सिनेमा के गीतकार हैं उनको पूरा क्रेडिट जाता है, पूरा श्रेय जाता है इसके लिए। और हर एहसासों को उन्होंने इस तरह से पिरोया है कि हमें लगता है वो हमसे जुड़ा हुआ है, हर गीत हमसे जुड़ा है। लेकिन ये भी है कि जिंदगी में कुछ भी एक सा नहीं होता, बदलाव तो रहता ही है, जीवन बदलता रहता है, स्थितियां बदलती रहती है और मौसम भी तो बदलता रहता है। मौसम का काम ही बदलना है, कहते हैं ना कि मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे, तो ऐसा ही कुछ है। अगला गीत समा के ऊपर आप सुनिए और साथ ही साथ क्यों ना, ये जो मौसम बदलता है इसी तरह से बहुत से परिवर्तन हमारी जिंदगी में आते हैं, तो ऐसे कौन से परिवर्तन हैं जिन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन वो आदतें एक बार अगर आ जाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। आप मुझे लिखें, मैं इंतजार कर रही हूं आपके संदेशों का।

जमीन आसमां। इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और आरडी बर्मन की तर्ज थी, जैसा कि आप सब लोगों ने अपने संदेशों में भी लिखा है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि क्या बात है, उनकी फहरिस्त से मिलते जुलते ये तीसरे नंबर का गीत भी शामिल हो गया है, ऐसा समाना होता, और बहुत दिनों के बाद ये हैट्रिक लगी है और वो बहुत खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी खुशी में हमारी खुशी है। दूसरे श्रोता हमारे एक लिखते हैं धुनों के बारे में, और उन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम के शुरुआत में अनाउंसमेंट उद्घोषणा के पहले जो हमने फिलर बजाया था उसके बारे में वर्णन किया है, साथ ही साथ उन्होंने और भी जो हमने फिलर्स बजाए थे उसके बारे में लिखा है और पूरा जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा समाना होता इसमें भी ये बेहतरीन बांसुरी का प्रीलूड यूज किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, रोनू मजूमदार जी ने बजाया, साथ में गिटार और वाइब्रेटोन। ऐसा समाना होता, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत खुशी होती है जब हमें ये सब आप लिखकर भेजते हैं और

अच्छा लगता है कि गीतों के साथ साथ जो म्यूजिक या फिर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए हैं उसके बारे में भी आप सोचते हैं, उसे इतने संजीदा तरीके से सुनते हैं और लिखते हैं। धन्यवाद। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सितम करने वाले से ज्यादा सितम सहने वाले को पता होता है, फिर भी वो सहता है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कोई दूर हो या पास, पर प्यार उसके लिए हमेशा हो। कभी साथ कभी दूर, लेकिन हर परिस्थिति में प्यार होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए सुरीला सफर को आगे बढ़ाते हैं और ये अगला गीत सुनते हैं। इसमें आप मुझे बताएं कि अभिनेता और अभिनेत्री इस गीत को जिन पर फिल्माया गया है वो कौन है, वो मुझे लिख भेजिए। और साथ ही साथ हम जहां परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि मौसम किस तरह से बदल जाता है, कभी बहुत ज्यादा भीषण गर्मी थी, फिर बरसात आई तो बस बरसात ही बरसात, उससे परेशान हो गए कुछ लोग लगातार बारिश से, और अब मौसम बहुत खुशगवार है। तो ये जो बदलाव है, इसी तरह हमारी जिंदगी में भी कुछ परिवर्तन हमें करने होते हैं अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए। कुछ ऐसे आदतें, कुछ ऐसी चीजें जो हम अपनी सेहत में ठीक हो, अच्छी हो, इसीलिए अपनाते हैं। हालांकि वो हमें कुछ खास पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी हमें उन्हें अपनाते हैं। तो ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपने अपनाई है अपनी सेहत के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, और जो आपको पसंद नहीं है लेकिन फिर भी आपके लिए अच्छी है?

लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में ये नाखुदा फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। और आपका अंदाजा एकदम सही है, बिल्कुल ये फिल्म आया गया है राजकिरण और स्वरूप संपत पर। बिल्कुल हमारे श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर चल रहा है जिसमें विविध भारती के गीतों की झड़ी लगी है। सचमुच सुरीले सफर में एक से बढ़कर एक गीत है और दिल को खुश कर देते हैं ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि जहां पर आदत की बात की गई वहां सुबह सूरज के उगने से पहले जाग जाते हैं और ध्यान योग करते हैं। दैनिक दिनचर्या में शामिल करने से आपका जो स्वास्थ्य है और आयु है उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि समय कोई बांध नहीं सकता क्योंकि निरंतर चलता रहता है, हम सभी को समय के साथ ही चलना चाहिए। बिल्कुल, एक ऐसी आदत है जो हमें जरूर शामिल करनी चाहिए अपनी जिंदगियों में, और अक्सर हम समय की कद्र थोड़ा सा कम करते हैं, थोड़ा सा लेट पहुंचते हैं, या फिर हमारी जो टाइमलाइंस होती है, जो हमने अपने आप को वक्त दिया रहता है उस वक्त से भी हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, समय पर अपना काम समाप्त नहीं करते, जिससे कि बाद में वो जो काम है वो बस इकट्ठा होता चला जाता है और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस और इन सब चीज़ों का, परेशानियों का सबब बनता है। तो ज़रूर जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, समय को किस तरह से अच्छी तरह से मैनेज किया जाए वो बहुत ज़रूरी है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, बारिश का नामो निशान तक नहीं है। जी हाँ, लेकिन मौसम है, मौसम तो बदलेगा जरूर, मौसम निरंतर चलता रहता है और लेकिन बदलता भी रहता है, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, बारिश भी जल्द ही होगी। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सुबह जल्दी उठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उठते हैं क्योंकि पूजा और योग दोनों रह जाते हैं नहीं तो, और फिर पूरा दिन ऐसा लगता है कि ना तो योग किया और ना ठीक से पूजा की, और फिर दूसरे जो काम है वो सब रहते हैं। तो हालांकि इन्हें पसंद नहीं है लेकिन फिर भी इन्होंने इस आदत को अपनी ज़िंदगी में शुमार किया है कि जल्दी उठना है। और ऐसा भी कहते हैं ना कि कुछ दिन यानी कि 21 दिन तक अगर आप एक आदत को करें तो वो फिर आपकी ज़िंदगी में, दिनचर्या में शामिल हो जाती है। तो बस वो जो शुरुआत के कुछ दिन हैं, शुरुआत के कुछ स्टेप्स हैं, शुरुआत के कुछ कदम हैं, बस वो उठाने में वक्त लगता है। बिल्कुल। सुरीला सफर में अब दिल को छू देने वाला एक और गीत आपको सुनवाते हैं। वैसे तो सभी गीत दिल को छू लेते हैं लेकिन ये गीत, यहां पर एक शब्द छुपा है।

याराना फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज में अनजान ने इसे लिखा और राजेश रोशन का संगीत था। आदतों की बात की जाए जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अभी तो मैंने बहुत देर से आपका प्रोग्राम जो है ज्वाइन किया है, जुड़ा हूँ, कुछ तो मिस कर दिया है, तो अब समझ में आ रहा है कि वक्त से जुड़ना बहुत जरूरी है। हमारे एक और श्रोता के लिखते हैं कि पहले वो बहुत ज्यादा खर्चा किया करते थे, लेकिन अब बचत को ध्यान में रखते हुए एक आदत अपना ली है कि अब बचत पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल सही, और कहते हैं ना कि मौके और मुसीबत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, तो मौका या मुसीबत कुछ भी आए उसके लिए आप हमेशा से तैयार रहिए, और बचत तो बहुत जरूरी चीज है जिंदगी में। एक और श्रोता लिखते हैं कि बुजुर्गों के लिए नियमित मॉर्निंग वॉक ही स्वस्थ रहने का एकमात्र विकल्प है, और ये प्रतिदिन कम से कम 5 किलोमीटर या अधिक से अधिक 8 किलोमीटर वॉक करते हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सुबह उठकर छत पर बैठ जाते हैं और योगासन करते हैं, ध्यान करना अच्छा लगता है, और जब सूर्य देवता उदय होने लगते हैं तभी वो सूर्य नमस्कार करते हैं, और कुछ देर तक सूरज की किरणों को देखना भी अत्यंत सुख देता है, जो कि नेत्र ज्योति में भी बढ़ावा करता है, वृद्धि।

जी हाँ बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि ऐसे ही कुछ एक चीजें हैं जो वो पहले कतराते थे करने के लिए, लेकिन अब उन्होंने छोटी छोटी आदतों से शुरुआत की है अपनी जिंदगी में उन्हें शामिल करने की, क्योंकि वो अच्छी है। जी हाँ, स्वास्थ्य संबंधी चीजें तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी आदतें आप हमें बता सकते हैं, जैसे कि किसी चीज को ना कहना। ऐसा भी होता है कि हम किसी के कहने पे वो चीज करते चले जाते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं होता है, या फिर हमें उतनी क्षमता नहीं होती है, लेकिन अगर अगले को बुरा लग जाए तो, रिश्ता टूट जाए तो, किसी को अपमानजनक लगे तो, हम उन चीजों को करते चले जाते हैं बगैर मन के और बगैर क्षमता के, तो ऐसा भी होता है। तो कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी बातें जो आप चाहते हैं कि नई पीढ़ी से भी सीखें और अपनी जिंदगी में शामिल करें, वो भी आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट में, मैं इंतजार कर रही हूं। फिलहाल हम चलते हैं अपने दूसरे गीत की तरफ।

सनम तेरी कसम इस फिल्म से गीत था किशोर कुमार की आवाज में, गुलशन बावरा ने इसे लिखा और आर डी बर्मन की तर्ज। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इसीलिए तो ये गाना बना है, नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, कि हम नाना भी करते हैं लेकिन फिर भी वो काम कर लेते हैं। जी हाँ। एक और श्रोता लिखते हैं कि हंसने से पीड़ा दूर होती है, तो हंसना जरूर चाहिए, ये एक ऐसी आदत है जिसे अपनी जिंदगी में जरूर जरूर शामिल करना चाहिए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सालों पहले उन्होंने भावनगर वैशाली टॉकीज में याराना और कालिया एक साथ देखी थी और इन्हें ये गीत सुनकर वो याद आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि छू के मेरे मन को ये गीत जो था, ये प्रेम अपनापन और भावनाओं की कोमलता को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है। इसकी धुन और शब्द दोनों मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो श्रोता के मन में मधुर यादें और भावनाएं जगा देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब आदत की बात आती है तो शाम को खाना बनाना उन्हें अच्छा नहीं लगता क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। तो हम ये जो चीज़ है जो हम बदल नहीं सकते, उसमें कुछ और छोटा मोटा बदलाव ला सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हमें आरामदायक महसूस हो, कुछ आराम आए, क्योंकि खाना तो बनाना पड़ेगा ना, आप नहीं तो किसी और को खाना बनाना, खाना ये सब तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूर कि अपनी आरामदायक तरीके से और अपनी कन्वीनियंस से, जिसे कहते हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बदलाव में सब करने को तैयार हूं, परंतु विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम सुनने में कभी भी बदलाव नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार भरे संदेश के लिए, आपके इस प्यार के लिए। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमें पसंद होता है वो बाकी सबको पसंद नहीं होता, जैसे कि बहुत तेज़ आवाज़ में गीत चलाना, बच्चों को अपना सुनना होता है और कोई और कुछ और सुनना चाहता है, तो ऐसे में जो घर है उसमें जो आवाज़ों का जो युद्ध छिड़ता है उसकी बात ही अलग हो जाती है, लेकिन फिर वो अपनी खुशी के लिए मोबाइल पर सुन लेते हैं धीमे आवाज़ में। जी हाँ बिल्कुल। तो ये जो बदलाव है, छोटे छोटे जिसे एडजस्टमेंट्स कहते हैं, ये भी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, है ना। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में बड़े दिल वाला इस फिल्म से गीत सुन रहे थे। आरडी बर्मन का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते और प्यार पर आज सुरीला सफर उन्हें बहुत पसंद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ये भी लिखते हैं एक श्रोता कि जो बात हमें ठीक नहीं लगती उसके लिए ना कह देते हैं, लेकिन कभी कभी कोई बात जो हमें गलत लग रही है सामने वाले का दृष्टिकोण एकदम अलग होता है, सही होता है, तो हमें दोनों के दृष्टिकोण से देखना चाहिए और सही गलत का चुनाव करना चाहिए। बिल्कुल सही। एक और श्रोता लिखते हैं कि कहो कैसे रास्ता भूल गए, ये जो गीत है ये सुनते ही उन्हें अचानक ऐसा लगा ये गीत तो सोचा भी नहीं था, तो ये गीत उनके लिए बड़ा अच्छा वाला शौक था। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि विविध भारती के फेसबुक पेज पर हम बिल्कुल जानबूझकर आते हैं, रास्ता भूलकर नहीं आते हैं और बार बार आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि आषाढ़ की दोपहरी को गुलजार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हें आज का प्रोग्राम अच्छा लगा। एक और श्रोता कहते हैं उनकी सबसे बड़ी बुरी आदत यह है कि सुबह से उठकर रेडियो का कान मरोड़ते हैं और इस आदत से पूरा घर परेशान है क्योंकि उन्हें सुबह सुबह गीत सुनना पसंद नहीं है। लेकिन हम ये कहेंगे कि ये जो आपकी बुरी आदत जो दूसरों को बुरी लगती है लेकिन बुरी नहीं है, इसे बरकरार रखिए, इसे बिल्कुल भी ना बदलें।

दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज त्रिवेणी की धाराएं मिल रही हैं युवा कौशल पर। दोस्तों युवाओं के सपनों को पंख तो लग जाते हैं, लेकिन उड़ान भरने में उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नए दौर में युवाओं के पास अकूत की प्रतिभा है, बस उन्हें दिशा देने की जरूरत है। तकनीकी और बौद्धिक दृष्टि से आज के युवा जहां बहुत समृद्ध हुए हैं, वहीं उनके कदम भटक भी रहे हैं। करियर के चुनाव में उन्हें दिक्कतें भी आ रही हैं। सोशल मीडिया भी युवाओं के मन को भटकने में अहम भूमिका निभा रही है। तो आइए आज जरा सोचें कि किस तरह हमारे युवा आगे बढ़ें और अपनी प्रतिभा को अंजाम दें।

दोस्तों, किसी ने कहा है, प्रतिभा जन्मजात हो सकती है, लेकिन कौशल लगातार अभ्यास और सीखने से विकसित होता है। हर युवा अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसके लिए कुछ ऐसे सोपान हैं जो हर युवा को अपने व्यक्तित्व और कौशल को निखारने में मदद करते हैं। जैसे कि पहला सोपान, स्पष्ट लक्ष्य का निर्धारण। जब मंजिल स्पष्ट होती है तो रास्ता भी आसान हो जाता है। इसके अलावा निरंतर सीखने की आदत, बदलते समय के साथ स्वयं को अपडेट रखना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। तीसरा सोपान है अनुशासन और समय प्रबंधन। समय का सदुपयोग ही सफलता की नींव रखता है। चौथा सोपान है संवाद और आत्मविश्वास। अपनी बात प्रभावी ढंग से रखना भी एक महत्वपूर्ण कला है। और पांचवा सोपान है तकनीकी और डिजिटल दक्षता, क्योंकि आज का युग तकनीक का युग है। और आखिर में हम यही कहना चाहते हैं कि सकारात्मक सोच रखें, धैर्य और लगातार अभ्यास करें। यही वो गुण हैं जो किसी भी युवा को साधारण से असाधारण बना सकते हैं।

दोस्तों, आज का युग डिजिटल और तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था का युग है। ऐसे में रोजगार के अवसर भी तेजी से बदल रहे हैं। अब केवल पारंपरिक नौकरियों पर निर्भर रहने के बजाय युवा अपने कौशल के बल पर रोजगार तलाशते हैं। वो अपना स्वरोजगार भी कर रहे हैं, व्यवसाय भी कर रहे हैं। यदि युवा तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वे अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार कंप्यूटर और डिजिटल साक्षरता, वेब डिजाइनिंग सीख सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में वे प्रशिक्षण पा सकते हैं। वहीं इलेक्ट्रिशियन, सोलर पैनल टेक्नीशियन, ड्रोन संचालक और CNC मशीन, ऑटोमोबाइल सर्विसिंग जैसे तकनीकी कौशल भी आज रोजगार की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। जरूरत है उन्हें अपनी प्रतिभा जानने और पहचानने की। सरकार की ओर से भी बहुत सारे संस्थानों द्वारा बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हो रहे हैं, अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। युवाओं को चाहिए कि वे इनका लाभ उठाएं और कम समय में अच्छे रोजगार तलाश सकें। जो युवा स्वरोजगार की ओर बढ़ना चाहते हैं, वे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन सेवाएं ले सकते हैं, ई कॉमर्स, डिजिटल कंटेंट निर्माण, कंप्यूटर प्रशिक्षण, मोबाइल रिपेयरिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपना व्यवसाय भी वे चला सकते हैं। तो युवाओं के सामने रास्ते बहुत सारे हैं, बस जरूरत है कि सही रास्ता वो चुन सकें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमियों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना। अब समाचार विस्तार से। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इससे कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये क्षण भारत ब्रिटेन के बीच विश्वास तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार द्वारा संचालित एक प्रगतिशील साझेदारी बनाने के उनके संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश और नवाचार के लिए नए आयाम खोलेगा। एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में श्री गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने ये भी कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से महिलाओं, किसानों, युवाओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, नवोन्मेषकों, पेशेवरों को लाभ होगा और उनके लिए कई अवसर सृजित होंगे। तो इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब शून्य हो गया है। इससे किसान

0: उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस व्यापार समझौते के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। इसके तहत अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। इस छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। इस समझौते से 75,000 से अधिक भारतीय पेशेवरों और 900 से ज्यादा कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग और विदेश व्यापार महानिदेशालय संयुक्त निदेशक डॉक्टर राहुल सिंह ने आज अहमदाबाद के सानंद में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। 3,07,00,000 रूपये से अधिक मूल्य की इस पहली खेप में अहमदाबाद की विनिर्माण क्षमता की झलक मिलती है। इसमें औद्योगिक उपकरण, दवाइयां, ऑटोमोबाइल, पॉलीमर और वस्त्र सहित 7 प्रमुख क्षेत्रीय निर्यातकों के उत्पाद भी शामिल हैं।
2: हमने टारगेट रखा है, वो टारगेट है 5 साल में आज के एक्सपोर्ट को डबल करने का। अभी हमारा एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज को मिला के अराउंड 34-35 बिलियन डॉलर्स है। उसको डबल करके नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 2030 तक उसको डबल करने का प्लान है, जिसमें हमारे गुड्स भी बढ़ेंगे, सर्विसेज भी बढ़ेंगे।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायोग में उप उच्चायुक्त डॉक्टर सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। इस समझौते से दोनों देशों के नागरिकों को ठोस आर्थिक लाभ पहुंचने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में 100 श्रोतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
3: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
1: राष्ट्रपति ने महिलाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में जुड़ने का आग्रह किया।
3: आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन करने वाली बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को सुझाया गया है। मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए सबको।
1: भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
4: The Security Council has been ineffective.
0: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
4: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका

0: के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए पहुंचाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। होर्मुज जलडमरू मध्य पर श्री ट्रंप ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही के लिए खुला है लेकिन ईरान के जहाजों के लिए बंद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अधिकारियों ने हाल ही में ईरान को संदेश भेजकर समझौता करने की सलाह दी है, अन्यथा उसे और अधिक गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश में कल तक मौसम गर्म और उमस भरा रहने की आशंका है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा के कारण बिहार में गंडक, बागमती, कमला बालन और कोसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आज सुबह 12 बजे तक 1,83,900 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले आदेश तक सभी अभियंताओं की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जिला प्रशासन ने आसपास बसे लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इधर शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव की समस्या शुरू हो गई है। कई स्थानों पर नदी के दोनों तटबंध के अंदर पानी फैलने लगा है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। मध्य प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा आज इंदौर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर से अबुधाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को रवाना करेंगे। ये सेवा प्रदेश की नागर विमानन नीति 2026 के तहत शुरू की जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी वेंकैया चौधरी ने भक्तों से अपील की है कि वे श्रीवारी दर्शन, ठहरने की व्यवस्था, अर्जित सेवाओं और अन्य सेवाओं की बुकिंग केवल TTD की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही करें। श्री चौधरी ने भक्तों को ये भी सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अनधिकृत वेबसाइटों और बिचौलियों के माध्यम से फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का शिकार न बने। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर झारखंड में लापता और अपहृत बच्चों तथा वयस्कों की तलाश और बरामदगी के लिए सभी जिलों में विशेष निगरानी दल का गठन किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक के आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में DSP मुख्यालय के नेतृत्व में गठित ये दल लापता मामलों की ट्रैकिंग, जांच और बरामदगी की नियमित निगरानी करेगा। सभी पुलिस अधीक्षक को निगरानी दल गठित कर प्रत्येक 15 दिन में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है, जिसकी समीक्षा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और पुलिस मुख्यालय स्तर पर होगी।

0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: प्यासा फिल्म से आप सुन रहे थे गीत गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और एसडी बर्मन की तर्ज। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
3: जी।
2: जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे और इसकी अगली पेशकश लीजिए सुनिए।

0: फिल्म वक्त से अभी आप ये गीत सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और रवि का संगीत।
1: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो हैं विवेक रंजन श्रीवास्तव।
2: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य की स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
1: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे श्री 420 से। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

गाइड फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और सखियों को। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था, एस डी बर्मन की तर्ज थी। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। मंजरी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: सोनाली जी आपको और सुनने वाली हमारी सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को प्यार भरा मंजरी का नमस्कार। और थोड़ा सा आप कहेंगे अच्छा अच्छा सा भीनी भीनी हवाएं आए सब तरफ और बादल भी आए, जहां पानी नहीं बरस रहा वहां बरसे,
1: ये हम प्रार्थना करते हैं
2: और ये दिली तमन्ना भी है। और देखो ना, बादलों का जो परिवार था ना वो इधर से उधर चला गया,
1: यानी हमारे साथ में लुका छिपी खेल रहे हैं बादल। हाँ, है ना?
2: अभी तो उन्होंने कहा कि नहीं अब यहाँ बहुत बरस लिया, अब चलो चलते कहीं और, तो कहीं और चले गए। लेकिन कभी ना कभी रात में आके थोड़ा बहुत बरस जाते हैं,
1: और जब रुक जाती है बारिश तो हम पसीने से भीग जाते हैं।
2: बिल्कुल, तो मौसम ऐसे ही चल रहा है, लेकिन मौसम में अपनी सावधानियां भी बहुत जरूरी होती है ना।
1: बहुत सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसा होता है ना जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि छाता रख लिया जाए, फिर ऐसा लगता है अरे छाता फालतू में रख लिया, हमें तो गॉगल रखना था।
2: सही बात है। और देखो इसी के साथ देखो हम लोग अपने विषय की ओर भी बढ़ चलते हैं। जी, हमें ध्यान रखना है कि भाई आज तो मकई के व्यंजन के बारे में बातें होंगी। हमारे साथियों ने बहुत सारी चीजें लिखकर भेजी है।
1: हाँ, बहुत सारे हमारे साथियों ने मकई के व्यंजन लिखकर भेजे हैं, पर जब झमाझम बारिश होती है ना उसी वक्त वो मकई के व्यंजन खाने में और भी आनंद आ जाता है। हालांकि बाजार में बहुत सारी नरम नरम मुलायम सी मकई के दाने आ चुके हैं, तो जब बारिश गिरेगी ना तो उस वक्त मकई के पकौड़े बनाएंगे, उसकी चाट तो बनती ही है, और बहुत सारे मीठे व्यंजन भी मकई के बनते हैं। जैसे हमारे
2: मकई का हलवा, मकई का सूप बनता है,
1: मकई की खीर।
2: हाँ, यानी अनंत है। और फिर देखो हमारी बातें होंगी पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र, ये भी बड़ा प्यारा सा विषय है और सबके विचार भी आ गए हैं, तो आप भी बता सकते हैं कि आपका कौन सा प्यारा सा पड़ोसी है, अच्छा मित्र है, ये भी बता सकते हैं।
1: और साथ में मंजरी जब पड़ोसी का जिक्र चलता है तो व्यंजन जो है ना कटोरी में डाल के पड़ोसियों को भी दिए जाते हैं,
2: होता है। और साथ में कभी कभी चीनी खत्म हो गई, चाय की इसका भी तो होता
1: और
2: है।
1: वो थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा, पर उसमें जो प्यार होता था ना, उसमें जो उस उनकी जो छोटी सी एक कटोरी भर के जो व्यंजन आता था ना, उससे जो हम इतने हम घर में भी लड़ाई होती कि अरे थोड़ा मेरे लिए भी रखना। वो आंटी जो पड़ोस वाली आंटी उनकी जो फलानी फलानी सब्जी है वो बहुत अच्छी लगती है, तो ये आदान प्रदान फिर से अगर शुरू हो जाए तो उसमें क्या बात होगी।
2: नहीं, कहीं कहीं पे तो देखो सोनाली होता भी है, अभी हमारे जो अच्छे अच्छे पड़ोसी होते हैं वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ बना के देते रहते हैं। और शब्द हमारा विचार आपके, इसमें भाई हिम्मत की बात होगी।
1: और जब हम कभी संकट में आ जाते हैं, संकट की घड़ी आप पड़ती है हमारे जीवन में, उस वक्त हमें हिम्मत देने के लिए हमारे पड़ोसी ही सबसे पहले आते हैं।
2: बिल्कुल। और साड़ियों का संसार, इसमें सोनाली आज किस साड़ी की बात करने वाले हम लोग?
1: आज हम अरणी सिल्क की जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे श्रोता भाइयों ने, हमारी बहनों ने इस विषय में भी बहुत सारे कमेंट्स लिखना शुरू कर दिए।
2: अच्छा, अरनी साड़ी को अरनी भी और अरनी दोनों भी बोला जाता
1: है, यानी अरनी भी कहते हैं और अरनी भी कहते हैं।
2: जी, और विश्व युवा कौशल दिवस की बात करने वाले हैं आज हम, तो सबसे पहले तो विश्व युवा कौशल दिवस की सभी को बधाई दे देते हैं कि सब लोग के बच्चे जो है वो अपने अपने हुनर से आगे बढ़े, है ना,
1: और खूब तरक्की करें
2: और हम लोग आगे बढ़ते हैं गीत के साथ,
1: सुनते हैं गीत।

0: तो हम भी चलते हैं।
1: बिल्कुल, विश्व युवा कौशल दिवस की बात करने वाले हैं और हर वर्ष सोनाली 15 जुलाई को ये मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशंस द्वारा वर्ष 2014 में की गई थी ताकि युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और सतत विकास के लिए आवश्यक कौशलों के महत्व के प्रति जागरूक किया जा सके। पहले की शिक्षा में और आज की शिक्षा में बहुत बदलाव हुआ है। आज इतने सारे तकनीकी कोर्स उपलब्ध हो गए हैं कि युवाओं को बेहतर करियर के लिए वो उनको अपनी रुचि अनुसार चुन सकते हैं। जैसे पहले होता था ना कि शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर और बैंक जॉब के बारे में, या बिजनेस कर लेंगे या दुकान खोल लेंगे जैसा सोचा जाता था। इनके अलावा भी बहुत से कोर्स हैं, लोगों की सोच बदली है क्योंकि आज इंटरनेट जुड़ गया है, जिसका उद्देश्य यही है कि युवाओं को रोजगार परक एवं तकनीकी कौशल प्रदान करना। यानी कि समय के साथ साथ बदलाव हुआ है और हमारे युवाओं ने भी, युवतियों ने भी इस चीज को स्वीकारा है।
0: ये बहुत अच्छी बात आपने कही। और कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है, साथ ही युवाओं को कुछ कौशल सीखने चाहिए। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल की बात की जाए तो संचार कौशल, यानी अपनी बात स्पष्ट और प्रभावी ढंग से कहना और दूसरों को ध्यान से सुनना। साथ ही डिजिटल कौशल, यानी डिजिटल स्किल की बात की जाए तो उसमें कंप्यूटर है, फिर इंटरनेट है, ऑफिस सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन सुरक्षा है और नई तकनीकों का उपयोग करना। साथ ही AI की समझ, AI टूल्स की जिम्मेदारी से उपयोग और उसकी उत्पादकता को बढ़ावा देना।
1: बिल्कुल, और समस्या समाधान और तार्किक सोच, कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व कौशल, लीडरशिप स्किल्स की बात की जाती है तो टीम का मार्गदर्शन करना और जिम्मेदारी निभाना भी युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। और टीम वर्क, दूसरों के साथ मिलकर काम करना और सहयोग की भावना रखना, इस तरह की जो स्किल्स हैं वो भी बहुत मायने रखती है। और समय प्रबंधन, समय का सही उपयोग कर लक्ष्य, समय पर जो लक्ष्य होता बांधा किया जाता है उसको पूरा करना होता है।
0: और साथ ही वित्तीय साक्षरता, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी बजट बनाना, बचत, निवेश और धन का सही प्रबंधन। साथ ही उद्यमिता, यानी नए विचारों को व्यवसाय में बदलने और रोजगार सृजित करने की क्षमता रखना। साथ ही रचनात्मकता और नवाचार, यानी नए विचारों पर काम करना, अलग अलग सोच को विकसित करना। और साथ ही इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता, यानी अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और संतुलित व्यवहार करना।
1: बिल्कुल, और सुनाली इसके साथ साथ भाषा कौशल, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी या अन्य भाषाओं का ज्ञान, अनुकूलन क्षमता, यानी बदलती परिस्थितियों और नई तकनीकों के साथ स्वयं को बदलना या ढालना, प्रस्तुतिकरण और सार्वजनिक भाषण, यानी आत्मविश्वास के साथ लोगों के सामने अपने विचार रखना, जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स, अनुशासन, ईमानदारी, आत्मविश्वास, धैर्य, निर्णय क्षमता और सकारात्मक सोच को समझना। आज युवाओं के लिए केवल डिग्री पर्याप्त नहीं है बल्कि ऐसे कौशल भी आवश्यक हैं जो उन्हें आत्मनिर्भर और सक्षम और सफल बना सके।
0: और वैसे ही होता है ना कि आजकल पढ़ाई के साथ साथ माता पिता जो बच्चे 7th, 8th, 9th स्टैंडर्ड में आ गए कि इस तरह के उन्हें कोचिंग भी के लिए भी भेजते हैं ताकि जो बचपन से ही ये सारी क्षमताएं वो डेवलप कर लेते हैं, अगर विकसित कर लेते हैं तो आगे चल के उन्हें नौकरी में बहुत फायदा होता है। और इसी तरह की बात हमारे साथी ने भी लिखा है कि विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार, अच्छे कार्य, उद्यम के लिए आवश्यक तकनीकी और व्यावसायिक कौशल से प्रशिक्षित करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 18 दिसंबर 2014 को एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया था और प्रतिवर्ष इस दिन को मनाने की घोषणा की गई।
1: बिल्कुल, और एक साथी हमारे लिखते हैं कि आज के समय में केवल शैक्षिक डिग्री ही नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक कौशल भी सफलता की कुंजी बन चुके हैं। कंप्यूटर, संचार, तकनीकी शिक्षा, उद्यमिता और

0: डिजिटल कौशल युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। भारत में स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे पहले इसी दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। विश्व कौशल दिवस का संदेश है, कौशल ही आत्मनिर्भरता और उज्जवल भविष्य की पहचान है। तो अपनी स्किल्स को पहचान
1: डेवलप करना चाहिए,
0: डेवलप करना चाहिए। और एक साथी ने और भी लिखा है कि कुकिंग स्किल्स से तकनीकी का उपयोग करके भी आप लाभ उठा सकते हैं,
1: बहुत लाभ उठा रहे हैं। कितनी सारी गृहिणियां जो है वो अपनी कुकिंग स्किल, पहले जो पुराना जमाना हुआ करता था ना कि हम सिर्फ घर में ही खाना बनाते थे, पर आज जो अलग अलग प्रांत के लोग जो हैं वो दूसरे दूसरे प्रांत की डिशेस खाना पसंद कर रहे हैं, और जिससे जो गृहिणियां हैं जिनमें कुकिंग की स्किल है उन्हें भी रोजगार मिल रहा है।
0: बिल्कुल। और जो हमारी जो लड़कियां भी हैं वो भी अच्छी अच्छी क्वालिफाइड हैं, एजुकेशन अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो अच्छी अच्छी डिशेस बना के कुकिंग स्किल्स को बढ़ावा देकर के कुछ ना कुछ अपना आर्थिक रोजगार, अपने लिए आर्थिक धन
1: कमा रही हैं।
0: तो कहना चाहिए कि आपके अंदर जो भी गुण है, जो भी शौक है, आप उसको आगे बढ़ाइए और अपनी आर्थिक मदद आप परिवार को भी कर सकते हैं और खुद के लिए
1: कर
0: तो बहुत अच्छा
1: है। यानी बस अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है कि हमारा ऐसा कौन सा प्लस पॉइंट है जिसमें हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं या पैसा कमा सकते हैं। और हम अब आगे बढ़ेंगे गीत के साथ।
0: जी,

0: तो सुनाली बहुत प्यारा सा ये गीत था। तो जैसे इन्होंने कहा कि तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, तो इसी तरह हम सखियों में सखी सहेली में भी हम दोनों सखियों का भी ऐसे ही रहता है कि एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा के हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं।
1: और जब हम साड़ी पहनते हैं
0: फिर भी
1: उस
0: एक
1: वक्त
0: दूसरे की
1: भी
0: तारीफ, उस समय भी एक दूसरे की तारीफ करते हैं
1: और हमें तालमेल भी बहुत बिठाना पड़ता है,
0: बिल्कुल। तो
1: है
0: देखो
1: ना?
0: आज हम बात करने वाले हैं अरनी सिल्क साड़ी की, जिसे अरनी या अरनी भी कहा जाता है। अरनी सिल्क साड़ी भारत के प्रसिद्ध पारंपरिक रेशमी साड़ियों में से एक है। इसका निर्माण मुख्य रूप से तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले के अरनी नगर में किया जाता है। ये साड़ी अपनी बेहतरीन बुनाई, शुद्ध रेशम, आकर्षक रंगों, टिकाऊ गुणवत्ता और शानदार जरी के काम के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत की सांस्कृतिक पहचान मानी जाने वाली ये साड़ी आज देश विदेश के फैशन प्रेमियों की भी पसंद बन चुकी है।
1: और अरनी में रेशमी साड़ियों की बुनाई का इतिहास लगभग 300 से 400 वर्ष पुराना माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य और उसके बाद के शासकों के समय इस क्षेत्र में रेशम उद्योग को विशेष संरक्षण मिला था और समय के साथ यहाँ के बुनकरों ने अपनी पारंपरिक कला को नई तकनीकों के साथ जोड़ा, जिससे अरनी सिल्क साड़ियों की अलग पहचान बनी है। आज भी अरनी में अनेक परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इसी शिल्प से जुड़े हुए हैं और ये कला केवल आजीविका का साधन नहीं है बल्कि उनकी सांस्कृतिक विरासत भी है।
0: बिल्कुल। और अरनी सिल्क साड़ी का निर्माण कई चरणों में पूरा होता है, जैसे रेशम का चयन, उच्च गुणवत्ता वाले मलबेरी शहतूत रेशम का उपयोग किया जाता है, धागों की रंगाई, रेशम के धागों को विभिन्न आकर्षक और टिकाऊ रंगों में रंगा जाता है, ताना बाना तैयार करना, करघे पर धागों को सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया जाता है और जरी का उपयोग असली या उच्च गुणवत्ता वाली जरी के बॉर्डर और पल्लू बुने जाते हैं
1: और साथ ही हाथ करघे पर बुनाई की जाती है। अनुभवी बुनकर कई दिनों तक मेहनत करके एक साड़ी तैयार करते हैं और तैयार साड़ी की मजबूती, रंग और डिजाइन की जांच की जाती है और एक उत्कृष्ट अरनी साड़ी बनने में मंजरी 7 से 20 दिन तक और जबकि जटिल डिजाइन वाली साड़ियों में इससे भी अधिक समय लग सकता है। और इस साड़ियों में चौड़े और आकर्षक जरी बॉर्डर होते हैं जिनमें मंदिर, मोर, आम, कमल, बेल बूटे और जामिति डिजाइन होती है और ये साड़ी वजन में बहुत हल्की होती है और जिसके कारण लंबे समय तक पहनने में आरामदायक होती है। साथ ही मजबूत बुनाई के कारण वर्षों तक सुरक्षित रहती है।
0: और तमिलनाडु में विवाह, धार्मिक उत्सव, समारोह और पारिवारिक आयोजनों में अरनी सिल्क साड़ी विशेष रूप से पहनी जाती है। ये शुभता, समृद्धि और पारंपरिक भारतीय संस्कृति का प्रतीक मानी जाती है। दक्षिण भारतीय दुल्हनों के विवाह संग्रह में इसका विशेष स्थान होता है सोनाली। और अरनी के हजारों बुनकर इस पारंपरिक उद्योग से जुड़े हैं। वे आधुनिक डिजाइनों को अपनाते हुए भी अपनी प्राचीन बुनाई शैली को संरक्षित किए हुए हैं। उनके धैर्य, मेहनत और कलात्मक कौशल के कारण ही अरनी सिल्क साड़ी विश्व भर में सम्मान प्राप्त कर रही है।
1: और साथ ही स्थानीय स्तर पर हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। भारत के विभिन्न राज्यों और विदेशों में इन साड़ियों का निर्यात होता है और तमिलनाडु के हस्तकरघा उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ये साड़ियां सशक्त बनाती है। महिला स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियां भी इस उद्योग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अरनी

0: साड़ियों को केवल ड्राई क्लीन करवाना चाहिए और सूती कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए और सीधे धूप में लंबे समय तक ना रखे, यानी साड़ियों को धोना बिल्कुल नहीं है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छे से जानकारी दी सुनाली तुमने। और समय समय पर साड़ी को मोड़ बदलते रहने, जो तह होती है उसको
0: जी
1: बदलते रहना चाहिए ताकि रेशम और जरी सुरक्षित रहे। अरनी सिल्क साड़ी केवल एक परिधान नहीं बल्कि भारतीय हस्तकरघा परंपरा, उत्कृष्ट शिल्प कला और सांस्कृतिक गौरव का जीवंत प्रतीक है। इसकी बारीक बुनाई, शानदार रंग संयोजन और आकर्षक जरी का काम इसे भारतीय रेशमी साड़ियों में विशिष्ट स्थान दिलाता है।
0: और ये साड़ी हमें उन कुशल बुनकरों की अथक मेहनत और सदियों पुरानी कला की याद दिलाती है जिन्होंने अपनी विरासत को आज भी जीवित रखा है। इसलिए अरनी सिल्क साड़ी भारतीय संस्कृति और हस्तशिल्प की एक अमूल्य धरोहर मानी जाती है।
1: और हम सभी सखियां जो है वो अपने अपने वार्डरोब में चेक कर ले कि ये साड़ी है कि नहीं है,
0: और नहीं है तो खरीद ले।
1: और फिलहाल ये सुने, गीत
0: सुनते हैं।

0: ना
1: तो
0: कि जब
1: साड़ी
0: हमारी कोई सहेली साड़ी पहन के जाती है तो अब अगर हम बोले कि क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तो वो कितनी खुश हो जाती है
1: बिल्कुल, क्योंकि देखो आज भी जब आई थी तो हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे ना, साड़ी तो नहीं लेकिन हाँ कुर्तों पे हम लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे थे, ऐसी
0: ना।
1: बातें हो जाती हैं जब सखियां मिलती हैं।
0: यानी जो छोटी से जो तारीफ, जो छोटा सा शब्द है ना, ये हम सभी का मनोबल बहुत कई गुना बढ़ा देता है। तो बीच
1: और
0: बीच में से तारीफ करते रहना चाहिए।
1: तारीफ करने के लिए भी देखो बड़ी हिम्मत क्या कर लेना चाहिए रहता है, या फिर किस तरह से किस
0: हमारी
1: भाव से
0: हिम्मत बढ़
1: तारीफ करें,
0: जाती है।
1: हमारी हिम्मत भी बढ़ जाती है। और हम अभी हम लोग बात भी करेंगे हिम्मत के विषय में, कि हिम्मत कैसे अपने अंदर रखनी चाहिए कि हर मुसीबत का सामना भी हम अच्छे से कर सकें। तो हमारे बहुत सारे विचार आ ही चुके हैं, तो अब अंतराल का समय हो चुका है, तो
0: जी
1: लेते हैं अंतराल।

0: अंतराल के बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली
1: सहेली, और हम लोग बात करने वाले हैं शब्द हमारा विचार आपका। इसमें हम लोग हिम्मत के बारे में बात करने वाले हैं। तो सोनाली, देखा जाए जब भी हम हिम्मत की बात करते हैं
0: जी,
1: तो केवल कठिन समय में आगे बढ़ने का नाम हिम्मत नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति भी है। और हर जगह हिम्मत दिखाना समझदारी नहीं होती, जहां विवेक और धैर्य की आवश्यकता हो वहां केवल साहस नहीं बल्कि संयम भी जरूरी होता है। हिम्मत कहाँ कहाँ रखनी चाहिए? सच्चाई का साथ देने में, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, गलत के खिलाफ आवाज उठाने में, अन्याय और अत्याचार को चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी हमें हिम्मत दिखानी चाहिए, और अपने सपनों को पूरा करने में भी हिम्मत दिखानी चाहिए। असफलताओं से घबराकर हार नहीं माननी चाहिए, है
0: ये
1: ना?
0: तो बहुत सही बात आपने कही। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हिम्मत वो दीपक है जो अंधेरों में भी जलता है, हर मुश्किल के सामने सीना तान कर चलता है, राहों में चाहे कितने भी तूफान आ जाए हिम्मत वाले कदम पीछे नहीं हट पाए, गिरकर उठना फिर आगे बढ़ जाना, सपनों को सच करने का यही अफसाना है। जो डर को अपनी मंजिल के बीच न आने दे वही इंसान सफलता का आसमान छू ले। हिम्मत से ही जीवन में नई राहें बनती है, इसी से जीत की खुशियां और उम्मीदें बनती हैं।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि जिसके पास हिम्मत होती है उसके लिए असंभव भी एक दिन संभव बन जाता है। हिम्मत वो आवाज है जो हर हार के बाद भी कहती है एक बार और कोशिश करो। ये तूफानों से लड़ना नहीं बल्कि उनके बीच मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना सिखाती। बहुत सुंदर सी बात लेकर हमारे साथियों ने भेजी है।
0: एक साथी कहते हैं कि हिम्मत का अर्थ केवल शारीरिक बल से नहीं बल्कि एक मानसिक और आत्मिक शक्ति है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से हार मानने से इनकार कर देता है तो वही उसकी असली हिम्मत कहलाती है। ये डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और संघर्ष हमें नया अनुभव देते हैं। हिम्मत रखने वाले लोग इन अनुभवों से अपने भविष्य की नई कहानी लिखते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक और प्रेरणादायक विचार आपके भीतर हिम्मत की एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं।
1: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि हिम्मत शब्द का अर्थ साहस, बहादुरी और हौसला होता है। हम बोलचाल की भाषा में इसका बहुत आयत प्रयोग करते हैं। हम तो हिम्मत हार गए, या इस फैसले से हमारी हिम्मत बढ़ गई। ये व्यक्ति कि वो मानसिक शक्ति है जो उसे किसी कठिन परिस्थिति, डर या खतरे का निडरता से सामना करने और बड़े संकल्प को पूरा करने की प्रेरणा देती है। डर पर काबू पाने की क्षमता साहस को दर्शाता है। किसी मुश्किल काम को करने का पक्का इरादा, जब कोई दिलेरी पराक्रम की बात होती है, इसे पराक्रम, दिलेरी, शौर्य, जीवट भी कहा जाता है।
0: एक साथी कहते हैं, एक मुहावरा है, हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा। अगर हम कोई असंभव कार्य करने की हिम्मत करते हैं तो खुदा यानी ईश्वर जरूर मदद करेगा। बस आपको खुद पर विश्वास रखते हौसला बढ़ाए रखना है, फिर वो व्यापार करने

0: वाले हो, कारोबारी हो, पढ़ाई कर रहे हो, विद्यार्थी हो, हिम्मत से जीवन नया पार लगा सकते हैं।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हिम्मत वो आंतरिक शक्ति है जो इंसान को विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखती है। ये डर को खत्म नहीं करती, बल्कि डर की मौजूदगी में इंसान को आगे बढ़ने का हौसला देती है। इसी से इंसान को सफलता मिलती है। हिम्मत वो सीढ़ी है, इनको लिखना है, जो हर हार को भी जीत में बदल देती है। बहुत सुंदर सी बात है कि हिम्मत अगर होगी, अगर उसकी सीढ़ी पर हम चढ़ गए, तो हमारी हार जो होती है ना, वो भी जीत में बदल जाती है। और हिम्मत तो हमें देखो दिखानी पड़ती है। अभी कोई नया काम हम सीखते हैं, नई चीज सीखना चाहते हैं, जैसे वाहन चलाना, स्कूटर चलाना या कार चलाना है, तो हमें हिम्मत तो दिखानी ही पड़ती है, तभी हम सीख सकते हैं।
0: बच्चों को भी हमें हिम्मत देना पड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: जब नए नए बच्चे चलना सीखते हैं तब भी डरते हैं, पर माँ जब उसे थाम लेती है कि डरो नहीं, हम हैं साथ में, तो वही हिम्मत उसकी ताकत बन जाती है।
1: बिल्कुल, इसी तरह बच्चे जब पढ़ने वाले होते हैं, स्कूल जाने वाले होते, तो वो किताबें देख के डरते हैं, विषय देख के डरते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, तो उन्हें हिम्मत दिखानी पड़ती है, समझाना पड़ता है कि देखो अभी हम समझाते हैं, तुम समझ जाओगे, डरो मत, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, दिमाग पर जोर मत दो, आराम से सुनो। तो ऐसी बातें करते हैं तो उनका उनकी हिम्मत और बढ़ जाती है, हौसला बढ़ जाता है, तो वो हर चीज कर लेते हैं।
0: परीक्षा के समय में भी हिम्मत जुटाते हैं ना हम, हिम्मत बढ़ाते हैं बच्चों की, विद्यार्थियों की, देखो घबराओ नहीं, परीक्षा अच्छे से देना। अगर किसी ने पीठ पर हाथ थपथपा दी कि देखिए तुम अच्छा कर रहे हो, परिणाम अच्छे ही होंगे, और अगर परिणाम इधर उधर हो भी गए तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। इस तरह से अगर कोई हमारे इर्द गिर्द हिम्मत बढ़ाने वाले लोग होते हैं ना, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर होता है।
1: बिल्कुल सुनाली। और इसी के साथ साथ हमारे एक साथी और लिखते हैं, हिम्मत साहस हौसला इसके कई रूप है। बड़ी से बड़ी स्थिति को डट कर सामना करना हिम्मत का काम है। किसी भी गलत बात के लिए आवाज उठाना बहुत हिम्मत का काम है। अपने मन की ना सुनकर सही राह पर चलना भी हिम्मत का काम है। कोई बात किसी की ना पसंद आए, सही ना लगे, उसको मना करना, ये भी बहुत हिम्मत की बात है। हिम्मत के रूप तो कई हैं। बचपन में तो मम्मी के सामने कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं हुआ करती थी। अगर गलती करते थे तो डांट पड़ जाती तो चुप रहकर सुन ही लेते थे। हिम्मत नहीं है तो सर नहीं होती थी सर उठाने की।
0: यानी पुराने जमाने की बात ही कुछ और हुआ करती थी।
1: देखिए मम्मी ही नहीं भाई, पापा लोग से, पिताजी लोग से भी बड़े
0: उनकी आंखों से ही डरते थे,
1: उनकी आंखों से डरते थे। तो ये बात थी कि उस समय हम लोग अगर वो कुछ कहते थे तो हिम्मत नहीं होती थी कि हम उन्हें जवाब दें। आजकल पलट के जवाब सुनने को मिल जाता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। तो ये तो एक ऐसी आदतों की बात होती है, लेकिन हिम्मत अगर आपके अंदर है, हौसला है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमारे फौजी भाइयों और सिपाहियों, सैनिकों में बहुत हौसला होता है, हिम्मत होती है कि सरहद पर खड़े होकर वो दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं और देश के प्रति अपनी हिम्मत और जज्बे को दिखाते हैं। तो उनको हमें बहुत बहुत सलाम नमस्कार करना चाहिए
0: और गीत सुनना चाहिए।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो भाई देखो सोनाली, अब हमारी बात होने वाली है पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र। इस पर हमारे साथी लिखते हैं कि इसका जवाब एक लाइन में नहीं है। पड़ोसी हो सकते हैं सच्चे मित्र, पर होते ही हैं, ऐसा जरूरी नहीं। रात 2 बजे तबियत बिगड़े उस समय दोस्त और रिश्तेदार फोन पर होंगे, पर पड़ोसी दीवार के उस पार हर दिन की छोटी छोटी जरूरतें आपसी रिश्ते को गहरा करती हैं। लेकिन यही पड़ोसी मित्र कब नहीं बन पाते, जब सिर्फ दीवारें साझा हों पर दिल नहीं। ईर्ष्या, राजनीति, शोर शराबा या दखलंदाजी से पड़ोस का रिश्ता खराब भी हो सकता है, तब वो सिर्फ फ्लैट नंबर बनकर रह जाते हैं। पड़ोसी अपने आप में मित्र नहीं होते, उन्हें मित्र बनाया जाता है। एक नमस्ते, एक कप चाय, त्योहार पर एक प्लेट मिठाई, बस इतनी पहल से दीवारों के बीच का रिश्ता भी दिल का रिश्ता बन जाता है। वाकई में जब कोई दिक्कत होती है तो एक दूसरे के ही काम आते हैं हमारे पड़ोसी, जो भी होते हैं, सब किसी के भी पड़ोसी, वो एक दूसरे के काम ही आते हैं, तो उनके साथ अपना संबंध बना के रखिए, क्योंकि रिश्तेदार तो दूर होते हैं, अचानक आपको दिक्कत आएगी तो वही आपके काम आएंगे, और आप उनको दिक्कत आती तो आप उनके लिए मदद के लिए खड़े हैं।
3: हमारे एक साथी लिखते हैं मंजरी कि ये सच है कि पड़ोसी हमारे लिए रिश्तेदार से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आपदा के समय रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी ही काम आते हैं। हमारे साथ तो पड़ोसी

0: उनके संबंध को प्रगाढ़ बनाने में उनके सबसे छोटे बच्चे ने बड़ी भूमिका निभाई है। 3-4 महीने से लेकर अब 1.5 साल का होने तक वो बच्चा हमारे साथ ऐसा घुल मिल गया है कि अब अपने घर से ज्यादा हमारे साथ रहता है। सुबह, दोपहर, शाम, देर रात कभी भी दादी बाबा कहते हुए दरवाजे पर आ जाता है और हम भी उसके भोलेपन के व्यवहार से ऐसे बन चुके हैं कि सब काम छोड़कर उसे बुला लेते हैं और फिर हमारे घर में उसकी छोटी छोटी शरारतों से एकदम से रौनक आ जाती है। उस बच्चे ने अपने निश्चल और नटखट प्रेम से हम दोनों परिवारों को एक साथ बांध दिया है। क्या बात है, बहुत सुंदर।
1: और एक साथी और लिखते हैं कि पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र ही नहीं बल्कि सच्चे रिश्तेदार भी हैं, क्योंकि जब भी हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हमारे पड़ोसी हमारी मदद के लिए पहुंचते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मुझे 4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। वहां से लौटने के बाद बहुत परहेज वाला खाना खाने को कहा गया। मेरे घर के सामने वाली आंटी ने रोज कुछ ना कुछ बनाकर मेरे लिए भेजती थी ताकि मेरी मम्मी को ज्यादा परेशानी ना हो। मना करने पर बोलती थी कि जब मुझे जरूरत होती है तब तुम भी तो जी जान से सेवा करती हो। वाकई में एक दूसरे के साथ ऐसा ही व्यवहार रहेगा तो आपका घर परिवार और आपके अगल बगल से लेकर पूरा मोहल्ला भी खुशहाल रहेगा, क्योंकि सबके पड़ोसी ऐसे हो जाएं तो।
0: एक साथी ने लिखा है कि पहले सगो पड़ोसी, सगे संबंधी तो दूर दूर रहते हैं। इस बात पर यह कहावत पड़ी होगी कि सगा पड़ोसी, इसलिए जो अच्छे संबंध हो तो वो ही पहले सुख दुख में भागीदार बनता है, इसलिए पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक साथी हमारे लिखते हैं कि एकल या विभक्त कुटुंब पद्धति में अब पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र तथा रिश्तेदार बन रहे हैं। जी हाँ, कभी कभी वो हमारी प्राइवेसी को जरूर डिस्टर्ब कर देते हैं, परंतु सुख दुख और आपातकालीन संकट में वो ही तो सबसे पहले हमारे काम आते हैं, सहारा बन जाते हैं। बदलती समाज व्यवस्था में पड़ोसी जीवन का अहम हिस्सा है। त्योहारों की रौनक और सुख दुख के सच्चे साथी बन गए हैं। थोड़े बहुत अवगुण तो सभी में होते हैं, उन्हें भूल जाना चाहिए। दरवाजे से दरवाजा जुड़ा है, जुड़ा रहे दिलों का तार। खुशी, गम और हर मुश्किल में काम आते हैं पड़ोसी मित्र बार बार। क्या बात है।
0: एक साथी लिखते हैं, पड़ोसी हमारे सबसे निकटतम सहयोगी और सच्चे मित्र होते हैं। आपातकाल में दूर बैठे रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी ही उपलब्ध होते हैं। एक अच्छा पड़ोसी सुख दुख साझा कर जीवन को सुरक्षित बनाता है। और पड़ोसियों के या पड़ोस धर्म के बारे में हम अधिक पढ़ सकते हैं। यदि आप पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या आप जानना चाहेंगे एक दूसरे के साथ तालमेल और सद्भाव कैसे बढ़ाएं? त्योहारों और समारोहों में सहयोग के तरीके, किसी भी अनबन को सुलझाने के उपाय हम जान सकते हैं। भैया एक उसमें कटोरी में डाल के कुछ मिठाई दे दी, हाँ। तो पड़ोसी भी ये जो संबंध जो है ना प्रगाढ़ करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये छोटा सा बर्तन।
1: बिल्कुल सही बात है। और एक साथी लिखते हैं, सोनाली, पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र हैं। अब ये बहुत अचंभित और कहानी सुनने जैसी बात लगती है। ऐसा नहीं कि पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी आज भी है, पर आज की जो जैन जी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। प्राइवेट कॉलोनी में अब ये दूरियां बढ़ गई हैं। फ्लैट और सोसाइटी में ये दिखाई देती। मैंने कोरोना काल में प्राइवेट कॉलोनियों में को भी देखा और सोसाइटी और फ्लैट के सिस्टम में भी देखा है। फ्लैट वाले बहुत अच्छे पड़ोसी साबित हुए प्राइवेट कॉलोनियों के हिसाब से। हमारे जमाने की वो पड़ोसी नहीं कि किसके घर की दाल में आज कौन से मसाले की छौंक पड़ी है, वो भी पता चल जाता था। और कहने पर बड़ी सौंधी सुगंध आ रही है तो कटोरी दाल भी आ जाती थी, या अगर कोई 2 दिन नहीं दिखाई दिया तो तीसरे दिन आपके घर आकर उनसे पूछ लिया गया, आप 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहे, क्या बात है। ये भावनात्मक लगाव खत्म हो गया है जो सचमुच चिंतनीय है। बहुत इन्होंने पते की बात
0: बहुत सही है। बात की। और खासकर शहरों में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। छोटे शहरों में और गांवों में अभी भी लोग पड़ोसियों के घर हक से जाकर बैठते हैं, हक से खाना खाते हैं, वहीं पर रह भी जाते हैं। पर यहाँ पे शहरों में बहुत ही गंभीर परिस्थिति आ चुकी है। पर इस गंभीर परिस्थिति को हम हल्का करेंगे गाना सुनकर। जी

0: तो भाई देखो सोनाली, तुम आई तो मैं सोच रही थी आज तो तुम पक्का मुझे मकई के कुछ कुछ व्यंजन खिलाओगे, लेकिन तुम लाई नहीं। चलो हम रेसिपी पढ़ के संतुष्टि ले
1: वे बारिश तो गिरने दो, उसके बाद में हम कुछ, बारिश गिरने के बाद ही मकई
0: चलो
1: खाने का
0: चलो
1: आनंद
0: माफ
1: बढ़ता
0: किया
1: है
0: है ना,
1: जी।
0: चलो रेसिपी पढ़ के अपनी भूख को शांत कर लेते। हमारे साथी ने लिखकर भेजा है मकई की चाट, इसकी सामग्री नोट कीजिएगा। एक एक 1.5 कप या 2 कप स्वीट कॉर्न या देसी भुट्टे के दाने। सब्जियों में आपको लेना है 1 छोटा प्याज, 1 टमाटर और 1 हरी मिर्च। और मसाले में आपको लेना है 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और नमक आपके स्वाद के अनुसार, काला नमक या आप सादा नमक भी ले सकते हैं। और इसमें 1 बड़ा चम्मच मक्खन लेना है आपको, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसको बनाने की विधि है कि आप भुट्टो को उबाल लें एक पैन या बर्तन में पानी डाल करके, कॉर्न के दाने आप 5 से 10 मिनट उबालिए और इसको छान लीजिए। तड़का लगाने का के लिए आपको एक पैन में मक्खन गर्म करना है, उसमें उबले हुए कॉर्न 1-2 मिनट के लिए भूने। आप बिना भुने भी इसका चाट इसकी चाट बना सकती हैं। और इसमें मसाला मिलाएं जो आपने फ्राई किया है, उसको मसाला मिलाएं। 1 बड़े कटोरे में गर्म या सामान्य कॉर्न ले और इसमें सभी कटी हुई सब्जियां, प्याज टमाटर हरी मिर्च और मसाले, चाट मसाला जीरा पाउडर लाल मिर्च नमक आदि डालें, मिला लें। नींबू का रस डाल दें, हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से आप मिलाएं और ये आपकी चटपटी मसालेदार कॉर्न चाट तैयार हो गई
1: यानी
0: है।
1: जो लोग डाइटिंग करते हैं वो भी खा सकते हैं,
0: बिल्कुल खा
1: है?
0: सकते हैं, अनार के दाने भी आप डाल सकते हैं और पड़ोसियों को चाहते हैं आप, है ना।
1: और मकई का हलवा बनाने की विधि
0: वाह,
1: लिखकर भेजी है कि ताजे नरम कच्चे भुट्टे के दाने को मिक्सी में से पीस ले, फिर एक पैन में घी गरम करके भुना हुआ मकई का पेस्ट डाले। अब तब तक भुने जब तक वो पैन ना छोड़ने लगे, अर्थात पैन में चिपके नहीं। फिर इसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर डालकर गाढ़ा होने तक पकाए। तैयार है पौष्टिक मकई का हलवा, ऊपर से मेवे डालकर हलवा सर्व करें। और इसमें अगर आपने ज्यादा दूध डाल दिया और थोड़े से दाने ऐसे उबले हुए बिना पिसे हुए दाने डाल दे, तो मकई की खीर भी बन सकती है।
0: क्या बात है। और एक साथी लिखती है कि मेरे घर मकई की सब्जी बनती है, वो कुछ इस तरह से कि सबसे पहले बिना छिलके वाले साबुत मकइयों को हल्दी नमक पानी के साथ कुकर में उबाला जाता है। ठंडा होने पर इसके 1 से 3-4 पार्ट में इसको काटा जाता है। उबली हुई मकइया के टुकड़े प्याज आलू टमाटर की सब्जी में मिलाकर 4 मिनट तक पकाया जाता है ताकि सब्जी का मसाला मक्की के टुकड़ों में आ जाए। ग्रेवी गाढ़ी या पतली आप चाहो तो इसे रख सकते हो। और मकई के दानों के आप बेसन में मिला करके पकौड़े बना लीजिए, है ना।
1: और एक है ना, सखी ने लिखा है कि भुट्टे के दाने का छिलका या चीला, यानी दाने को बारीक पीस ले। अब इसमें कटी हरी मिर्च, नमक, 1-2 चम्मच बेसन या चावल का आटा या सूजी बारीक कटा प्याज मिला ले और तवा पर इसका चीला बनाए। ये बहुत पतले नहीं बनते, थोड़े मोटे रहते हैं। अगर इसमें आप प्याज नहीं मिलाना चाहते तो बिना प्याज के बहुत अच्छी लगती है। चटनी या दही के साथ खाते, पर मैं तो कहूंगी किसी की जरूरत नहीं, खुद ही बहुत स्वादिष्ट और मीठे लगते हैं। और मकई ना दो तरह की आती है, एक पीले रंग की मकई होती है और एक सफेद। तो पीले रंग के जो दाने होते हैं ना मीठे होते हैं, और सफेद वाले जो होते हैं इतने मीठे नहीं होते, यानी फीके होते हैं।
0: हाँ।
1: तो जब नमकीन डिश बनाना होता तब सफेद वाले मकई का इस्तेमाल करें तो ज्यादा
0: अच्छे।
1: सुनाली
0: तुमने बहुत अच्छी सी टिप्स दी है, तो बड़ा स्वाद आ गया इन सब रे व्यंजनों को सुन करके, देख करके और पढ़ करके। तो अब चलो एक गीत सुन लिया जाए।
1: सुनते हैं गीत।

0: तो सोनाली, मकई के सूप के बारे में भी बता देते कि मकई के दाने इसकी लेना है आपको, गाजर, शिमला मिर्च, अदरक, काली मिर्च, नमक, कॉर्नफ्लोर लेना है और सब्जी को हल्का भूने पानी में डालकर उबालें, थोड़ा कॉर्न पीस कर मिलाएं ताकि सूप गाढ़ा हो जाए और गर्मा गर्म आप इसको परोसें।
1: तो यानी
0: तो
1: अभी जब सर्दियों के दिन आते हैं या फिर जब झमाझम बारिश गिरती है, जब वातावरण एकदम से ठंडा हो जाता है, उस वक्त ये गरम गरम सूप जो है ना, ये बहुत हमें अच्छा लगता है, बहुत भाता है। भले ही थोड़ी सर्दी हो जाए ना, उस वक्त भी ये सूप दे दे तो बहुत अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल। और सोनाली, जब हम किचन में जाते हैं, कुछ नई चीज हमें बनानी पड़ती है, तो उसके लिए हमें अपना कौशल भी दिखाना पड़ता है और साथ में हिम्मत भी बहुत दिखानी पड़ती है कि जो हम बना रहे हैं
1: जी
0: वो सही बनेगा और लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। और जब अच्छी चीज बनती है तो लगता है थोड़ी सी पड़ोसी को दे दे। तो यानी कहना चाहिए कि हमें आज के सारे विषयों को मिलाकर एक अच्छी नई शुरुआत करनी चाहिए, अपने पड़ोसियों को बढ़िया बढ़िया कुछ ना कुछ खिलाते
1: और
0: रहना
1: श्रोताओं को
0: चाहिए।
1: कहते हैं हम धन्यवाद और
0: जी,
1: लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
0: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आज के मेहमान ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: दोस्तों नमस्कार, आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लेखक और कवि विवेक रंजन श्रीवास्तव से ममता सिंह की बातचीत।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक साहित्यकार को जो नाटक भी लिखते हैं, व्यंग्य भी लिखते हैं, कहानियां और उपन्यास भी लिखते हैं। विवेक रंजन जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, विविध भारती के माध्यम से आपको, विविध भारती परिवार को और तमाम श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
1: कैसा लग रहा है आपको स्टूडियो में आकर?
2: बड़ा आत्मीयता का भाव, सारस्वत भाव।
1: क्या
2: और जिस ढंग से नाटक पर मुझे अभी साहित्य एकेडमी, मध्य प्रदेश साहित्य एकेडमी से अवार्ड भी मिला और विविध भारती की पहचान हवा महल से है मेरे जहन में। बचपन से हम लोग 8:15 बजने का इंतजार करते थे और हवा महल का बहुत बड़ा
1: अब 8 बजे का समय हो गया।
2: 8 बजे का हो गया। जी हाँ
1: जी। और भी जो बहुत सारे पुराने प्रोग्राम है, छाया गीत, संगीत सरिता, वो अभी भी ब्रॉडकास्ट?
2: जी हाँ जी हाँ, छाया गीत नियमित सुनता था मैं। हाँ। और कहीं हम लंबी यात्रा पर जाते हैं तो FM विविध भारती ही लगा लिया जाता है। और आपको बताऊं ममता जी, कि एक दिन बड़ा रोचक प्रसंग हुआ। मेरी जो श्रीमती जी हैं उन्होंने कहा आज खाना नहीं बनेगा। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले FM रेडियो नहीं बज रहा है। अच्छा। और मैं विविध भारती सुने बगैर खाना नहीं बनाऊंगी। तो ये विविध भारती की लोकप्रियता है और आप जैसी रेडियो सखी, आपकी बहुत सारी छाया गीत मैं बड़े अच्छे से सुनता रहा हूं और मुझे प्रसन्नता है कि आज आपसे बातचीत हो रही है। आप कहानीकार भी हैं, आप उपन्यासकार भी हैं और साहित्यकार हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो आपके बारे में चर्चा करनी है तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। हम सबसे पहले विवेक रंजन जी जानना चाहते हैं आपसे कि ये जल्लाद क्या है, कहां से विचार आया ये नाटक लिखने का, इसके लिए पुरस्कार भी मिला आपको?
2: जी हाँ, मुझे मध्य प्रदेश साहित्य एकेडमी ने अभी रिसेंटली जो साहित्य एकेडमी के पुरस्कार डिक्लेयर किए उसमें हरिकृष्ण प्रेमी नाट्य पुरस्कार 51,000 रुपए का है, वो घोषित हुआ है मेरी नाट्यकृति जलनाद पर। और जलनाद कैसे लिखा मैंने, मैं आपको बताऊं, विश्व जल वर्ष था UNO का, तो नॉर्डिक देशों के लिए एक प्रोग्राम था जिसमें मुझसे ये चाहा गया कि मैं पानी के महत्व को लेकर के कोई पौराणिक आख्यानों को जोड़ करके एक नाटक तैयार करूं।
1: जी।
2: तो मैंने ये विभिन्न जो हमारे धार्मिक या कहें आध्यात्मिक चिंतन वाले ग्रंथ हैं, क्योंकि जैसा आप जानती ममता जी, कि इस सृष्टि का उदय भी पानी से हुआ और जो अंत की परिकल्पना है आध्यात्मिक रूप से वो भी जल प्रलय से है।
1: जी हाँ।
2: आप जानती हैं कि हमारे ऋषि मुनि पानी से ही मंत्र उच्चारित कर श्राप दे दिया करते थे, वरदान दे दिया करते थे। और न केवल भारतीय मनीषा के उसमें, हम इसको वैश्विक परिदृश्य में देखें तो
1: जल ही जीवन है,
2: जल ही जीवन है, पानी का लिए ही

0: तीसरा विश्व युद्ध होगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, आज भी कितने सारी कंट्रीज हैं जहां पर शुद्ध पेयजल हम उपलब्ध नहीं करवा पा रहे, जबकि हम विज्ञान से इस कदर प्रगति कर चुके हैं। अभी आपने देखा कि तेल खाड़ी देशों में जो युद्ध हुआ, वहां भी जो समुद्र के पानी को शुद्ध करके पेयजल बनाया जाता है, तो वो एक बड़ी समस्या थी कि अगर वो उन पानी के संयंत्रों पर बिजली की कमी या कोई के कारण से पानी नहीं बन पाएगा तो जीवन के लिए संकट उपस्थित हो
1: जी
0: सकता है। तो पानी का महत्व निर्विवाद है।
1: तो इसमें ये जो नाटक है ये जलनाद,
0: जी
1: इसमें कैसे पात्रों का चयन किया आपने, संवाद कैसे गढ़े, कहाँ से आपके पास आइडिया आया, क्या
0: इसमें,
1: रिसर्च किया
0: जी
1: आपने?
0: हाँ, मैंने इसमें बहुत सारी रिसर्च करी और पानी से संबंधित जितने दृष्टांत मुझे मिलते चले गए उनको नाट्य रूपांतर में मैं बदलता रहा। तो 12 इसमें नाटक हैं। जैसे मैं एक कविता का एक छोटा सा अंश प्रस्तुत करूं,
1: जी
0: जो मैंने ऋग्वेद से, जो हमारा एक ऋग्वेद का मंत्र था जिसमें जल देवता को संबोधित करते हुए
1: जी जी
0: बात की गई है,
1: हाँ
0: तो मैं उससे एक, जो उसका हिंदी मैंने भावा अनुवाद किया है, एक अंतिम पैरा पढ़ देता हूं।
1: जी जी
0: हे
1: जरूर
0: जल के देवता, मेरा आचरण अब तेरे जैसा हो, तेरा रसायन मेरे पोर पोर में समा जाए, तू प्रवाहमान अग्नि है, तू आ मुझे तेजस्वी बना, वर्चस्व प्रदान कर। जिस प्रकार हम जानते हैं ये ऋग्वेद की
1: ऋचा
0: ऋचाएं हैं, उसका हिंदी अनुवाद है अंत में मैंने किया है, कि पानी की एक बहुत बड़ी गुण है कि वो जिस पात्र में रखा जाता है वह रेप आकार ले लेता है। पानी का एक बहुत बड़ा गुण है कि उसमें जो रंग मिला दिया जाए वह उस रंग में रंग जाता है। तो ये एक, इसका अगर हम बौद्धिक विवेचन करें तो यह हमारे लिए जीवन सूत्र भी है।
1: जी, बहुत बढ़िया। और आपने व्यंग्य भी लिखे हैं,
0: जी
1: और
0: हाँ,
1: एक बहुत बड़े व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी मध्य प्रदेश जबलपुर के रहने वाले हैं, तो हरिशंकर परसाई जी को आपने पढ़ा है, उनसे क्या कुछ पाया, क्या कुछ सीखा आपने?
0: ममता जी, व्यंग के ट्रिपॉयड मध्य प्रदेश में हैं।
1: जी
0: शरद जोशी जी, बाद में उनकी कर्मभूमि मुंबई रही, वो भोपाल से थे।
1: उनका प्रतिदिन एक कॉलम आता
0: जी
1: था,
0: हाँ,
1: और
0: और हरिशंकर परसाई जी का एक कॉलम आता था, सुनो भाई साधो।
1: सुनो भाई साधो जी।
0: तो मैं ये सब पढ़ते हुए अखबारों में बड़ा हुआ हूँ, मेरा परिवार साहित्यिक रहा है तो मुझे पढ़ने में बहुत रुचि थी, तो ये सब पढ़ा मैंने। रविन्द्रनाथ त्यागी जी, वो भी मध्य प्रदेश के थे,
1: जी।
0: और जो एक कहा जाए कि व्यंग के ट्रिपॉयड, ये तीन स्तंभ रहे हैं, और उनका पूरा साहित्य मैंने पढ़ा, और अवचेतन में कहीं ना कहीं एक व्यंग के बीज
1: आपके भीतर
0: अंकुरित होते रहे।
1: जी
0: व्यंग देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग एक स्प्रिट की तरह काम करता है। हम
1: जी
0: कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए हैं और बड़ा लोकप्रिय है, लोग उसे पढ़ते हैं, प्रतिक्रियाएं देते हैं। और मेरी व्यंग की 11 किताबें हैं जिनमें मेरे अनेक व्यंग संग्रहित, समय समय पर जो लिखता गया वो किताबों के रूप में आते चले गए एक के बाद एक।
1: कुछ महत्वपूर्ण किताबों का जिक्र करना चाहेंगे आप?
0: हाँ जरूर, मैंने कुछ संपादन किया वैश्विक रूप से व्यंग संग्रहों का, मैंने वैश्विक लेखकों को एकत्रित किया। मेरा परिदृश्य, मैंने बैकग्राउंड थोड़ा सा वैश्विक हो गया है
1: जी
0: क्योंकि बच्चे मेरे सब विदेश में हैं तीनों, तो उस वजह से, जैसे मैंने एक मिली भगत यानी सामूहिक व्यंग संग्रह बहुत से निकले हैं, भारत से भी कई निकले हैं और बड़े बड़े निकले हैं, लेकिन पहला वैश्विक संग्रह अगर मैं कहूं तो मुझे बताने में गर्व होता है कि मिली भगत, जैसा नाम से ही है,
1: जी जी
0: उस नाम से मैंने ये निकाला था। तो इसमें पूरे विश्व के, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, लंदन से, जो व्यंगकार उस समय व्यंग लिख रहे थे उनके व्यंग, दुबई से, वो ले करके और उनका एक सामूहिक संग्रह निकाला था। तो
1: क्या
0: इसका नाम
1: बात
0: मिली
1: है।
0: भगत है और उसका संपादन मैंने किया था।
1: जी
0: जो आपने बात की कि मेरे व्यंग की किताबों की बात, तो राम भरोसे ये एक शीर्षक है,
1: जी
0: यानी जो भारतीय आम आदमी है वो किसी समय ऐसा लगता था कि जैसे वो राम भरोसे है,
1: जी
0: अंत्योदय, जो गांधी के अंत्योदय का आदमी है, उसको जब हमने राम भरोसे एक प्रतीकात्मक नाम दिया। व्यंग में एक लक्षणा शक्ति होती है, एक
1: मुश्किल भी होता है व्यंग्य लिखना, क्योंकि जो चुटीले व्यंग्य होते हैं, जब हरिशंकर परसाई के व्यंग्य को पढ़ने के बाद बहुत मुश्किल होता है कि आप उस व्यंग्य को लिखकर गुदगुदा सकें या फिर करारा चोट कर सकें, दोनों विधा, तो आप

0: सकते हैं कि हम इसको वोट दें कि उसको वोट दें, दोनों चेहरे तो एक से हैं।
1: जी,
0: कई बार ये स्थितियां होती
1: बिल्कुल।
0: हैं जी।
1: तो हम किंग कर्तव्य विमूढ़ नहीं हो सकते हैं,
0: जी हाँ
1: हम इस समय जानना चाहते हैं कि आप गाने भी सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, तो इस
0: जी,
1: समय एक गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को। आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं?
0: चलिए ममता जी आपने बहुत अच्छी फरमाइश की है, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये सुना जाए,
1: सुनते हैं।
0: क्योंकि लोग कुछ भी कहते रहेंगे, हमें अपना एक दृष्टि और
1: लक्ष्य,
0: एक ना लक्ष्य निर्धारित कर उस ओर बढ़ना होता
1: जी,
0: है।
1: अमर प्रेम फिल्म का
0: ये
1: गाना
0: अमर
1: है,
0: फ्रेम फिल्म का गाना है, किशोर कुमार की आवाज़ है,
1: जी।
0: आनंद बख्शी जी ने इसे बहुत अच्छे शब्द दिए हैं, तो क्यों ना हम ये गाना सुने।
1: सुनते हैं यही गीत।

0: विवेक रंजन जी, आपने लिखे भी हैं, नाटक लिखे हैं, व्यंग्य लिखे हैं और उपन्यास भी लिखा है, कहानियां भी, इसकी चर्चा हम करते रहेंगे। लेकिन हमें बताइए कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की,
1: जी हाँ
0: एमटेक किया,
1: जी हाँ
0: बिजली विभाग में आप अभियंता के रूप में कार्यरत रहे,
1: जी हाँ
0: तो उसकी कहानी थोड़ी बताइए, कैसे वहां पहुंचे और कोई खास याद वहां से जुड़ी हुई है जो शेयर
1: ममता जी,
0: करेंगे?
1: मैं इसके लिए कहूँगा कि आप बड़ी लकी हैं, क्योंकि आपकी अभिरुचि भी साहित्य में है और आप आकाशवाणी जैसे संस्थान में काम भी कर रहे
0: जी जी
1: हैं।
0: जी
1: मैं इतना लकी नहीं था,
0: विरोधाभास
1: विरोधाभास रहा मेरे जीवन में,
0: रहा है। जी
1: क्योंकि भारतीय स्थितियों में अनेक लेखकों के साथ मैं जानता हूं
0: हाँ
1: कि जो आजीविका के लिए कुछ और हैं और जिनको रुचि कुछ और है। तो मैं एक साहित्यिक परिवार से आता हूं, मंडला में मेरे दादाजी जो थे उनके गीत प्रभात फेरियों में गाए जाते थे,
0: अच्छा, क्या
1: मेरे
0: बात है।
1: पिताजी स्वर्गीय प्रोफेसर चित्रभूषण श्रीवास्तव विदग्ध जी, उनकी 40 विभिन्न किताबें हैं
0: जी
1: जो आध्यात्मिक प्रसंगों की रचनाएं हैं। उन्होंने भगवत गीता, रघुवंश, मेघदूत जैसी रचनाओं के हिंदी काव्यानुवाद किए और उनको अनुवाद पर सर्वोच्च पुरस्कार भी मिला। तो मैं उससे था, मैंने जब हाई स्कूल में था तब तक हमारे यहाँ 11वीं कक्षा जो होती थी वो हायर सेकेंडरी होती थी, तो मैंने हायर सेकेंडरी तक मंडला की जिला पुस्तकालय और जो भी मंडला के जो सार्वजनिक पुस्तकालय थे उनके सारे साहित्यिक उपन्यास चाट डाले
0: क्या बात
1: थे।
0: है, उस
1: तो
0: समय पढ़ने का एक
1: जी हाँ,
0: खास शौक
1: और
0: हुआ करता
1: पढ़ने
0: था,
1: का
0: दौर
1: शौक
0: था
1: था,
0: पढ़ाई
1: बहुत
0: का।
1: दौर था, क्योंकि मनोरंजन के और साधन नहीं थे,
0: जी
1: रेडियो, अखबार, अखबार के साहित्यिक कॉलम वो लोग हम लोग पढ़ा करते थे, पत्रिकाएं आती थी तो हम भाई
0: जी
1: बहन दौड़ते थे जब भी कोई नया पत्रिका का अंक
0: कि
1: आता
0: कौन
1: था,
0: पहले पढ़ेगा।
1: कौन पहले पढ़ेगा। तो ये जमाना था, तो
0: मनोहर
1: मैंने
0: श्याम जोशी का
1: जी हाँ
0: साहित्यिक ये साप्ताहिक हिंदुस्तान,
1: साप्ताहिक
0: तो इंतजार
1: हिंदुस्तान,
0: होता था कि कौन पहले
1: धर्मयोग,
0: पढ़ेगा, धर्मयोग।
1: धर्मयोग
0: जी जी
1: और बच वो उससे भी पहले
0: हाँ
1: छोटे की बात करें तो परा

0: राग नंदन ये सब हम लोगों के बचपन में पढ़ पढ़ के वो संस्कार आए।
1: जी
0: तो हम बात कर रहे थे कि मंडला में जब हमारा साहित्यिक परिवार से था तो मैं पढ़ने में होशियार था ईश्वर की कृपा से। लक्ष्य निर्धारित हो तो हम सब अपने उसको उस दिशा में चल कर आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया, तो डेफिनेटली इंजीनियर बनना डॉक्टर बनना एक अच्छा व्यवसाय माना
1: तो
0: जाता था।
1: इंजीनियरिंग पढ़ने का सपना आपने कैसे देखा, पहले ये बताइए कि कहाँ से बीज पड़ा, क्योंकि आप
0: गणित
1: तो साहित्यिक
0: जी हाँ
1: रुचियों में जा
0: रुचि
1: रहे
0: में
1: थे।
0: था, बिल्कुल सही है आपका कहना, लेकिन गणित में मैं हमेशा अव्वल रहा
1: अव्वल थे।
0: जी हाँ। तो जब मेरा 11th हुआ और मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हुआ तो मैंने सलाह की, मैं मंडला जैसी छोटी जगह, मंडला एक आदिवासी प्रमुख जिला है और कान्हान अंतर्राष्ट्रीय उद्यान जो वन्य अभयारण्य है उसके लिए जाना जाता है, तो वहाँ से था। तो मेरा NIT रायपुर में सिलेक्शन हो गया, तो
1: क्या
0: मैंने
1: बात है,
0: रायपुर
1: बढ़िया।
0: से बी किया। फिर उसके बाद बी करने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया
1: एमटेक में।
0: MSCT भोपाल से, और इस प्रकार इंजीनियरिंग में मैं निष्णात हुआ और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया विद्युत मंडल में। तो मैं वहीं से चीफ इंजीनियर बन के रिटायर हुआ, और आजकल की तरह नहीं कि उस समय, तो आजकल तो जब तक बच्चों की कंपनियों का नाम याद करते हैं हम तब तक वो कंपनी बदल लेते
1: तब आपने एक जगह
0: हैं
1: नौकरी ज्वाइन की तो
0: लगातार
1: बस
0: की
1: वहीं पे स्थायी रूप से।
0: जी
1: लेकिन विद्युत मंडल में, विद्युत विभाग में अभी भी बहुत सारे शहरों में बिजली की कटौती होती है, महानगरों को छोड़ दें, मुंबई में तो बिजली जाना मतलब एक खबर बन जाती है,
0: जी
1: लेकिन अभी भी देखा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में बिजली की कटौती होती है। तो ऐसी कभी कोई घटना की शिकायतों से भर दिया गया हो, कोई ऐसी घटना याद
0: नहीं
1: आती
0: आप
1: है?
0: सही कह रही हैं, लेकिन बिजली का परिदृश्य बहुत बदल चुका है ममता जी। मुझे ये बताने में खुशी है कि अब एक समय था कि जब उत्पादन कम था और मांग
1: खपत
0: ज्यादा थी,
1: ज्यादा थी। जी
0: खपत ज्यादा थी, अब हमारी मांग के अनुरूप काफी बिजली बन रही है और बहुत सारी उसमें नवाचार भी हुए हैं। अब अलग कंपनियां हैं जो विद्युत बनाती हैं। भारत में बिजली बनाने के जो अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा मैं कि सबसे स्वच्छ बिजली बनती है पन बिजली, जहां पर पानी की जो स्थितिज ऊर्जा है उसको पानी को नीचे गिराकर गति ऊर्जा में बदला जाता है और उससे टरबाइन, मैंने बिजली बनाने का बेसिक प्रिंसिपल यह है कि तांबे का कोई जो हमने फेराडे लॉ पढ़ा है कि बिजली तभी बनती है जब कोई उनमें बल अंतर होता है, तो वो कॉपर का पूरा कॉइल जब घूमता है किसी मैग्नेट के अंदर तो बिजली बनती है। अब उसको घुमाने का तरीका क्या हो सकता है, तो या तो भाप की शक्ति से घुमाया जाता है तो वो थर्मल बिजली कहलाती है, उसमें कोयला जलाया जाता है तो प्रदूषण होता है, चिमनियों से धुआं निकलता है। दूसरा होता है पन बिजली, जिसमें कि स्वच्छ पानी गिरता है लेकिन उसकी लागत बहुत ज्यादा होती है क्योंकि बांध बनाया जाता है, पानी भरता है तो बहुत से गांव विस्थापित होते हैं, हर एक के अपनी समस्याएं भी हैं। और परमाणु बिजली होती है, तो मैं मंडला में पदस्थ था तो मंडला जिले में एक चुटका परमाणु परियोजना नर्मदा नदी के बांध के किनारे, जो बरगी बांध है उसके जल भराव के क्षेत्र के किनारे प्रस्तावित है, तो उसके प्रारंभिक सर्वे से लेकर के और उस जमीन का, क्योंकि वहां पर जो न्यूक्लियर पावर डिपार्टमेंट है उनकी मांग ये थी कि हमें फाउंडेशन की दृष्टि से जमीन अच्छी चाहिए, पर्याप्त पानी चाहिए, पानी का केमिकल एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए और वहां की आबादी कम होना चाहिए क्योंकि कभी कोई दुर्घटना हो तो इन सारी दृष्टियों से जो मंडला का क्षेत्र था वो सही पाया गया और उसके सर्वे वगैरह मैंने किए। तो एक ये बात है, कच्चे माल के रूप में पानी और जमीन यही दिया जाना था, तो ये वो प्रस्तावित है, अभी जब भी बनेगा तो वो भी परमाणु बिजली घर भी मध्य प्रदेश को मिलेगा।
1: जी, बड़ी अच्छी जानकारी दी। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए
0: जरूर
1: कौन सा
0: जरूर,
1: गाना?
0: एक बैजू बावरा 1952 में एक फिल्म आई थी ममता जी,
1: बहुत मशहूर फिल्म
0: मन
1: है।
0: तड़पत हरि दर्शन को, और इस गाने की खासियत पे हम चर्चा करना चाहेंगे।
1: जी।
0: एक धार्मिक सद्भाव की बात करें तो मोहम्मद रफी साहब ने इसको गाया था, नौशाद जी ने
1: संगीतबद्ध किया है।
0: संगीतबद्ध किया था और शकील बदायूनी जी के शब्द हैं और गीत है मन तड़पत हरि दर्शन को।
1: जी,
0: आज
1: तो
0: तो
1: ये ऐसे
0: आज भी ये
1: कलाकार हैं।
0: धुन पूरे हम सब के मंदिरों में बजती है और सब मानव के मन मंदिर में ये बजती रहे और सद्भाव हो देश में, ये मेरी कामना है।
1: क्या बात है, मेरे ख्याल से राग भैरवी पर आधारित ये गाना है
0: क्या बात है,
1: तो
0: आपने उसका राग भी बता दिया ममता जी,
1: जी
0: आपकी तो खैर बात ही कुछ अलग है।
1: तो अब यही गाना सुनते हैं।
0: बिल्कुल।

0: कि जो गाना अभी हमने सुना, गाने के बाद हम चाहते हैं कि आप, चूंकि बिजली विभाग में कार्यरत रहे हैं
1: जी हाँ
0: और बिजली विभाग में जो कार्यरत होते हैं शिकायतें बहुत सारी मिलती हैं,
1: जी हाँ
0: तो कोई ऐसी यादगार बात बताना चाहेंगे? आपके पास शिकायतों की भरमार, आपके घर वालों ने भी कभी कोई शिकवा शिकायत की कि आप तो बिजली विभाग में काम करते हैं और हमारे घर पे बिजली गायब है,
1: ममता जी,
0: तो ऐसी कोई
1: बहुत
0: बात है
1: अच्छा
0: तो?
1: सवाल किया आपने और इस सवाल के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
0: जी
1: मैं जब चीफ इंजीनियर था तो
0: हाँ
1: मैं अपने जो लाइन स्टाफ था उसको ये कहा करता था कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, और उनको इस ढंग से मोटिवेट करता था। क्या होता है ममता जी कि किसी भी विभाग में जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो अपनी जवाबदारियां समझते हैं, लेकिन कई बार जो हमारे छोटे कर्मचारी हैं जिनका सीधा सामना आम नागरिकों से होता है, हम कहीं बैंक जाते हैं, किसी भी रेलवे स्टेशन में जाते हैं, तो जो विंडो क्लर्क होता है, यदि उसका भाव आपसे बातचीत अच्छी है, उसमें संवेदनाएं हैं, उसमें मानवीय गुण हैं, उसमें नैसर्गिक एक समस्या को निपटाने की भावना है, तो जो कंज्यूमर होता है वो सेटिस्फाइड होकर निकलता है। तो वही बिजली विभाग की बात है कि जो हमारे लाइनमैन हैं, जो हमारे लोगों को बिजली कनेक्शन चाहिए होता है, लोगों को अपना बिल पटाना होता है, लोगों को बिजली सही ढंग से, उनको अच्छी बिजली बराबर उसी उस पे वोल्टेज पे प्रॉपर मिलती
0: जी
1: रहे,
0: जी जी
1: ये उनकी, उसके लिए पैसे देने को आज लोग तैयार हैं, लेकिन कई बार हमारी सेवाएं अगर नहीं होती तो वो तकनीकी सीमाएं जहां पर हैं वहां हैं, लेकिन जहां मानवीय सीमाएं हैं, जो हमारे व्यवहारिक सीमाएं हैं, उनको हम थोड़ा सा ज्यादा काम करके थोड़ा सा वो कर, तो इसको मोटिवेट करना पड़ता है टीम भावना से। तो मैं अपने डिपार्टमेंट में इसीलिए जाना भी जाता था
0: क्या बात है।
1: कि इस ढंग से हम लोगों को अपने मोटिवेट करते थे। और बिजली का परिदृश्य बहुत बदल गया, मेरी एक किताब भी है बिजली का बदलता परिदृश्य, क्योंकि आपको याद होगा कि एक समय था अंधेरा कायम रहे, मैंने लोग बोले कि बहुत बार बार खुशियां मनाने का मौका मिलता है एमपीपी की तरफ से, क्यों? क्योंकि बोले जितने बार बिजली जाती है उतने बार जब बिजली आती है तो लोग खुश हो जाते हैं कि वाह बिजली आ गई।
0: जी
1: तो हमने वो खुशी छीन ली है, अब लगातार मिलती है बिजली, लेकिन ये है कि कभी तकनीकी, क्योंकि आप जानती हैं कि इतना बड़ा नेटवर्क है भारत का, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं।
0: तो आपकी श्रीमती जी ने कभी कोई कंप्लेन की, शिकायत की कि नहीं?
1: हाँ श्रीमती जी तो शिकायतों का पुलिंदा होती हैं, क्योंकि
0: अच्छा।
1: मैं दीपावली में भी जब हम लोग देर रात घर में पूजा कर पाते थे, क्योंकि हमें पूरे शहर की बिजली का देखना होता था कि बराबर बिजली सप्लाई हो गई, सबके घरों में पूजा अच्छे

0: से हो जाए, प्रकाश रहे,
1: हाँ
0: कहीं कोई त्रुटि आए तो हम उसे तुरंत निराकरण कर सकें। तो मैं पावर हाउस से देर रात लौटता था, तब हम घर की पूजा करते
1: जी
0: थे।
1: जी
0: तो ये मेरी अकेली समस्या नहीं है, ये पूरे किसी भी सिस्टम के पीछे जो पूरी एक टीम लगी होती है। जब यहाँ मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो यहाँ मैं पूरे सारे बिजली के जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से बात कर रहा हूँ।
1: बिल्कुल
0: वे सब पूरा, जैसे हम जब सुरक्षा की बात करते हैं तो जो हमारा पुलिस बल है, जब हम अस्पतालों की बात करते हैं तो जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है,
1: जी
0: जब हम उनकी तरफ से बात करते हैं तो वो पूरी टीम लगी होती है, तब कहीं जा करके।
1: बिल्कुल। और जब कभी जरा सी बिजली गुल होती है तो लोग शिकायतों की भरमार कर देते हैं और ये नहीं समझ पाते हैं कि उस विभाग में भी कुछ बाध्यताएं होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, और कहीं कोई त्रुटि हुई तो पूरी टीम काम में लग जाती है।
0: जी हाँ,
1: चलिए अब हम यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा गाना सुनवाएं?
0: तो हम सबको मुस्कुराहटें देना चाहते हैं,
1: जी
0: तो किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, ये
1: जी जी
0: 1959, ये मेरे
1: अनाड़ी फिल्म का गाना है।
0: अनाड़ी फिल्म का, ये मेरी जन्म वर्ष है 1959,
1: अच्छा,
0: 28 जुलाई
1: क्या बात है।
0: 59
1: तो सुनते हैं यही
0: जी
1: गाना।
0: जी हाँ।

0: अनाड़ी फिल्म का ये गाना था। विवेक जी, हमें बताइए कि आपने नाटक लिखा है, व्यंग्य लिखा है, अन्य विधाओं पर भी लिखा है, तो तीनों विधाओं में से आपके लिए कौन सी विधा में लिखना आसान होता है और कौन सी विधा बहुत मुश्किल लगती है, और कोई
1: जरूर
0: रचना प्रक्रिया बताना चाहते हैं वो भी बताइए लिखते समय।
1: व्यंग मेरी मूल विधा है,
0: जी
1: क्योंकि जब कहीं बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि हम सीधे किसी को कटाक्ष नहीं कर पाते, सीधे बात नहीं कह पाते, किसी से गाली गलौज नहीं कर पाते, तो अपने मन का फ्रस्ट्रेशन मैं कागजों पर उतार देता हूं और उसे मैं व्यंग में अभिव्यक्त करने में ज्यादा सहज और सरल समझता हूं। कई बार क्या होता है कि विचार अपने हिसाब से विधाएं चुन लेते हैं,
0: जी
1: जो मैं कभी कभी कहता हूं कि हर व्यक्ति कभी न कभी जीवन में कवि अवश्य होता है। युवा प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, मैं कभी जब बहुत सारे विचार मन में कौंधते हैं तो कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बातें संप्रेषित करने की जो विधा है वो कविता है। आप भी रचनाकार हैं और
0: बिल्कुल
1: आप इसे समझ सकती हैं,
0: जी जी
1: क्योंकि कविता एक ऐसा शब्द चित्र बनाती है कि उसमें हर पढ़ने वाला अपने हिसाब से रंग भर सकता है और वह चित्र मुखरित हो जाता है उसके परिवेश के अनुरूप। तो कविताएं भी मैं करता हूं। मेरा 19 पहला काव्य संग्रह आक्रोश नाम से आया था,
0: जी
1: तो उसमें भी गिरिजा कुमार माथुर जी आकाशवाणी में रहे हैं,
0: जी जी
1: उनका एक वाक्य मुझे याद आता है, मैं कोट करना चाहूंगा।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आज के मेहमान हैं साहित्यकार विवेक रंजन श्रीवास्तव। आपसे बातचीत जारी रहेगी इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के मेहमान।
1: उन्होंने लिखा था कि मुझे युवाओं के आक्रोश भरे स्वर बड़े अच्छे लगते हैं।
0: क्या बात है।
1: तो मेरी किताब का शीर्षक ही है आक्रोश, और ये तार सप्तक अर्धशती समारोह भोपाल में हुआ था तो उसमें ये विमोचित हुआ था और ये मेरी पहली किताब थी।
0: जी, अगर कुछ पंक्तियां याद हो तो आप सुनाना चाहें सुनाइए, या किसी अन्य कविता संग्रह से कोई कविता याद हो तो सुनाइए।
1: हाँ जरूर, मैं आक्रोश की पहली कविता सुना देता हूँ।
0: जी,
1: छोटी सी कविता है, शीर्षक है निर्वस्त्र। वह निर्वस्त्र ही आया था इस दुनिया में, और तुम भी निर्वस्त्र ही आए थे। वह निर्वस्त्र ही आया था इस दुनिया में और तुम भी निर्वस्त्र ही आए थे। ये और बात है, ये और बात है कि तुम्हें नर्सिंग होम में ही झक सफेद तौलिये में लपेट दिया गया, और वह अगले 7-8 बरस नंगा ही घूमता रहा गांव की गलियों में।
0: क्या बात है।
1: और वह अगले 7-8 बरस नंगा ही घूमता रहा गांव की धूल भरी सड़कों पर। जब भी तुम्हारा उससे सामना हुआ, तुम्हें छी गंदा लड़का कहकर उसका परिचय दिया गया। और आज जब उसके मेहनतकश हाथों ने सी ली है इज्जत की छोटी सी टोपी और एक लंगोटी, जब आज उसके मेहनतकश हाथों ने सी ली है इज्जत की एक छोटी सी टोपी और एक लंगोटी, तो तुमने उसे अपना फटा पुराना पतलून देकर, अपना फटा पुराना पतलून देकर कपड़ों में भी कर दिया है एक बार फिर से निर्वस्त्र।
0: क्या बात है।
1: तो ये जनवादी नेचर की कविता थी।
0: हाँ, तो यहाँ पर कोई आपकी व्यंग्य रचना की कुछ लाइनें अगर याद है तो आप सुनाएं प्लीज।
1: जरूर ममता जी, मैं एक व्यंग का अंश छोटा सा सुनाना चाहूंगा। विसंगति ये है कि जब लेखक का नाम हो जाता है तो वो चल निकलता है, और उससे पहले जैसे निराला जी ने भी एक बार कहा था कि जब उनका नाम हो गया और रचनाएं छपने लगी तो उन्होंने वो रचनाएं पुनः प्रेषित कर दी जो कभी वापस आ गई थी शुरू के दिनों की।
0: जी जी।
1: ये उनकी जीवनी में मैंने पढ़ा हुआ है।
0: बिल्कुल।
1: तो उसी तरह का है कि विसंगति है नाम का महत्व, और तो ये जो रचना का शीर्षक है छींक का महाकाव्य, उसका छोटा सा अंश पढ़ता हूं मैं। परम आदरणीय साहित्यकार श्री विभूति नारायण आगाद जी की 3 महीने से एक गंभीर कविता लिख रहे थे, पर शीर्षक ही नहीं सूझ रहा था। तभी एक दिन अचानक उन्हें छींक आई, आंखें। छींक इतनी जोरदार थी कि कागज पर स्याही का एक बिंदु बन गया और उसके नीचे अनजाने में ही चू जैसा कुछ लिख गया। आगाद जी उसे काटने ही वाले थे कि उनकी वरिष्ठता जाग उठी। उन्होंने सोचा, मैं आगाद हूं, मेरे अवचेतन से निकला कोई भी शब्द साधारण कैसे हो सकता है। उन्होंने कागज पर 3 शब्द और जोड़ दिए, धूप की किरण और चू। उसी शाम एक प्रतिष्ठित पत्रिका के संपादक जी नई रचना लेने उनके पास पहुंचे।

0: और कागज पढ़ते ही उनकी आंखें चमक उठी। अद्भुत, इस चू में पूरा ब्रह्मांड बोल रहा है। अगाध जी, आपने आज आधुनिक मनुष्य की छटपटाहट को पकड़ लिया है। अगाध जी ने मन ही मन सोचा कि यह तो सर्दी जुकाम का कमाल था, लेकिन गंभीरता चेहरे पर लाते हुए बोले, इसे पाने के लिए चेतना को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाना पड़ा।
1: क्या बात है।
0: रचना मुख्य पृष्ठ पर छपी और फिर आलोचना जगत में तूफान मच गया। मार्क्सवादी आलोचक ने लिखा कि चूं शोषित वर्ग का विद्रोह है। मनोविश्लेषकों ने इसे दमित अहम की चीख बताया। अस्तित्ववादियों ने इसे जीवन की निस्सारता का सर्वोच्च उदाहरण बताया। एक युवा आलोचक ने तो यहां तक लिख दिया कि कबीर के अनहद नाद के बाद हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा नाद यही चू नाद है। सोशल मीडिया पर चू ट्रेंड करने लगा। लोग बिना समझे उसकी प्रशंसा करने लगे। तो आशा यह है कि जब लेखक का नाम हो जाता है तो उसकी रचनाएं चल निकलती हैं।
1: जी, क्या बात है। बढ़िया आपने रचना सुनाई, व्यंग्य रचना। और अब एक गाना सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा गाना सुनवाए?
0: ये सुना जाए कि जिंदगी प्यार का गीत है, सौतन से।
1: जी, सौतन फिल्म का गाना है। सुनते हैं यही गाना।

0: विवेक रंजन जी, व्यंग्य रचनाओं पर आपकी बात हुई, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हिंदी साहित्य, समकालीन साहित्य में, समाज में किस तरह के सकारात्मक बदलाव आप महसूस करते हैं?
1: बहुत सारे सकारात्मक बदलाव ममता जी हो रहे हैं। स्त्री विमर्श पर आजकल बड़ा चर्चा है और साहित्य का बहुत बड़ा हिस्सा जो तीसरा जेंडर है उस पर भी बहुत सारी रचनाएं आ रही हैं
0: जी,
1: और कहानियों ने भी यथार्थवाद को पकड़ा है।
0: जी
1: कहानियां अब उस ढंग की नहीं रही कि जो एक आदर्श ही प्रस्तुत करती थीं, अब यथार्थ को लेकर के, यथार्थ नायक, जो जिस ढंग का, जो समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, वो
0: जी
1: सारी चीजें कहानियों में देखने पढ़ने मिल
0: जी
1: रही हैं।
0: तो आपको क्या लगता है, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से
1: जी
0: बहुत सारे कथाकार जिनको नहीं जाना जाता है
1: जी
0: तो वो भी चर्चित हो जाते हैं, तो सोशल मीडिया ने क्या सृजन कार्य को कम किया है या बढ़ावा दिया है? मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ना लिखना लोग कम कर रहे हैं या ज्यादा, आपके नजरिए से क्या है?
1: सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा हथियार हमें दिया है, क्योंकि पहले मुझे याद है, ममता जी आपको भी याद होगा, कि हम लोग जब रचनाएं किसी पत्रिका के लिए भेजा करते थे तो साथ में एक पता लिखा, टिकट लगा, लिफाफा रखना होता
0: जी
1: था।
0: जी
1: और मुझे याद
0: वापस
1: है कि तब हम राइस पेपर पे कार्बन लगा करके मैं लिखता था, डॉट पेन से
0: जी, क्या बात है।
1: नीचे कांच रख करके। मैंने वो युग जिया है और भेजी हैं रचनाएं उस ढंग से, और हम डालते थे डाक में वो लिफाफे और फिर इंतजार करते थे
0: जी,
1: कि अब
0: रचना
1: मैंने
0: खत्म।
1: रचना किया तो स्वीकृति आएगी या अस्वीकृति आएगी और मेरा हाथ का पता लिखा लिफाफा लौट के आएगा। तो एक वो
0: बेसब्री
1: समय
0: से
1: था,
0: इंतजार
1: जी
0: होता
1: हाँ,
0: था।
1: ये एक समय था। और आज उसका नुकसान भी कहें और फायदा भी कहें, नुकसान ये है कि असंपादित रचनाएं बेहिसाब इधर मन में आया, और स्वसंपादन का युग है। हमने बटन दबाया और फेसबुक के जरिए, मैंने ब्लॉगिंग 2005 से शुरू की थी,
0: जी जी
1: जब
0: जी
1: हिंदी ब्लॉगिंग शुरू हुई तो मेरे ब्लॉग्स बहुत पढ़े जाते थे और उन पे हिट्स मिलते थे। आर्कूट का जमाना था, आप सब कुछ
0: जी
1: टर्न हो के, जी
0: बिल्कुल,
1: हाँ,
0: एक समय था
1: एक
0: आर्कूट
1: समय
0: बहुत
1: था, जी हाँ,
0: प्रचलित हुआ था। जी
1: तो उसमें भी मैं था। फिर ब्लॉग में आया, फिर फेसबुक आई, फेसबुक में आ गया। तो इन सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका ये लाभ तो मिलता है कि रचनाकार के मन में जो भी भाव आए, आप सहमत होंगी कि वो लिखता है और उसको संपादक की कोई गरज नहीं होती, वो खुद लिख करके खुद उसे संप्रेषित कर देता है। लेकिन उसका जो साहित्य की दृष्टि से दुष्परिणाम की अगर बात करें तो असंपादित रचनाएं जा रही हैं।
0: जी
1: संपादन का एक अलग महत्व होता है। संपादक वह प्रहरी होता है जो पाठक और लेखक के बीच कहीं कोई एक ऐसा कर्टन लगाता है कि उसे बड़े तरीके से प्रस्तुत करता है,
0: एक पुल का काम
1: पुल
0: करते
1: का काम
0: हैं
1: करता है।
0: कि
1: जी हाँ,
0: अगर पुल अच्छा है, मजबूत है, तो निश्चित रूप से
1: नहीं, उससे परिष्कार
0: आप
1: भी
0: पार
1: होता
0: जा
1: है,
0: सकते हैं।
1: परिष्कार भी होता है। मैं तो चूंकि घर में, मैंने, मेरी वाइफ मेरी पहली श्रोता है हमेशा, जब मैं लिखता हूं तो उसे पकड़ के जबरदस्ती बिठा के सुनाता हूं, और वो बहुत से परिष्कार रचना में होता ही है, तो
0: तो क्या
1: बताती,
0: प्रतिक्रिया देती हैं, अच्छी बुरी?
1: सुधार के बिंदु बताती। वो भी एक साहित्यिक परिवार से है, उसके पिताजी ने, वो स्वतंत्र लेखिका भी है और
0: अच्छा।
1: महिला पत्रिकाओं में उसकी रचनाएं छपती हैं। तो वो, हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस पे क्या लिखा जाना चाहिए, क्या, कौन सी बात ऐसी है जो संप्रेषणीय रचना की दृष्टि से हमने लिख ली लेकिन सामाजिकता के, मर्यादा की दृष्टि से, क्योंकि साहित्य में स जुटा हुआ है, सबका हित।
0: जी
1: तो जो कुछ हम, जब जब पुरस्कार मिल जाता है किसी को, कोई रचनाकार कुछ लिखता है, तो हम समाज के प्रति जिम्मेदार हो जाते हैं, क्योंकि हम रहें ना रहें साहित्य रहेगा,
0: जी बिल्कुल, किताब रहेगी
1: किताब
0: आपकी, लोगों
1: रहेगी,
0: का
1: रचनाएं
0: नाम
1: रहेंगी।
0: रहेगा।
1: तो
0: जी
1: ये जो आपने सोशल मीडिया की बात की थी
0: हाँ
1: तो उसमें ये कमी मुझे लगती है, लेकिन उसका लाभ यही है कि नंबर ऑफ लेखक बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अब विदेशियों की बात करें तो विदेशों में बहुत सारे बच्चे, हमारे युवा आज गए, हर तीसरे घर से कोई ना कोई किसी विदेश में है, तो वो उनके साथ उनके मम्मी पापा गए। अब उनके मम्मी पापा वहां क्या काम करें, फ्री हैं, तो बहुत से जो महिलाएं हैं, जब वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई, उन्होंने विदेश में लेखन को अपना अभिरुचि बनाई, और उसके कारण नए लेखक साहित्य जगत को मिले, और प्रवासी लेखकों का एक बड़ा संसार है। ममता जी,
0: एक
1: और
0: उनकी
1: उनका,
0: बाकायदा
1: हाँ
0: दुनिया है
1: उनका
0: और
1: एक,
0: बहुत सारी पत्रिकाएं
1: अच्छा
0: हैं जिसके
1: ईश्वर की
0: माध्यम
1: कृपा
0: से।
1: से वहां पर रहते हुए संपन्नता के कारण वो उनकी किताबें फिर भारत से ही छपती हैं।
0: जी,
1: और अब किताबें भी आप ये देखिए कि फिजिकल किताबें, तो एक समय था कि हमारे पिताजी की किताबें 1,000 का संस्करण छपता था, आज आप भी लेखिका हैं आप जानती हैं कि 200 प्रतियां यदि एक संस्करण में छप रही हैं तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो ये परिवर्तन हुए हैं समाज
0: जी,
1: में।
0: प्रवासी साहित्य की बात आपने की तो आप खुद विदेशों में गए
1: जी
0: हैं,
1: हाँ
0: आपने जिक्र भी किया
1: जी
0: कि यूएस और दुबई और कई जगह पर
1: जी
0: गए
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: तो प्रवासी साहित्यकारों उनकी दुनिया कैसी है,
1: उनकी
0: कि
1: दुनिया,
0: फायदे
1: जी हाँ
0: नुकसान।
1: उनकी दुनिया को हिंदी एक मंच पर जोड़ने का बड़ा काम कर रही है।
0: जी
1: मैं यूएस में गया था तो वहाँ काउंसलेट में मुझे बुलाया गया था और वहाँ पर हिंदी दिवस का आयोजन था। तो मैंने लिखा कि रचना में कि हिंदी जो है वो हमें एक सूत्र में गर्व से जुड़ने का आपस में एक माध्यम बनती है। हिंदी एक फेविकोल की तरह काम करती है जो बहुत सारे भारतीय विदेश में हैं उनको एक मंच पर लाने का काम हिंदी का कर रही है।
0: जी
1: तो इस तरह से प्रवासी साहित्यकार बहुत सारा अच्छा लेखन कर रहे हैं
0: जी
1: और उनके संकलन भी आ रहे हैं
0: जी
1: और छप रहे हैं, चर्चा में हैं अभी। मैं
0: विवेक रंजन जी, आपने नाटक भी लिखे
1: जी हाँ
0: हैं, नाटक भी था,
1: जी
0: तो क्या होता है, आपकी रचना प्रक्रिया क्या होती है, उसके पात्र कहाँ से लाते हैं और संवाद कैसे गढ़ते हैं, उसके बारे में बताइए।
1: मैं ममता जी सायास बहुत कम लिखता हूँ। सायास मतलब कोई जबरदस्ती कभी नहीं लिखता मैं, जो स्वतः कभी मैंने वैचारिक रूप से अंदर उथल पुथल जब विचारों की चलती रहती है तो वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर

0: परिपक्व होती रहती है, मेरी रचना प्रक्रिया यह है। और किसी दिन सुबह 4 बजे नींद खुलती है और फिर मैं सुबह के समय में 2-3 घंटे में रचना पूरी कर लेता हूँ। तो इस ढंग से मैंने कई नाटक लिखे और हर नाटक का, हर कविता का, हर व्यंग का मेरा एक भाव है। और मैं संदेश भी ये मित्रों को देना चाहता हूँ, रचनाकारों को, युवा रचनाकारों को, कि हम जो कुछ भी लिखें उसका एक हमारा मंतव्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना
1: कि लोग
0: चाहिए।
1: पढ़ें।
0: हाँ, लोग पढ़ें और उससे कुछ सकारात्मकता समाज में जाए। केवल नाम की गरज से लिखना या किसी के कहने पर कुछ लिख देना वो नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है
1: जी। तो क्या होता है, फिक्शन लिखना पसंद करते हैं या किसी यथार्थ परक विषय?
0: हाँ, मैं जैसे जब कोई व्यंग जब लिखता हूँ तो पीड़ा होती है किसी बात को लेकर के, बड़ा मन व्यथित होता है कि यार ये क्या विसंगति है, तो उसको फिर व्यंग में अभिव्यक्त कर देता हूँ। कोई दृश्य कभी बड़ा मनोरम लगता है, कोई बड़ा अच्छा लगता है, तो उसमें बहुत से रंग भरने की कोशिश होती है, तो शब्द चित्र बनते हैं, तो मैं कविता लिख देता हूँ। जैसे मैंने अपनी जब काम वाली का जीवन देखा, मेरा कहना यह है ममता जी कि हर व्यक्ति अपने आप में एक उपन्यास है, चलता फिरता उपन्यास है। जो मेरे घर में काम करने वाली है उसकी पीड़ा जब मैंने पास से देखी, समझी, कितनी मेहनत वो सुबह से कहां से आकर के करती है हमारे लिए, अपना सर्व, मैंने फिजिकल मेहनत, जब हम विदेशों में जाते हैं देखते हैं कि खुद फिजिकल मेहनत करना पड़ती है, जो यहाँ पे हाउस हेल्प समय उपलब्ध कराती है,
1: सहायिकाएं होती हैं, सहायिकाएं होते हैं, आपको बहुत मदद मिलती है।
0: जी हाँ, तो फिर उस पर मैंने एक कहानी लिखी थी।
1: अच्छा।
0: तो इस तरह से मैंने कि उसके घर में जब खुशियां नहीं मिल रही थी उसे, उसका हस्बैंड उसको पिटाई करता था, तो उसने अपनी खुशियां हमारी खुशियों में ढूंढ ली। मेरे बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो खुश होकर के वीडियो कॉल पे उनसे बात करती, तो ये एक कहानी को जन्म देता है। तो नाटक के लिए जब कोई, जैसे अब ये मेरे जो मुझे 2012 में भी साहित्य अकेडमी का नाटक के लिए ही पुरस्कार मिला था, तो वो हिंदुस्तान हमारा, तो उसमें जैसे डीपीएस लखनऊ में किसी ने मुझसे फेसबुक के जरिए आमंत्रित किया कि हमारे स्कूल के लिए कोई नाटक लिखिए, तो मैंने फिर हिंदुस्तान हमारा देशभक्ति का एक नाटक बच्चों के लिए लिखा था। तो इस तरह से रचना प्रक्रिया चलती है।
1: तो ये तो हो गई, आपने कहा कि हम घर में सहायिका काम कर रही, वहां से उसके दर्द को साझा करते हैं, लेकिन एक कवि हृदय होता है, अमूमन कवियों की कविताओं की शुरुआत प्रेम कविता से होती है, और आपने अपने श्रीमती जी का जिक्र किया दो बार, तो उनके लिए भी कोई कविता लिखी है, अपनी पत्नी के लिए कोई कविता लिखी है? तो
0: उनके लिए तो जरूर लिखी है, मगर वो प्रेम पत्रों में बंद है। आज मैं आपको कुछ पंक्तियां अपने श्रोताओं को सुनाना चाहता हूं कि अच्छा लगता है, शीर्षक है। भाव काव्य के मंथन लौट करते घर लौटे तो अच्छा लगता है।
1: क्या बात है,
0: जब हम किसी कवि सम्मेलन में जाते हैं तो वहां से कुछ अगर दो पंक्तियां गुनगुनाते हुए लौटे तो अच्छा लगता है। ये भाव है, है ना। भाव काव्य के मंथन करते घर लौटे तो अच्छा लगता है, शब्द तुम्हारे कुछ जो लेकर घर लौटे तो
1: अच्छा लगता है। क्या बात है,
0: कौन किसे कुछ देता यूं ही, कौन किसे सुनता है, आज छंद सुने और गाते गाते घर लौटे तो अच्छा
1: लगता है।
0: मेरी पीड़ा तुम क्या जानो, तेरी पीड़ा पर गुमसुम हम, मेरी पीड़ा तुम क्या जानो, तेरी पीड़ा पर गुमसुम हम, पर पीड़ा पर लिखो पढ़ो और सुनो अगर तो अच्छा लगता है।
1: क्या बात है,
0: पर पीड़ा पर लिखो पढ़ो और सुनो अगर तो अच्छा लगता है, एक दूसरे के बोलों पर मुग्ध तालियां उन्हें मुबारक। सोशल मीडिया पर यह देखने में मिलता है, लाइक और डिसलाइक, मैंने बस एक दूसरे
1: लाइक कमेंट,
0: लाइक कमेंट, एक दूसरे के बोलों पर मुग्ध तालियां उन्हें मुबारक, गीत गजल सुन द्रवित हृदय जब रो देता तो अच्छा लगता है। कविताओं की विषय वस्तु तो कवि को ही तय करनी है, शाश्वत भावों की अभिव्यक्ति सुन पर अच्छा
1: लगता है। वाह,
0: रचना पढ़े बिना समझे बिन नाम देख दे रहे बधाई, आलोचक पाठक की पाती पढ़कर लेकिन
1: अच्छा लगता है। वाह,
0: कई डायरियां ढेरों कागज रंग डाले हैं लिख लिख कर।
1: क्या बात है,
0: कई डायरियां ढेरों कागज रंग डाले हैं लिख लिख कर, पढ़ने मिलता लिखा स्वयं का छपा हुआ जो
1: अच्छा लगता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया।

0: बहुत पढ़ा और लिखा, बहुत कई जलसों में शिरकत की, बैठे घंटों श्रोता बनकर अब मंचों पर जब बैठो तो
1: अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया,
0: शब्द तुम्हारे कुछ लेकर के घर लौटो तो
1: अच्छा लगता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर एक गाना होना चाहिए, कौन सा गाना सुनवाएं?
0: चलिए एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे। लता मंगेशकर का गाना है रेशमा और शेरा फिल्म से, तू चंदा मैं चांदनी।
1: बहुत ही बेहतरीन गाना है।

0: विवेक जी, ये तो कविता आपने सुनाई, अब नाटक पर फिर से आते हैं।
1: जी हाँ
0: नाटक जो लिखे हैं,
1: जी
0: तो ये इच्छा होती है कि नाटक रंगमंच पर आए, तो
1: जी
0: क्या आपके रंगमंच पर भी नाटक मंचित किए गए हैं?
1: जी हाँ, जैसा मैंने बताया कि वो हिंदोस्तान हमारा के कुछ नाटक बाल नाटक थे, तो वो DPS स्कूल लखनऊ में, ज्ञानदीप मंडला में
0: जी
1: मंचित हुए, और स्कूलों में कई जगह वो बाल नाटक मंचित हुए। इसी तरह से जो अभी जलनाद है वो अमेरिका में एक
0: मंचन हुआ।
1: जगह, हाँ, मंचन हो रहा है उसके अंशों का, और NSD को भी भेजा गया है ये नाटक। तो देखिए, जैसा बोला जाता है ना कि गीतों को छू ले कोई, मैंने अगर कोई गीत गा ले तो गीत अमर हो जाता है।

0: होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर
1: गीत
0: कर
1: अमर कर
0: दो।
1: दो। और उसी तरह से नाटक के मामले में कि नाटक दृश्य और श्रव्य विधा है
0: जी
1: और उसकी संप्रेषण क्षमता बहुत ज्यादा है, यानी कहानी को जब हम पढ़ेंगे तब हमारे मन में हमारे परिवेश के हिसाब से चित्र बनेंगे, लेकिन नाटक जब हम देखते हैं
0: जी
1: तो उसका सीधा असर इम्पैक्ट हमारे दिमाग पर दोनों दृष्टि से पड़ता है, संवाद डिलीवरी से भी और जो कुछ हम आंखों से देखते हैं।
0: जी
1: तो नाटक का महत्व ही उससे है। और जिस ढंग से हवा महल में जो झलकियां आप लोग सुनाते हैं हमारे श्रोताओं को, तो उसमें आवाज की ही नाटकीयता से सारे भाव प्रेषित होते हैं।
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: मेरी झलकियां मैं कामना करता हूं कि विविध भारती से भी आए
0: जी
1: और
0: बिल्कुल
1: इस ढंग का कुछ प्रयास मेरा है।
0: जी जी जरूर, आपकी कलम में ताकत है तो फिर ये जरूर होगा। हमें बताइए कि आपके लेखन को किन साहित्यकारों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, मतलब आपने पढ़ा है बचपन से इतने
1: जी
0: सारे साहित्यकारों को,
1: जी
0: तो किन साहित्यकारों से आप प्रभावित रहे?
1: मूलतः मैं परसाई जी से प्रभावित हूँ, अपने आप को परसाई जी से प्रभावित मानता हूँ, क्योंकि व्यंग की जो उन प्रारंभिक मेरी भावनाएं जागी वो उनके स्तंभों को पढ़ने से हुई। और फिर आगे जैसे जैसे मैं और गहराई से पढ़ता गया तो निश्चित ही जोशी जी ने, शरद जोशी जी के व्यंग, त्यागी जी के व्यंग, उनसे भी मैं प्रभावित रहा हूँ।
0: जी, और इन दिनों क्या लिख रहे हैं आप?
1: इन दिनों मैं कहानी पर काम कर रहा हूँ और ललित निबंध पर काम कर रहा हूँ,
0: जी
1: क्योंकि ललित निबंध में साहित्य अमृत एक पत्रिका है तो उसमें बड़े अच्छे ढंग से ललित निबंध बहुत पढ़ने मिलते थे। ललित निबंध विधा कम लिखी जा रही है, संस्मरण विधा कम लिखी जा रही है,
0: विस्मृत हो रही है,
1: विस्मृत हो रही है, रिपोर्टाज बहुत कम लिखे जा रहे हैं। तो मेरा यह है कि चूंकि बहुआयामी बहुविध व्यक्तित्व अपना मेरा ऐसा कुछ बन गया है, तो पहले उस विधा की रचनाएं बहुत सारी पढ़ता हूँ, श्रेष्ठ रचनाएं पढ़ता हूँ, और फिर वो ईश्वर ने भाव दिए हैं, शब्द दिए हैं, अभिव्यक्ति की क्षमता दी है, तो उसमें अभिव्यक्त करता हूँ।
0: जी, विवेक रंजन जी, बड़ी ही रोचक बातें आपने कही, साझा की हमारे श्रोताओं के साथ। विविध भारती परिवार की ओर से और श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ, नमस्कार।
1: धन्यवाद ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती परिवार को कि ये आज आपने मुझे अवसर दिया, और तमाम श्रोताओं को कि आपने मुझे सुना और आप मुझे पसंद किया नहीं किया ये तो आपके पत्रों से मालूम होगा। विविध भारती को आपके फीडबैक का जरूर इंतजार रहेगा।
0: जी, बहुत बहुत
1: नमस्कार।
0: शुक्रिया,
1: नमस्कार,
0: नमस्कार।
1: थैंक यू ममता जी।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लेखक और कवि विवेक रंजन श्रीवास्तव से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जुबैर खान। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती द्वारा प्रसारित कार्यक्रम FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चुरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय शाम के ठीक 5 बज रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

ज़िंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना होगा। हर हाल में आगे बढ़ना है, हर मुश्किल से टकराना होगा। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जी हाँ दोस्तों, कुछ इन्हीं शुभ विचारों के साथ मैं हाजिर हूँ आपके रेडियो दोस्त और होस्ट डिम्पल सिखवाल। स्वागत करती हूँ आप सभी का ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवा दिलों की धड़कन युववाणी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने तो वो हैं जो हमें सोने नहीं देते, है ना। लेकिन इन सपनों को सच करने के लिए केवल डिग्री नहीं बल्कि सही कौशल यानी स्किल भी उतना ही ज़रूरी है। और इसीलिए हर साल 15 जुलाई को यानी आज ही के दिन पूरी दुनिया में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे कौशलों से जोड़ना है जो उन्हें रोजगार, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दे। और आज का दौर तेजी से बदलती तकनीक का दौर है दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, डिजिटल तकनीक, ऑनलाइन सेवाएं और नए नए स्टार्टअप हमारे काम करने के तरीकों को बदल रहे हैं। और ऐसे समय में केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि नई तकनीकों को सीखना, संवाद कौशल, नेतृत्व क्षमता जो है, टीम वर्क और टाइम मैनेजमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे कौशल भी बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं। साथियों, एक समय था जब नौकरी पाने के लिए केवल डिग्री को सबसे बड़ा आधार माना जाता था, लेकिन आज कंपनियां ऐसे युवाओं को प्राथमिकता देती है जिनके पास व्यावहारिक ज्ञान और काम करने का कौशल हो। और यही कारण है कि आज स्किल सफलता की सबसे मजबूत पहचान बनती जा रही है। हमारे देश में भी युवाओं को कौशल से जोड़ने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य केवल नौकरी दिलाना नहीं बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना भी है। फ्रेंड्स, कौशल केवल तकनीकी प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है। यदि किसी युवाओं में अच्छी लेखन क्षमता है, कोई संगीत में निपुण है, कोई खेल में उत्कृष्ट है, तो कोई खेती में नई तकनीकों का प्रयोग करता है और कोई डिजिटल कंटेंट बनाता है या फिर कोई छोटा व्यवसाय शुरू करता है, तो ये सभी अपने अपने फील्ड के कौशल हैं। आवश्यकता केवल इन्हें पहचानने और लगातार निखारने की है। फ्रेंड्स, आज इंटरनेट के माध्यम से सीखने के अनगिनत अवसर उपलब्ध हैं। नई भाषा सीखना हो या कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त करना हो, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, फोटोग्राफी या फिर संचार कौशल, हर फील्ड में सीखने के अवसर मौजूद हैं। सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती दोस्तों, और ना ही सफलता की कोई तय सीमा होती है। यदि आज आपके पास नौकरी नहीं है तो निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हो सकता है आपके भीतर कोई ऐसी स्किल, कोई ऐसा कौशल छिपा हो जो आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाए। इसलिए अपनी रुचि को पहचानिए, उसे सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। याद रखिए, कौशल वो चाबी है जो अवसरों के हर बंद दरवाजे को खोल देती है, और मेहनत वो ताकत है जो सपनों को हकीकत में बदल देती है। तो आज के दिन ये विश्व युवा कौशल दिवस हमें ये संदेश देता है कि यदि युवा शिक्षित होने के साथ साथ कुशल भी बने तो वो केवल अपने ही नहीं बल्कि पूरे समाज और देश का भविष्य भी बदल सकता है। आत्मनिर्भर भारत का सपना भी तभी साकार होगा जब हमारे युवा ज्ञान के साथ कौशल से भी समृद्ध होंगे। तो दोस्तों, युवाणी का सफर तो यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल आपको ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये बेहतरीन गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है और बात करते हैं कार्यक्रम की अगली चर्चा की। फ्रेंड्स, एक बात तो हम सभी जानते हैं कि आज का समय

शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना नहीं, बल्कि जीवन और कार्य क्षेत्र के लिए तैयार होना भी है। वोकेशनल ट्रेनिंग युवाओं को किसी विशेष कार्य या फिर व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित करती है, जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, मोबाइल रिपेयरिंग, फैशन डिजाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, होटल मैनेजमेंट, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर टेक्निक, ऑटोमोबाइल, डिजिटल मार्केटिंग और भी न जाने कई फील्ड्स में प्रशिक्षण। इससे युवा न केवल नौकरी पा सकते हैं, बल्कि अपना स्वयं का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। साथियों, आधुनिक शिक्षा में तकनीक की भूमिका भी लगातार बढ़ती जा रही है। आज स्मार्ट क्लासेस, ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लैब और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे साधनों ने सीखने का तरीका पूरी तरह बदल दिया है। अब सीखना केवल क्लास तक सीमित नहीं रहा, एक मोबाइल फोन और इंटरनेट की मदद से दुनिया भर का ज्ञान हमारी पहुंच में आ जाता है। लेकिन तकनीक का सही उपयोग तभी संभव है जब हम उसे समझें और उसका जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना भी सीखें। डिजिटल साक्षरता आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है दोस्तों। चाहे सरकारी सेवाएं हो, बैंकिंग हो, ऑनलाइन आवेदन, ई कॉमर्स या फिर ऑनलाइन इंटरव्यू, हर जगह टेक्निक का ज्ञान जरूरी हो गया है। दोस्तों, आज का नियोक्ता केवल ये नहीं देखता कि आपके पास कौन सी डिग्री है, बल्कि ये भी देखता है कि आप समस्या का समाधान कैसे करते हैं, टीम के साथ कैसे काम करते हैं, नई चीज़ें कितनी जल्दी सीखते हैं और बदलती तकनीक के साथ खुद को आप कितना अपडेट रखते हैं। इसलिए संचार कौशल, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप की कैपेसिटी आपके अंदर और कंप्यूटर का ज्ञान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए भी आज अवसरों की कोई कमी नहीं है। यदि वे आधुनिक कृषि तकनीकों को, डेयरी, पशुपालन, फूड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर, ई कॉमर्स और डिजिटल सेवाओं का प्रशिक्षण लें, तो अपने गांव में रहकर भी रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर बना सकते हैं और यही आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फ्रेंड्स, हमें ये समझना होगा कि शिक्षा और कौशल एक दूसरे के पूरक होते हैं। शिक्षा हमें सोचने की क्षमता देती है, जबकि कौशल हमें उस सोच को व्यवहार में बदलने की ताकत देता है। जब ज्ञान और कौशल साथ चलते हैं, तभी सफलता का मार्ग और भी आसान हो जाता है। तो युवाओं से मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि यदि आप अपने भविष्य को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ कोई न कोई व्यावसायिक कौशल भी अवश्य सीखें। चाहे कंप्यूटर हो, कोई नई भाषा, डिजिटल टूल्स, डिजाइनिंग, लेखन, सार्वजनिक संवाद और कोई तकनीकी प्रशिक्षण, हर नया कौशल आपके व्यक्तित्व में एक नई ताकत को जोड़ता है। और बस इसी के साथ आपको फिर से ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं प्यारा सा नगमा।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagaur@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagaur@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो आने वाले समय में ही नहीं बल्कि वर्तमान की भी सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुका है, और वो है डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के क्षेत्र में करियर अवसर। फ्रेंड्स, आज अगर हम अपने आसपास नज़र डालें तो पाएंगे कि दुनिया तेज़ी से डिजिटल हो रही है। खरीदारी से लेकर पढ़ाई तक, बैंकिंग से लेकर मनोरंजन तक, और नौकरी खोजने से लेकर अपना व्यवसाय शुरू करने तक, हर काम में इंटरनेट और तकनीक की भूमिका लगातार बढ़ रही है। और ऐसे में डिजिटल मार्केटिंग और AI ने युवाओं के लिए करियर के नए रास्ते खोल दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। सरल शब्दों में कहें तो इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों के जरिए किसी उत्पाद, सेवा या फिर विचार का प्रचार प्रसार करना ही डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। आज लगभग हर छोटा बड़ा व्यवसाय अपनी पहचान ऑनलाइन बना रहा है, इसलिए ऐसे लोगों की मांग बढ़ रही है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों तक सही जानकारी पहुंचा सके। डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में कई रोचक करियर विकल्प हैं, जैसे कि सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेंट राइटर, कॉपीराइटर, वीडियो कंटेंट

क्रिएटर, ग्राफिक डिज़ाइनर, ईमेल मार्केटिंग विशेषज्ञ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी SEO विशेषज्ञ, ऑनलाइन विज्ञापन विशेषज्ञ और डिजिटल ब्रांड मैनेजर। यदि किसी युवा में रचनात्मक सोच, अच्छी भाषा, तकनीक की समझ और सीखने की इच्छा है तो वो इस क्षेत्र में शानदार भविष्य बना सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की। AI ऐसी तकनीक है दोस्तों जिसमें कंप्यूटर और मशीनों को इस तरह विकसित किया जाता है कि वे कुछ हद तक इंसानों की तरह सीख सके, समझ सके और निर्णय लेने में सहायता भी कर सके। आज AI का उपयोग हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, परिवहन, उद्योग, मीडिया और सरकारी सेवाओं तक में हो रहा है। AI का अर्थ ये नहीं कि इंसानों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, बल्कि AI उन लोगों के लिए नए अवसर पैदा कर रहा है जो इसे समझते हैं और इसके साथ काम करना सीखते हैं। आने वाले वर्षों में AI विशेषज्ञ, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, AI ट्रेनर, ऑटोमेशन विशेषज्ञ और AI आधारित उत्पादों के डेवलपर जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार की संभावनाएं लगातार बढ़ेंगी। इसके बारे में हम और भी चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल रुक जाते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए।

0: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे थे डिजिटल मार्केटिंग और एआई फील्ड में करियर अवसर की। फ्रेंड्स, आज एआई केवल तकनीकी विशेषज्ञों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षक, पत्रकार, लेखक, डिज़ाइनर, डॉक्टर, किसान, उद्यमी और छोटे व्यवसायी भी एआई आधारित टूल्स का उपयोग करके अपने काम को अधिक प्रभावी और तेज़ बना रहे हैं। इसलिए हर युवा के लिए एआई की बुनियादी समझ विकसित करना समय की आवश्यकता बनती जा रही है। लेकिन याद रखिए, तकनीक केवल एक साधन है, उसका सही उपयोग करने वाला इंसान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होता है। इसलिए केवल एआई पर निर्भर होने के बजाय अपनी रचनात्मकता, तार्किक सोच, संवाद कौशल और नैतिक मूल्यों को भी विकसित करना बेहद ज़रूरी है और यही गुण आपको भीड़ से अलग पहचान दिलाते हैं। साथियों, यदि आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर और इंटरनेट की अच्छी समझ जो है विकसित करें, नई तकनीकों के बारे में सीखें, डिजिटल टूल्स का अभ्यास करें, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाइए, अपनी भाषा और संचार क्षमता को मजबूत कीजिए और लगातार खुद को अपडेट रखिए। आज सीखने के अनेक ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम उपलब्ध हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है सीखने की इच्छा और नियमित अभ्यास। आज भारत तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। स्टार्टअप संस्कृति, ई कॉमर्स, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान और नवाचार के बढ़ते दायरे ने युवाओं के लिए रोजगार स्वरोजगार के अनेक अवसर पैदा किए हैं और यदि सही दिशा में मेहनत की जाए तो डिजिटल मार्केटिंग और AI दोनों ही ऐसे फील्ड हैं जहाँ प्रतिभा और कौशल के बल पर उज्ज्वल भविष्य बनाया जा सकता है। तो अब आपको फिर से ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये गीत।

तो दोस्तों, अब घड़ी की टिक टिक करती हुई सुइयां इशारा कर रही है कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। हम फिर मिलेंगे कुछ नई ज्ञान की बातों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों को नई उड़ान देते रहिए। अब अपने दोस्त डिंपल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के ठीक 5:30 हो रहे हैं श्रोताओं। अब ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम पणिहारी।

0: जरूरी है, बच्चा ने जरूरत भी होया करे, चाहे दादा दादी नाना नानी परिवार कोई भी सदस्य हो, पर एक डांट एक आंख रो डरनो वो भी जरूरी है। नहीं तो आपा सोचा कि ये लाडलो बच्चो है कोई नहीं, ना हो जाए वो जाए, लेकिन आवन वाला समय में उन्हें परेशानी होवे आ अपन नहीं होनी चीज है ना। इन बात रो विशेष ध्यान रखा, और अपने कार्यक्रम में बहुत सारी चीजें जिको कि मैं आपने बताऊंगा, पर बीच में आने वाले संदेश और पछे सुनाला एक सुरीलो गीत।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: तो बहना गीत भी सुना वाला अड़ो जुक की मौसम अनुसार है। अब हर आप पुदीनार बहुत प्रयोग में ले रहे हैं, आपने खाउन पीउन रलावा चटनी वगैरह बनावा हर चीज़ में एक स्वाद होया करे। तो अड़ो एक सुरीलो सो गीत आपने सुनावनी चाहवा सीमा मिश्रा रे गायोड़।

तो बहना बार आपां सुरीलो गीत सुनी हो और आपा बातचीत कर रहा है बच्चा रे बारे में और स्वयं रे बारे में और साथ ही आपा अगर खुद रे परिवार सब रे साथ ही करा तो अपने जिकिया धरोहर है इन्हें सुरक्षित रखने वास्ते अपने कने भी कई इंतजाम होया करे और आपा करनी भी चाहवा आपा करा भी हाँ पर कई आपा सोचा कि आज जी की लापरवाही लोगों में हो रही है घर वर तो एकदम साफ रखे और आप कूड़ो कचरो जी को है एकदम बारे डले तो इनसे कोई लड़ाई झगड़ा तो होना स्वाभाविक है। आजकल तो सब जगह कचरा पात्र रखड़ा है जी में आप कचरा डाल सको गीलो कचरो सूखो कचरो ऐ सब है उन्हें आप थोड़ी सी कही किया करा कि थोड़ा सा अगर डब्बो वगैरह गली में दूर हो करे तो कह उठे तो कौन तो जाए इन्ने को बारे और इनमें कहीं आस पड़ोस रहे लोगों में लड़ाइयाँ हो जावे और वह कहीं सोचे कि भाई ठीक है माना टेने नहीं आनो चीज़ या जो है मैं नहीं करी हो या बीच में कोई श्वान आ जावे कोई गाय आ जावे कोई किया जावे तो वह अपने मुंडा में लेवे करे तो और कचरो फैल जावे तो इस वक्त गंदगी फैल जावे और आपा कटे भी घूमने जा रहा कर रहे हाँ जितना भी आपा प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हाँ पॉलीथीन का उपयोग कर रहे हाँ यूं फेंक दवा और नहीं ठापड़े कि आपा ही यात्री हाँ और इन पर्यावरण बचाने वास्ते आपा एक कठोर कदम उठा रहा लेकिन अपने साथ दूसरा वगैरह ने आप कई जगह देख रहे कि जिका सही लोग है वे तो आप एक राख्या करे थैली उन मैंने सारो कचरो डाले करे और जटे भी कचरा पात्र दिखे वो मैं डाल जा करे और कई जिका लापरवाह मैं सब बड़ो कारण तो आज जिका भी है तम्बाकू रो सेवन कर रहे वो सब बड़ो एक किया करे कि जटे भी है थूक दिया करे जटे भी है मतलब वे सोचे भी नहीं चाहे वो कार्यालय हो तो वह तो कार्यालय में तो आप देखा ही देखा सार्वजनिक स्थान माते देखा मंदिर आसपास कटे भी देखा और तो आज आप सोच रहे हैं कि बच्चा में भी आदत आ रही है युवा वर्ग भी इन बात ने 90% नहीं समझ पा रही है। आप अपनी धरोहर ने आप अपने आसपास रहा क्षेत्र ने आप अपने जिकी की एक क्या करे कि प्राचीन जिकी अपने स्मारक है वेने भी अगर आप देखा तो उठे कटे कोई नाम लिखड़ा हुआ है कटे की पोस्टर चिपकाया हुआ है कटे की भी होया करे मतलब बिना सोचा समझा कोई भी कानून री वेने कोई भी तरह रो मतलब ध्यान भी नहीं पड़े कि मैं कटे कई गलत कर रहा वह आपरी सोच में आपरी धुन में और आजकल नयो सिस्टम जो शुरू हुए रील बनाने में रिया करे थोड़ो सो दिमाग उन सोचे या थोड़ो सो मन सोचे कि आप अगर घर में सफाई रख रहे हैं और घर में थोड़ा सो बिकर होता है आप घर सदस्य ने डांटदा बच्चा ने डांटदा आप स्वयं महसूस करा तो बाहर निकलता है अपना महसूस हो कि हाँ भाई बात तो सही है ठीक है बच्चा कही आप देखा अनदेखी कर दा यूं आप कटे घूमने जा रहे हैं तो आपने साथ माना कि घूमना हमेशा आदमी एक कलो तो कम ही जाया करे आपरे परिवार आपरे संगा साथिया रे जाया करे तो सबो पड़ी आप शपथ लो कि मैं बारे घूमने जा रहा हाँ जिकी फालतू चीज रो उपयोग है वो बिल्कुल नहीं करा ला खान पान रो ध्यान रखा ला जटे गंदगी हो रही है उन्हें मैं एक एडो थैलो अपने कने रखा ला जिनसु की कोई कचरो वगैरह हुए तो एक जगह इकट्ठो कर और जटे भी अपने कचरा पात्र दिख रहे हो ना पड़ डाला और जिको भी संरक्षित आपा करो ला कोई भी चीज ने तो देखो आपरे साथ दूसरा लोग भी इन बात ने समझे ला और कही कह वेला अरे हाँ हाँ ठीक है वे लोग अच्छा कर रहे मैं भी कर सका और कही है अरे ठीक है देखी जाइए बार तो फेंको अरे भाई इन अबार फेंकन रहे चक्कर में ही तो इतनी सारी गंदगी हो जा कई बार फिसल जा खासकर बड़ा बुजुर्ग तो जू ही पग आवे वे फिसल जाया करे बच्चा भी फिसल जाए आप स्वयं भी फिसल जावा आ एक दुर्घटना कदी भी हो सके लेकिन इन रो ध्यान रखना अपने वास्ते बहुत ही जरूरी है और अगर आप एक कदम बढ़ावाला तो अपने साथ सही कई जना है जिका कि कदम उ कदम आगे बढ़ावा इन वास्ते अपनी धरोहर रो संरक्षण करनो आप रो खुद रो ध्यान रखनो सफाई रो और पर्यावरण रो ध्यान रखनो अपना सब बड़ो कर्तव्य है और वो जीवन रो अहम हिस्सा है। तो बहना आप और बातचीत कराला सुनाला एक सुरीलो सा गीत और बीच में लेवा ब्रेक।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

श्रोताओं, अभी ग्रामीण महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम पणिहारी FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,000

0: 400 करोड़ रुपए से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी है।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कम्पेरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में ओडिशा में पारादीप हरिदासपुर डबलिंग और झारखंड में राजखरसवार डांगो आपूसी 4थी लाइन का काम शामिल है। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030 से 2031 तक पूरा होने की संभावना है। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी। NIP 2012 के तुलना में NIPU 2026 के अंतर्गत लगाए गए हर संयंत्र से 250 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होने का अनुमान है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत की 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावी होने की सराहना की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रुसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमरीका ने आज हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिला वर्ग में आज 3 भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक और 10 मुक्केबाजों ने रजत पदक अपने नाम किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 6:05 हुए हैं साथियों, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम।

फिल्म संगीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रमा सोनी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, ये गाना हमने लिया है फिल्म कटी पतंग से और इसे गाया है किशोर कुमार ने।

आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं द ट्रेन फिल्म में मोहम्मद रफी का गाया ये प्यारा सा गाना।

FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 6:20 हुए हैं। समय हो चला है लोकगीत और लोक भजन के कार्यक्रम माटी के स्वर का। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं अनूप राम का गाया ये लोक भजन।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

भाई पिंडक पिंडक पिंडक पिंडक मिंडक राजा बोले ए मिंडक भाई।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी के स्वर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 6:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पहले हिंदी भाषा में और फिर राजस्थानी भाषा में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने जनता की सेवा को जनप्रतिनिधियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बताया। मतदाताओं की बात धैर्य और संवेदनशीलता से सुनने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और मोबाइल फोन निर्माण सहित कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। राज्य में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच का सघन स्क्रीनिंग अभियान शुरू। अधिक जोखिम वाली स्त्रियों की विशेष निगरानी की जाएगी। और प्रदेश में मॉनसून के दूसरे दौर के सक्रिय होने के आसार के बीच 18 जिलों के लिए बरसात का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि जनता मतदान कर लोकतंत्र में अपना भरोसा बताती है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से जनता

0: कि इस विश्वास को बनाए रखने के लिए पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री राधाकृष्णन आज जयपुर में राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित वर्तमान और पूर्व विधायकों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य विधानमंडल भारतीय लोकतंत्र की धड़कन है। संसद पूरे देश की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं राज्य विधानसभाएं गांवों, नगरों और परिवारों की आशाओं, सपनों और चिंताओं को की आवाज है। यही विधानमंडलों का मूल स्वर और गरिमा है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से, अपने निर्वाचकों से विनम्र होकर मिलने और धैर्य तथा संवेदनशीलता से उनकी बात सुनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जनप्रतिनिधि चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, उसके सार्थक और नीतिगत सुझावों को जरूर अमल में लाना चाहिए, इससे बड़ा बदलाव आता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की शक्ति विधानमंडलों, भवनों की भव्यता में नहीं बल्कि उनमें होने वाले गुणवत्तापूर्ण आचरण और चर्चाओं में निहित है। इससे पहले समापन सत्र को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, किंतु सभी का मूल उद्देश्य जनता की भलाई और प्रदेश का विकास है।
1: मैं उन सभी पूर्व एवं वर्तमान जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अपने विचार, अपने अनुभवों और अपनी जनसेवा से इस सदन की गरिमा को निरंतर बढ़ाया है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि यहाँ विचार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उद्देश्य हमेशा जनता का कल्याण और प्रदेश का विकास होता है। यही लोकतंत्र की खूबी है। लोकतंत्र संस्कृति राजस्थान की पहचान रही है और आगे भी बनी रहेगी।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शिरकत की। सम्मेलन में पूर्व और वरिष्ठ विधायकों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और मोबाइल फोन निर्माण योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक में वाराणसी में दो एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। इससे देश को ग्लोबल सेमीकंडक्टर नक्शे पर लाने में मदद मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
2: ये एक ऐसा, इस इंडस्ट्री का नेचर ऐसा है कि बहुत ही क्लीन फैक्ट्रीज बनती हैं, फैक्ट्री सारी एयर कंडीशन्ड होती है, तो यूथ को बहुत अट्रैक्ट करती है। यंग पर्सन्स जो इसमें काम करते हैं उनमें से कई के साथ इंटरेक्शन हुआ है। जिस तरीके से इस फैक्ट्रीज में काम करते हैं, आज तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में करीब 25 लाख का रोजगार है। 2.5 मिलियन एम्प्लॉयमेंट इज देयर इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
0: मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना अगले 5 वर्षों के लिए लागू की जाएगी। इस योजना की अवधि में लगभग 39,00,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन बनाए जाएंगे। इससे लगभग 60,000 लोगों को प्रत्यक्ष नौकरियां मिलने की भी उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने यूरिया के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति को भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को बढ़ावा देना है ताकि आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल किया जा सके। चुनाव, मीडिया और मतदाता शिक्षा को लेकर आज जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी रखी गई। नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान तथा NLU जोधपुर की ओर से इसका आयोजन किया गया। HCM रीपा में हुई इस संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा कि युवा प्रजातंत्र का अहम हिस्सा है। स्कूलों और कॉलेजों में मतदान प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा रही है। इसके लिए राज्य में 25,000 इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब बनाए गए हैं।
3: हमारे जो यंग वोटर्स हैं, खासतौर पे जो स्कूल कॉलेज में हैं, उनको किस तरह से इन्फॉर्म पार्टिसिपेशन के जरिए प्रजातंत्र का अहम हिस्सा बनाया जाए, इसी की कड़ी में जो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स हैं वो स्कूल्स और कॉलेजेस में बड़े पैमाने पे उनका गठन किया जा रहा है और उनको स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज के साथ जोड़ा जा रहा है। राजस्थान में मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 25,000 ऐसे इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स हम लोगों ने स्कूल्स और कॉलेजेस में अब तक गठित किए हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में आज गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच का सघन स्क्रीन

0: स्क्रीनिंग अभियान शुरू हुआ। 5 दिन तक चलने वाले इस अभियान में उच्च जोखिम वाली महिलाओं की विशेष निगरानी की जाएगी। ANM, आशा सहयोगिनियां और CHO गर्भवती महिलाओं की सेहत का ब्यौरा रखेंगे। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने आज बांसवाड़ा में मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर काफी संवेदनशील है। विभिन्न स्थानों पर हाल ही में हुई प्रसूताओं की मौत के सवाल पर उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों की टीम इसके वास्तविक कारणों की जांच कर रही है। श्री खेवसर ने कहा कि अधिकतर मामलों में किसी तरह के संक्रमण और दवाओं के रिएक्शन की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है।
1: जयपुर से एक विशेष दल आया यहाँ पर, हमारा स्टेट के जो टॉप लोग हैं उनका एक दल आया और मैं आपका मंत्री हूँ, मैं भी आके एक हमारी पूरी मीटिंग हुई है। जो दो की डेथ हुई, हाई बीपी और लिवर के प्रॉब्लम की वजह से दो की डेथ हो गई है। हमने स्टाफ से बात कर ली है, हमने ये तक है कि जब आई है जब तक डेथ हुई हमने पूरे रिकॉर्ड्स भी मांगे हैं। वो रिकॉर्ड्स हमें जब दे देंगे उनको हम जयपुर ले जाके उनको हम वेरीफाई कर लेंगे।
0: विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर आज प्रदेश में विभिन्न आयोजन हुए। प्रभात फेरी, रैली और अन्य जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया गया। साथ ही विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में करियर मार्गदर्शन सत्र भी रखे गए। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उनके कौशल विकास पर बल दिया गया। समारोह में कौशल, रोजगार और उद्यमिता राज्य मंत्री KK विश्नोई ने कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री विश्नोई ने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण से जोड़कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: पिछले 2.5 वर्ष में राइजिंग राजस्थान में पूरे विश्व से और देश भर के इन्वेस्टरों को यहाँ पर इन्वाइट भी किया, अलग अलग उद्योगों के लिए आकर के यहाँ पर अपना पैसा भी लगाए और आने वाले समय में निश्चित रूप से उसका सीधा सीधा लाभ हमारे जो स्किल डेवलपमेंट से कौशल प्राप्त कर चुके युवाओं को नौकरी मिलने में भी, ITIs कॉलेजेस कैसे अपग्रेडेशन ऑफ PM सेतु वाली स्कीम से ITI का, आने वाले समय में रिफाइनरी जैसे बड़े उद्योग अपने प्रदेश के अंदर आ रहे हैं उससे जुड़े हुए एंसिलरी प्रोडक्ट यहाँ पर जुड़ेंगे, सोलर का बहुत बड़ा निवेश यहाँ पर चल रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुर्वेद के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के प्रयोग पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में 100श्रुतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्रीमती मुर्मू ने कहा कि सरकार ने आयुर्वेद और योग को दुनिया भर में नई पहचान दी है। उन्होंने आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयासों पर खुशी जताई। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानक करण को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है।
3: आयुर्वेद की इस कलुषित परंपरा के मानकीकरण का और इसे साइंटिफिक वैलिडेशन के आधुनिक वैश्विक पद्धतियों में से जोड़ने का महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। इसके माध्यम से शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में भी एविडेंस जेनरेशन और आयुर्वेद की शल्य चिकित्सा को समकालीन तकनीकों तथा पीने वाले इन्वासी टेक्निक्स से जोड़ने के दिशा में प्रभावी योगदान दिया जा सकता है।
0: राज्य सरकार सरकारी स्कूली भवनों की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर और संवेदनशील है। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने आज जयपुर जिले में विभिन्न स्कूलों का औचक निरीक्षण कर भवनों की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया। श्री यादव ने अधिकारियों को विद्यालय भवनों की सुरक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालय भवनों की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रदेश भर में लोग मॉनसून के दूसरे दौर के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बीते 24 घंटों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर में हुई बारिश से गर्मी से राहत रही, बाकी स्थानों पर लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। विभाग ने आज 18 जिलों के लिए गरज चमक के साथ बरसात की गतिविधियों का येलो अलर्ट बताया है। जयपुर में पहली बार कल विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्रालय और राजस्थान सरकार की ओर से ये कॉन्फ्रेंस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगी। इसमें सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देने, फर्जी एजेंटों से बचाव और प्रवासियों के कल्याण, निवेश तथा पर्यटन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। जयपुर में अगले महीने ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की बैठक होगी। 6 और 7 अगस्त को होने वाली इस बैठक को

0: लेकर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों को सभी इंतजाम तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने जनता की सेवा को जनप्रतिनिधियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बताया। मतदाताओं की बात धैर्य और संवेदनशीलता से सुनने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और मोबाइल फोन निर्माण सहित कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। राज्य में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच का सघन स्क्रीनिंग अभियान शुरू। अधिक जोखिम वाली स्त्रियों की विशेष निगरानी की जाएगी। और प्रदेश में मॉनसून के दूसरे दौर के सक्रिय होने के आसार के बीच 18 जिलों के लिए बरसात का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से पाली जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख विशारद जोशी ने तैयार किया है। पाली जिला पिछले महीने राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए विशेष चर्चा में रहा। पीएम किसान उत्सव का राज्य स्तरीय समारोह पाली में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसमें शिरकत की। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने नेत्रा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लगाए गए ग्रामीण सेवा शिविर का अवलोकन किया और लाभार्थियों से संवाद किया तथा शिविर के बारे में फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने टाउन हॉल सुमेरपुर में भी शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। जिला मुख्यालय पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न विभागों में चयनित 763 नवनियुक्त युवा युवतियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत जिला स्तर पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई से जिले में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। आशा, एएनएम और स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से घर घर संपर्क कर आमजन को परिवार नियोजन साधनों और स्वस्थ परिवार के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। ये गतिविधियां 18 जुलाई तक चलेंगी। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय सामूहिक योग कार्यक्रम पाली के लाखोटिया उद्यान में किया गया। जिला प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा, पशुपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में विद्यार्थी, स्काउट गाइड और आमजन ने कार्यक्रम में भाग लेकर योग किया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 12 साल विश्वास के जन कल्याण के थीम पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद पीपी चौधरी ने बताया कि सरकार ने छोटी छोटी बीमा योजना लाकर आमजन को सुरक्षा प्रदान की है। हर घर नल के तहत 16 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाया है। अंतिम छोर तक के व्यक्ति को इसका लाभ मिल रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में 15 जून से स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है। 31 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान चिकित्सा कर्मी, आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर दस्त रोग से बचाव, हाथ धोने की सही विधि, स्वच्छ पेयजल के उपयोग और ORS तथा जिंक के महत्व की जानकारी दे रहे हैं। 5 वर्ष तक के बच्चों वाले परिवारों को ORS पैकेट और जिंक की गोलियों का वितरण किया जा रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पिछले दिनों सादड़ी के दौरे पर रहे। वे सादड़ी में शिवनगरी में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। 12 ज्योतिर्लिंग महिमा तथा 21 कुंडीय महारुद्र महायज्ञ रुद्राक्ष से बने शिवलिंग के दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। बीबीजी रामजी योजना का जिला स्तरीय शुभारम्भ समारोह बाली के कोट बालियान ग्राम पंचायत में किया गया। कार्यक्रम में श्रमिकों को राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम और राज्य स्तरीय कार्यक्रम का LED स्क्रीन के माध्यम से सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी ने कोट बालियान गांव के खेल मैदानों में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वृक्षारोपण कर पर्यावरण का संदेश दिया। टेक्सटाइल उद्योग की पहचान रखने वाले पाली अब पैकिंग बैग का नया केंद्र बनता जा रहा है। लघु उद्योग भारती की पहल पर साड़ी, सलवार सूट सहित विभिन्न वस्त्रों की पैकिंग में उपयोग होने वाले बैग स्थानीय स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं। इससे उद्योगों को सूरत, अहमदाबाद और अन्य महानगरों पर निर्भरता कम हुई है और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। खास बात ये है कि बैग निर्माण में सिलाई कार्य अधिकांश महिलाओं द्वारा घर पर ही किया

0: जाता है। जिले में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण संबंधी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बाजारों, पार्कों, हॉस्टल सहित विभिन्न स्थानों पर महिलाओं को और छात्राओं को अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में रिजर्व पुलिस लाइन में भी कार्यक्रम हुआ। इसमें जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने महिलाओं को सुरक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने पर सम्मानित किया। इसी के साथ पाली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर उपे से सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहली खास समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जनतारी सेवा ने जननुमाइंदारी सब मोटी जिम्मेदारी बताया। मतदाताओं री बात धीरज और संवेदनशीलताओं सुनन री अरज करी। केंद्रीय मंत्रिमंडल सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और मोबाइल फोन निर्माण समेत कई अहम मुद्दा माते मोहर लगाई। राज्य में आस वाली महिलाओं का स्वास्थ्य जांच रो सघन स्क्रीनिंग अभियान शुरू। बत्ती जोखिम वाली महिलाओं की खास निगरानी करी जाएगा। और प्रदेश में मानसून रा दूजा दौर रे सक्रिय होने रा आसार रे बीच 18 जिला सरू बिरखारो अलर्ट। समाचार रे साथ है मैं शंभु सिंह और अब समाचार विगतवार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कहो है के जनता मतदान करने लोकतंत्र में आपरो भरोसो बतावे है, वना जन नुमाइंदाओं जनतारा ई भरोसा ने बनाए राखण सारू पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लगन रे साथ काम करने री अर्ज करी। श्री राधाकृष्णन आज जयपुर में राजस्थान विधानसभा रा 75वां साल रे मौके विया मौजूदा एर पहली रा विधायिका रा सम्मेलन में बोल रिया हा। उपराष्ट्रपति कहो के राज्य विधानमंडल भारतीय लोकतंत्र री धड़कन है। संसद पूरा देश री आशावां री नुमाइंदगी करे है, वठे राज्य विधानसभा में गांवां, नगरां एर परिवारां री आशावां, सपना एर चिंतावां री आवाज है। यही विधानमंडलां रो मूल स्वर एर गरिमा है, वना जन नुमाइंदाओं आपरा वोट देवन आलाओं नमने मिलन और धीरज और संवेदनशीलता रे साथे वारी बात सुनन री अर्ज करी। उपराष्ट्रपति कहो के जन नुमाइंदा चाहे सत्ता पक्ष रवे चाहे विपक्ष रा, वारा सार्थक और नीतिगत सुझाव ने जरूर काम माय लावना चाहिए, इणु मोटो बदलाव आवे है। वना कहो के लोकतंत्र री ताकत विधानमंडला रा भवना रे शानदार होवनो नहीं है, बल्कि वामाय गुणवत्तापूर्ण आचरण और चर्चा वामाय है। इणु पहला समापन जलसा ने राज्यपाल हरिभाव बागड़े और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी संबोधित करिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो के जन नुमाइंदा रा विचार न्यारा न्यारा वह सके है, फिर उन सगणा रो मूल मकसद जनता री भलाई है।
2: मैं उन सभी पूर्व एवं वर्तमान जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अपने विचार, अपने अनुभवों और अपनी जनसेवा से इस सदन की गरिमा को निरंतर बढ़ाया है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि यहां विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य हमेशा जनता का कल्याण और प्रदेश का विकास होता है। यही लोकतंत्र की खूबी है। लोकतंत्र संस्कृति राजस्थान की पहचान रही है और आगे भी बनी रहेगी।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र में शिरकत करी। सम्मेलन में पहली रा अठावा विधायका रो सम्मानी करी जियो। केंद्रीय मंत्रिमंडल सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और मोबाइल फोन निर्माण योजनावा ने मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सदारत में आज भी मीटिंग में वाराणसी में दो एलिवेटेड कॉरिडोर बनावन रा प्रस्ताव माथे मोहर लागी है। बैठक रे पछे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव खबर नवीसा ने फैसला री जानकारी दी। वना बतायो के सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 सारू 1,27,500 करोड़ रुपया रा बजट ने मंजूरी दी रिजी है। इणु देश ने ग्लोबल सेमीकंडक्टर नक्शा माथे लावण माय मदद मिलेला।
3: ये एक ऐसा, इस इंडस्ट्री का नेचर ऐसा है कि बहुत ही क्लीन फैक्ट्रीज बनती हैं, फैक्ट्री सारी एयर कंडीशन होती है, तो यूथ को बहुत अट्रैक्ट करती है। यंग पर्सन्स जो इसमें काम करते हैं उनमें से कई के साथ इंटरेक्शन हुआ है। जिस तरीके से इस फैक्ट्रीज में काम करते हैं, आज तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में करीब 25 लाख का रोजगार है। 2.5 मिलियन एम्प्लॉयमेंट इज देयर इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
1: मंत्रिमंडल 62,500 करोड़ रुपया का बजट के साथ है मोबाइल फोन विनिर्माण योजना ने मंजूरी दी है। श्री वैष्णव कहो के आ योजना आवता 5 साल में लागू करी जाएगा। ये योजना री भगत में कोई 39,00,000 करोड़ रुपया रा मोबाइल फोन बनाया जाएगा। इनो कोई 60,000 लोगों ने सीधी नौकरियां मिलने री आस है। मंत्रिमंडल यूरिया सारू राष्ट्रीय निवेश नीति ने मंजूरी दी है। इनरो मकसद यूरिया हल्का में नुआ निवेश ने बढ़ावो देवणो है जिणो आत्मनिर्भरता रो लगस हासिल करियो जा सके। चुनाव मीडिया और मतदाता शिक्षा ने लेर आज जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी भी। नवी दिल्ली रा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान और NLU जोधपुर का न्यू इनरो आयोजन करीजियो। SCM रिपा माय भी ई संगोष्ठी में बोलता मुख्य चुनाव अहलकार नवीन महाजन कहो के युवा प्रजातंत्र रो अहम हिस्सो है। स्कूल और कॉलेजा में मतदान प्रक्रिया रा बारा में जागरूकता बधाई जावे। ई सारू राज्य में 25,000 इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब बनाई जा है।
4: हमारे जो यंग वोटर्स हैं खासतौर पे जो स्कूल कॉलेज में हैं उनको किस तरह से इन्फॉर्म पार्टिसिपेशन के जरिए प्रजातंत्र का अहम हिस्सा बनाया जाए, इसी की कड़ी में जो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स हैं वो स्कूल्स और कॉलेजेस में बड़े पैमाने पे उनका गठन किया जा रहा है और उनको स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज के साथ जोड़ा जा रहा है। राजस्थान में मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 25,000 ऐसे इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स हम लोगों ने स्कूल्स और कॉलेजेस में अब तक गठित किए हैं।
1: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। प्रदेश भर में आज आसवाड़ी महिलाओं का स्वास्थ्य जांच रो मोटो स्क्रीनिंग अभियान शुरू हुई हो। 5 दिन तक चलन वाला ई अभियान में ऊंची जोखिम वाली महिलाओं की खास निगरानी करी जाएगा। ANM आशा सहयोगिनिया और CHO गर्भवती महिलाओं की सेहत रो ब्यौरो राखेला। ई बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर आज बांसवाड़ा में मीडिया साथ बतल में कहो कि सरकार आसवाड़ी महिलाओं का स्वास्थ्य ने लेर घनी संवेदनशील है। न्यारी न्यारी ठोड़ा माथे अजय भी प्रसूता मारी मौत रा सवाल माथे वणा कहो कि विशेषज्ञ की टीम ने वास्तविक कारण की जांच कर रही है। श्री खीमसर कहो कि घनकरा मामला में किणी तरह रा संक्रमण और दवाइयां रा रिएक्शन अजे तय सामने नहीं आया है।
5: जयपुर से एक विशेष दल आया यहाँ पर, हमारा स्टेट के जो टॉप लोग हैं उनका एक दल आया और मैं आपका मंत्री हूँ, मैं भी आके एक हमारी पूरी मीटिंग हुई है। जो दो की डेथ हुई हाई BP और लिवर के प्रॉब्लम की वजह से दो की डेथ हो गई है। हमने स्टाफ से बात कर ली है, हमने ये तक है कि जब आई है जब और जब तक डेथ हुई हमने पूरे रिकॉर्ड्स भी मांगे हैं। वो रिकॉर्ड्स हमें जब दे देंगे उनको हम जयपुर ले जाके उनको हम वेरीफाई कर लेंगे।
1: विश्व युवा कौशल दिवस रे मौके आज प्रदेश में न्यारा न्यारा आयोजन हुआ। प्रभात फेरी रैली और दूजा जागरूकता कार्यक्रम री मार्फत नौजवाना ने आत्मनिर्भर बनन रो संदेश दीजियो। साथ ही न्यारी न्यारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कैरियर मार्गदर्शन सत्र राखी जा। जयपुर में हुआ कार्यक्रम में नौजवाना ने स्वावलंबी बनावन सारू वारा कौशल विकास माथे जोर दीजियो। जलसा में कौशल रोजगार और उद्यमिता राज्य मंत्री KK वैष्णोई कौशल विकास रा हल्का माए चोखो काम करने वाला नौजवाना रो सम्मान करियो। जलसा माए बोलता श्री विश्नोई जवाना ने कौशल सिखावण ने जोड़ने रोजगार रा मौका मुहैया कराउण री सरकार री प्रतिबद्धता दोहराई।
6: पिछले 2.5 वर्ष में राइजिंग राजस्थान में पूरे विश्व से और देश भर के इन्वेस्टरों को यहाँ पर इन्वाइट भी किया, अलग अलग उद्योगों के लिए आकर के यहाँ पर अपना पैसा भी लगाए और आने वाले समय में निश्चित रूप से उसका सीधा सीधा लाभ हमारे जो स्किल डेवलपमेंट से कौशल प्राप्त कर चुके युवाओं को नौकरी मिलने में भी ITIs कॉलेजेस कैसे अपग्रेडेशन ऑफ PM सेतु वाली स्कीम से ITI का आने वाले समय में रिफाइनरी जैसे बड़े उद्योग अपने प्रदेश के अंदर आ रहे हैं उससे जुड़े हुए एंसिलरी प्रोडक्ट यहाँ पर जुड़ेंगे। सोलर का बहुत बड़ा निवेश यहाँ पर चल रहा है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आयुर्वेद हल्का में आधुनिक तकनीक काम में लेवण माथे जोर दियो है। आज नई दिल्ली में 100 श्रोतम 2026 रा उद्घाटन जलसा में बोलता श्रीमती मुर्मू कहो कि सरकार आयुर्वेद और योग ने दुनिया भर में नई पहचान दी है। वना आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा ने वैज्ञानिक मानका माथे स्थापित करने की कोशिश माथे खुशी जताई। राष्ट्रपति कहो कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा रा वैश्विक मानकीकरण ने मजबूत करण सारू विश्व स्वास्थ्य संगठन रे साथे मिलने काम करे।
7: आयुर्वेद की इस कलुषित परंपरा के मानकीकरण का

0: और इसे साइंटिफिक वैलिडेशन के आधुनिक वैश्विक पद्धतियों में से जोड़ने का महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। इसके माध्यम से शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में भी एविडेंस जेनरेशन और आयुर्वेद की शल्य चिकित्सा को समकालीन तकनीकों तथा पीने वाले इन्वासिव टेक्निक्स से जोड़ने के दिशा में प्रभावी योगदान दिया जा सकता है।
1: और अब मौसम। प्रदेश भर में लोग मानसून रा दूजा दौर रे शुरू होने रा इंतजार कर रिया है। फिर वही लारला 24 घंटा में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर में भी बिरखाओं गर्मियों आराम मिलियो है। बचोड़ी थोड़ा माथे लोगों ने गर्मी और उमस रो सामनो करनो पड़ रियो है। मौसम महकमा रे मुजब मानसून एक कर फिर सक्रिय बह रियो है। महकमो आज 18 जिला सारू गरज चमक रे साथ बिरखारी गतिविधियां रो येलो अलर्ट बतायो है। राज्य सरकार सरकारी स्कूल भवनारी हिफाजत ने लेर घनी सावचेत और संवेदनशील है। स्कूल शिक्षा महकमारा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव आज जयपुर जिला में न्यारी न्यारी स्कूलों रो औचक निरीक्षण करने भवनारी हालात री जानकारी ली। ई दौरान वना हिफाजत और बुनियादी सुविधाओं रो जायजो लियो। श्री यादव अहलकारा ने स्कूल भवनारी हिफाजत रा बारा में जरूरी दिशा निर्देश दिया। वना कहो कि स्कूल भवनारी हिफाजत ने लेर कोई समझौतो नहीं करियो जायलो। जयपुर में पहली बार काले विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस होवन जारी है। विदेश मंत्रालय और राजस्थान सरकार कानियो आ कॉन्फ्रेंस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में वेला। इनमें हिफाजती प्रवासन ने बढ़ावो देवन, फर्जी एजेंटों बचाव और प्रवासियों का कल्याण, निवेश और पर्यटन समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे चर्चा करी जायला। जयपुर में आवता मीना ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों री मीटिंग वेला। 6 और 7 अगस्त ने होने वाली ई मीटिंग ने लेर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज तैयारियां री समीक्षा करी। वना इणु जुड़िया महकमा ने सगला इंतजाम तय भगत माथे पूरा करण रा निर्देश दिया। मुख्य सचिव महत्व अंतर्राष्ट्रीय आयोजन सारू हिफाजत और दूजा बंदोबस्त चाक चौबंद राखण नहीं कहो है। ने अबे आखिर में खास समाचार आप एक कर फेरू सुन ले रहो। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जनता री सेवा ने जन नुमाइंदारी सब मोटी जिम्मेदारी बताया। मतदाताओं री बात धीरज और संवेदनशीलताओं सुनन री अर्ज करी। केंद्रीय मंत्रिमंडल सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और मोबाइल फोन निर्माण समेत कई अहम मुद्दा माथे मोहर लगाई। राज्य में आस वाली महिलाओं रा स्वास्थ्य जांच रो सघन स्क्रीनिंग अभियान शुरू। 32 जोखिम वाली महिलाओं री खास निगरानी करी जायला। और प्रदेश में मानसून रा दूजा दौर रे सक्रिय होने रा आसार रे बीच 18 जिला सरू बिरखारो अलर्ट। नेंद्र साथे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो वियो। मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जायला। नमस्कार।

FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के ठीक 7 बज रहे हैं। अब किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती बाड़ी।

खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुन्न लाशक भयान है और बयान है जगदीश भाई का राम राम। भयान देखो चौपाल में तो बैठा ना खेत खलिहान की बात और जो को मौसम चाह रही हो बैंक भी और सागे सागे आपने जो को पशुधन है और स्वास्थ्य जरूरी सगली बता करिया करा। यानी देखो लाडला तीन चार दिन हूँ आपने जो को नागौर का आगती पागती क्षेत्र है इनके मायने फिर का कटे समाचार है कोने दूर दराज में कटे कटे हो रही है लेकिन जट बिरका हुई बटा पान लगे टगे खेती जकी इ मौसम में उन्हीं चीज़ है बा कर ली है और जट पेउत की सुविधा ही बा पहले शुरुआत कर ली इ बिरकाऊँ भी में भी फायदो होने की पूरी पूरी संभावना है।

जद आपा खेती करा तो कई चीजा को ध्यान रखा। सबू पहले देखो सूर डाली बिखरा, जको भी आपने जींस बोनी है, जको भी धान बोनो है आपा बिना उपचारित बिखरा, और एक बाद में टेम टेम माते आपा अगर लट है, कीड़ो है, कीट है, लाग जावे तो भी सारू उपचार भी आपा करा। रासायनिक दवा को भी प्रयोग करना पड़े तो करा, जैविक उपचार करना पड़े तो भी करा। पर एक चावी और ठावी बात आ है कि जकी प्रकृति है भी के मायने नुकसान पहुँचना वाला अगर फसला ने जीव है तो फायदो पहुँचने वाला भी है, और अंग अनुपात 2:1 या करे। कहने का मतलब अगर नुकसान पहुँचाने वाला 2 कीट है तो फायदो पहुँचने वाला 1 कीट, और एक जगह फायदो फुगावे बे कीट जदि बच सके जद आप पूरो ध्यान रखा कि रासायनिक दवा है बिंगो कम उपयोग करा, जैविक भी जो उपचार करा, जैविक रसायन जगह बे आप छिड़का। पर बात आ करा कि किसा कीट है जगह आपने फसल ने फायदो फुगावे, माने आप बोला मित्र कीट, बे प्राकृतिक रूप अपनी फसलों का रक्षक है, अपनी फसलों ने जका कीट नुकसान पुगावे, हानिकारक जका शत्रु कीट है, बांगा जका कीट है या अंडा है, इल्ली के दान, लार्वो के दान बिने बेखार नष्ट कर दे, और कीटनाशक को खर्चो भी बचावे, और कुदरती रूप अपने फसलों को जको फसल चक्र है संतुलन है बिने बनाए रखे। ए खेत में पाया जाने वाला जका मित्र कीट है आंके मायने लेडी बर्डवर्ड बीटल, लेडी बर्डवर्ड बीटल आ लाल और नारंगी रंगी छोटी सी धब्बेदार गुबरेला मक्खी टाइप हुआ है ना। इन आ व्यस्क और लार्वा दोनों ही कहने का मतलब लेडी बर्डवर्ड बीटल जकी है व्यस्क रूप में परिपक्व हो जावे, या इन जगह लार्वा वे बे फसलांगा जगह रस सुन से माऊ जगह नापा कह करा, और सफ़ेद मक्खी बिना नष्ट कर दे खार और अपनी फसल ने सुरक्षित रखे। दूसरे ड्रैगन फ्लाई घोड़ा सुई भी खाए ना आपा, और जो को उड़न वाला हानिकारक कीट है या मच्छर है बाने हवा में ही पकड़ खाएजी और अपनी फसल ने सुरक्षित रखे। प्रेइंग मेंटिस इन आपा बोलिया करा राम जी को घोड़ो, ओ भी कहीं करे जगह नुकसान पहुँचाने वाला कीट वे, टिड्डा वे, इल्लिया वे, लार्व वे बांगो शिकार करे और अपनी फसलों ने सुरक्षित रखे। इन्हीं बात एक जो मित्र कीट है वो है ट्राइकोग्रामा, और सूक्ष्म तत्व ज्ञान को है, हानिकारक जगह कीट है जगह तना में छेद करे, फसला में जगह छेद करे या बटे अंडा दे दे तो वह अंडा ने वह कीटा ने खार नष्ट कर दे, जगह वो जगह शत्रु कीट का लार्वा पैदा होने पहले नष्ट हो जाए। इन्हीं बात एक सिरफिड मक्खी आ करे लार्वा जगह फसलों के मायने नुकसान पुगावे या फसलों को रस चूसे एफिड्स जगह ने बोलिया करा बाने और खार नष्ट करे। मकड़ी खेत में मौजूद जगह विभिन्न प्रकार की मकड़ियाँ हुए वे भी जगह नुकसानदायक जितना भी कीट हुए बाने खार खत्म करे, और आपनी जो की फसलें हैं बने निरोगी रखे, और आपने जो को रासायनिक दवा छिड़कण में जो को खर्चो लागे कीटनाशक माते जो को खर्चो लागे बिंगो बचाव करे। ए जगह मित्र कीट है जदि बची जद आप कम रसायनों को प्रयोग करा, और विशेष रूप आप ध्यान रखा कि जगह आपनी फसलें हैं बामे सच के मायने रासायनिक दवा छिड़कण की बुरकाव करने की जरूरत है कि नहीं है तो ही करनी चाहिए, और आगे पहचान भी आप करा। विशेष रूपों पर ध्यान रखा कि आपने जगह मित्र कीटे बने बचाव, और प्रकृति को जो संरक्षण है संतुलन है बिना आप बनाए रखा। इनके सागे सागे एक आप जगह ने परजीवी तत्व तो गया करा वो भी अपनी फसलों ने सुरक्षित रखे, वो भी मित्र कीट के माया आवे हरा लैशविंग वो भी मित्र कीट के रूप में काम करे, ओवरफ्लाई एसेसिन बग और मेंटिस और इंग्लिश आगे शागे ग्राउंड बिटल है ना। मकड़ी का कई रूप या करे भेड़िया मकड़ी, रो बिटल और रोवर फ्लाई, ये जितना भी नाम बताया तो आगे पहचान भी जरूरी है बे अपना मित्र कीट है अपनी फसल ने नुकसान नहीं पहुंचावे
और जगह नुकसान पहुँचा बहन खाए रहे नष्ट करे नुकसान पहुँचाने वाला।

0: का कीट है, कपास की अगर फसल है तो इसमें गुलाबी जो कि सुंडी आकर फल छेदक, इनके अलावा फल मक्की जो कि फल वे बने छेद कर दे खा जावे, कटवर्म जो पौधे को तनों वे बिना काट खा जावे, सफेद मक्की जो कि रस चूसने ली हुए, इनके शागे शागे लाल ताड़ का धुन जो कि ने तना छेदक बोलिया करे, ओ बेला वे पत्ता वे पांगे नीचे चिपड़ो या करे, और थ्रिप्स ए जका कीट है जका नाम बताया ए हानिकारक कीट है, जको कपास की जगह सुंडी है लट टाइप हुए, कटवर्म वो भी लट टाइप हुए यानी उड़ को सके तना के आशे पासे चाले पत्तांगे नीचे चाले, बाकी जगह तीन नाम बताया ए उड़ सके। तो कहने का मतलब है जो को संतुलन है प्रकृति में वो प्रकृति भी अपने आप क्रिया करे, और आप ज़्यादा अगर रासायनिक दवा को प्रयोग करा तो जो को संतुलन है बिना आप बिगाड़ दिया। बातचीत और भी करा पर मैं गांव गयो रोड और उन्नत कर्षक मिलिया करीब आऊँ बातचीत, पहली बार आपने पूर्ति करा बी के बाद में आपने बात जो कि जारी रखा। राम राम सर।
1: राम राम सर। राम राम सर।
0: सबू पहले आप बात आ करा कि जैविक बीजोपचार की, जैविक बीजोपचार की आप बात करा जना देखो लार ले काफी टाइम उचाले कि जैविक खेती जैविक खेती, और खेती के मायने जकी आप रासायनिक दवा खाद या पेस्टिसाइड जकी भी काम में ला शरीर ने भी नुकसान पहुंचावे और सागे सागे जानवर के भी बिल्कुल ही बा काम की कोनी, विशेष रूप में जान आप जैविक बीजोपचार की बात करा तो जान
1: देखो बीजोपचार रिजल्टता ही बात है तो भाई बाजार जितना भी आप पेस्टिसाइड लावा तो बे तो खर्चीला भी है महंगा भी है खर्चो भी लागे और बारो अनु तो नुकसान हुआ है। एक तो आप बारे जमीन में जहरीलापना आवे और खर्चो भी किसान ने ज्यादा लागे, तो जो जैविक उपचार आप घरे जो उपचार करा इन बोलिया करे जैविक
0: जकी मतलब चीज आपनो जो पुश्तैनी तरीको है,
1: पुश्तैनी तरीको है जकी चीज आपने घरे ही मिल जावे और प्राकृतिक रूप आपने वे चीजा मिले। तो बीज ने उपचारित करने वास्ते बिल्कुल सादो और आपनो सरल है जो तरीको है वीर मैंने देखो के बीजा मृत बनाने वास्ते 5 किलो गाय रो गोबर चाहिए, कोई ज्यादा नहीं सिर्फ 5 किलो गाय रो गोबर और 5 किलो गोमूत्र चाहिए, और बीर मायने 50 ग्राम आप जो चूनो आया करे कड़ी तो वो 50 ग्राम घरा के करिया करा तो वो 50 ग्राम कड़ी मिला दे और 20 लीटर पानी रमायने घोल फरी प्लास्टिक रे ड्रम रमायने घोल दे वहां पर तो बिना 24 घंटा वहां तो 2-3 बार हिला देवा तो वो आप बीजा मृत है जो एकदम तैयार हो जाए 24 घंटा।
0: और कहने को मतलब जगह बीज जान बाजरो है
1: कोई भी बीज हो
0: बिना आप उपचारित कर ले बिल्कुल 5-24 घंटा में और हिलाना पड़ेगा
1: बिल्कुल 2-3 बार आप हिला देवा
0: और अगर घंटा मतलब
1: 2-3 बार हिला देवा सुबह दोपहर शाम और मान लो 24 घंटा वहां पर काम नहीं लेना तो आप 24 घंटा और ही पड़ी रहते इनमें फायदो है नुकसान वाले कोई चीज है कौन है। तो बी बाद रिमाइन आप इन छाण पर और आप मात्रा है जो कि 100 किलो बीज है जो कि उपचारित हो जाए
0: मतलब क्या उनको मतलब ओ जो तो आप बतायो ओ मसालो ओ जो को बीजामृत बनायो 100 किलो चाहे वो बाजरा हो मूंग हो मोट हो गवार हो
1: कोई भी बीज हो
0: उपचारित कर सका
1: बिल्कुल।
0: और जो 24 घंटा ज्यादा रह जावे तो गड़बड़ हुए
1: फायदा जीवाणु है जो कहाँ पर ज्यादा हो नुकसान ने में तो 24 घंटा बाद में आप 48 घंटा में छान पर आ रहा पर जबकि टाइम बीज आपने बीज न हुए अभी 8 फोर पहला बीज ने प्लास्टिक माते बिचा पर और चौखी तरह आप बीज ने जो रड़ा ले और हल्को शोक पाच हो जो सुखा ले
0: ओ जो को थे बतायो लगभग 100 किलो बीज में ओ आप जो को उत्पाद बनाए हुए बीजामृत जो के ना पके वहां ओ आप काम में ले सका तो बाजरो जान लगभग 125 ग्राम आप बीघे में काम में ले बुआई में
1: बिल्कुल।
0: अब जान कोई भाई बोरिया है 25 बीघा के मायने तो थोड़ा सो ही हुई भी बीते बीज खातर कितो काम में लेना चाहिए
1: बीते बीज रो आप जो मान लो आप
0: मान लो आप 5 किलो बाजरो जो को बो हाँ घोड़ू आपने उपचारित करना है
1: भाई 5 किलो बाद आपने 2-3 लीटर पानी में चुके सही सही बीज जाए और बाकी जो
0: प्लास्टिक प्लास्टिक बिचार भी मत बाजरो
1: मैंने बिचार पर और आप बाजरी मायने जी तो अनुमान भी रड़ा सका भी तो रड़ा लेवा और जकी चीज बाकी बचे तो खेत में छिड़काव करा तो भी वहां पर फायदा मिले
0: क्यों को मतलब जान 5 किलो बाजरो आपने उपचारित करना है और जीवा मृत जो को थे बता रहा जो आप उपचारित करा तो भी मैं लीटर या आधो लीटर की तो डाला जितने वो भीग जाए पूरा भी

0: जमीन रे मायने या बीज आपा बारू लावा बीज रे हाथ ते झका कई बार कई है के परजी भी है जगह दूसरी जगह है जगह बीमारी है जगह बीज रे हाथ आ जाया करे तो भी हम हीरो बचा हुई और जमीन रे मायने हर दाने रो है जो अंकुरण होने रे मायने इस समता है
1: उनको मतलब
0: ज्यादा
1: जितो
0: है।
1: बीज आपा जी मुजब हिसाब बोयो है वो पूरो
0: बिल्कुल
1: उगी
0: बिल्कुल
1: और
0: होगी,
1: कीड़ो
0: कीड़ा नहीं
1: मतलब
0: लागे।
1: पूरो को पूरो अंकुर तू जाइर बीके बाद के मायने जे आपा बाद के मायने बात करा के भाई कोई और छिड़काव करनो और करनो जरूरत पड़े कहीं जान मान लो आपा उपचारित कर बो दियो
0: नहीं जो देखो आप उपचारित कर बो दियो तो इन आपा ने फायदो मिली अगले आने वाले टाइम में इनमें फायदो रहे जमीन रमाई ने, एक तो कीड़ा और कम हुए ये चीजों और भी बाद में जो आप कई बार देखा भाई लोग डीएपी है या यूरिया ज्यादा डालिया करे तो यूरिया की जगह आप अगर जीवामृत भंडार ना का तो भी आपा ने लंबे टाइम तक बहुत ज्यादा फायदो
1: वो
0: मिले।
1: क्या डालना आपा
0: वो देखो जीवामृत बनाना तो साधारण सरल तरीको है।
1: कहीं कहीं चीज भी मापा काम में लेवा जीवामृत बनावा
0: देखो
1: तो
0: जी आप 200 लीटर ड्रम हुए पानी रो तो भी रुमाई 10 किलो देसी गाय रो गोबर मिला देवा और 5 किलो भी रुमाई गौमूत्र डाल देवा और 1 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन खाटो पीटो केड़े वो चना रो वो चाहे उड़द रो वो कोई चीज रो मूंग रो वो मोट रो बेसन 1 किलो तो बीन ने एक ड्रम रमाई ने छिया रमाई 2 लीटर पानी रमाई ने मिला रख देवा। बी बाद रमाई ने कही है कि जो एक चीज और बोलिया के संजीव मिट्टी जिकी आपार तटे सब जगह हिमा मेडा माते उपलब्धि है और जो जटे ज्यादा आपारे यूरिया है डीओपी ना कुड़ी या ज्यादा जहर छिड़काव करो तो बे कहीं करे नाडी रे ताला रमाई जो आपने खेलिया है या पिंपल है जो भी वे
1: आपको क्या उनको मतलब
0: बीर नीचे
1: यान
0: एक
1: की
0: किलो।
1: जिग्या यान की
0: हाँ
1: जिग्या मिट्टी लेवा जान आग के नीचे हूँ ले ली आप खेजड़ी के नीचे हूँ ले ली या शिव के सारे हूँ ले ली
0: हाँ
1: जग की
0: जट कभी
1: जिग्या
0: बुआई नहीं
1: जिग्या
0: हुई बैठो
1: वही कोनी उड़ी रासायनिक खाद आदि को बट प्रयोग है जो को विडो को दी
0: उड़ो कौन है
1: बा बिने किसी मिट्टी बोला
0: बिन संजीव मिट्टी बोला
1: संजीव
0: करे
1: मिट्टी
0: बीर
1: बोला
0: मायने कही है कि जीव चिड़िया ने बीट ज्यादा हुए और भी खाद खतेड़ो हर तरह हुए बी में सूक्ष्म जीवाणु है जका
1: ज्यादा हुए
0: आपने खेता में फायदो करने वाला वह भी
1: बे
0: मिट्टी
1: एक
0: में
1: घोल के मायने आप मिला
0: मिला
1: दियो कितना
0: देवा
1: किलो
0: बस आधा किलो 1 किलो ज्यादा हूं ज्यादा 200 लीटर
1: पच्ची
0: पानी
1: इन्हें कितना दिन तक यहाँ पर गोल
0: इन
1: पड़ा
0: आप कम कम 7 दिन वो तैयार हुआ 7 या 10 दिन लगे जो अब गर्मी के मौसम में 7 दिन वो तैयार हो जाए और फसल बुवाई हूँ आप 20-21 दिन बाद में है जो कोई इन्हें छिड़काव में काम में ले वहां तो देखो एक तो
1: ओ खेत में या खड़ी फसल में की टाइम छिड़काव करा
0: कट्ठे भी यहाँ पर काम ले
1: भी
0: सका
1: जमीन मत छिड़कदा
0: जमीन पर छिड़कदा और फसल पर भी इन्हें
1: मतलब
0: छिड़क
1: फसल
0: सका दोनों
1: बोयो
0: पर।
1: पहली और जो को बताओ आप जो अमृत और जमीन मत छिड़क देवा
0: बिल्कुल फसल बोया
1: या
0: पहला भी आप छिड़क सको और पानी रे साथ ही रो जो खेता में जटे पानी री सुविधा है जगह लोग पानी देवे तो वे पानी रे साथ दे देवे और या जगह भी पानी देवनी सुविधा नहीं है बिरानी
1: बीजान
0: खेती
1: ड्रिप
0: है
1: सिस्टम काम ले तो भी मिशा के डाल दे
0: साग डाल दे छाण पर और अच्छी तरह ताकि ड्रिप व्रिप दटे नहीं और जगह आप वीरानी खेती वाला है तो आप हमने रात दिन ज्यू भी छिड़काव करा तो भी हिसाब वहां पर
1: और
0: छिड़काव
1: इन्हें
0: कर
1: जान
0: देवा।
1: आप मान लो 15-20 दिन या महीने पर की फसल हो जावे तो खड़ी फसल माते इंगो जे अपन स्प्रे करा तो
0: बिल्कुल आराम कर सका खड़ी फसल पर अगर स्प्रे कराना तो इनमें मतलब 1 लीटर में 5 लीटर पानी मिलार करना
1: और
0: पड़े ला
1: मिला
0: पर
1: देवा
0: बिल्कुल
1: यानी 1 लीटर जो को घोल है मायने 5 लीटर
0: 5 लीटर
1: पानी
0: पानी
1: मतलब छह
0: मिलार
1: लीटर
0: छिड़काव
1: उग्यो
0: कराला
1: 6 लीटर उग्यो और भी कोई स्प्रे करता
0: बिंगो इस पर करा तो आपने कई तरह का फायदा है जगह
1: कई
0: किसान भाई
1: फायदा
0: ने
1: हो
0: मिले
1: सके
0: ला
1: जान
0: जहाँ एक तो फसवा फसल की बढ़वार हुई जगह तेज हुई और जबकि आपने रोग रोधी क्षमता है जबकि ज्यादा हुई फसल में बीमारियां बहुत कम लागी और मान लो मेरी
1: क्या
0: जड़ा
1: उनको
0: है
1: मतलब
0: जबकि मजबूत
1: जब
0: हुई
1: फसल
0: गहराई
1: है
0: में
1: जबकि
0: जाए
1: निरोगी हुई
0: बिल्कुल
1: दिमक आदि लागे कोरी
0: दीमक आदि बिल्कुल कतई नहीं लागे और अपारा जगह मित्र कीट है तो बाने भी इन नुकसान बिल्कुल ही नहीं वेला।
1: क्या उनको मतलब जका आपने फायदो पुगावे बे कीट भी बचुड़ा रेर बे आपने फसल ने जको फायदो पुगाएर इमें डालो राम जी आप बात यूं करा जान ए जकी दो चीजें थे बताई बीजोपचार की और एक जीवामृत जको है इको थे कोई थारे किसी फसल में प्रयोग करियो और कहीं फायदो यो
0: देखो सर मैं तो बाजरी में भी करियो और मूंग ग्वार में भी करियो। देखो
1: तीन
0: मोड़
1: फसल
0: तो
1: मायने
0: बिल्कुल मोड़ तो कहीं कई सालों बावा को ने तो ज्यादा फसल है मूंग और बाजरी यहाँ पर ग्वार ही है तो इन मायने लगभग
1: लगातार कितने साल प्रयोग करियो
0: 2020 बाद में लगातार कर रहा सर
1: कहीं फायदो देखियो
0: फायदो। देखो बीमारी कदी कोई लागी कोने और रासायनिक छिड़काव मान कदी करना पड़ियो कोने और आज वो आज तक यूरिया या डीओपी यहाँ पर कदी एक दाणो में बपराने काम पड़ियो कोने और कोई तरह की बीमारी यहाँ पर खेता में बिल्कुल ही नहीं लगे और बडवा रहे जो कि बहुत तेज हुए हैं।
1: ए दो आपां बात करी डालो राम जी एक तो जान बीजोपचार की और एक जीवामृत जको है प्रयोग कर आपां फसल माते छिड़काव भी कर सका और जमीन माते भी कर सका
0: बिल्कुल दे
1: जिक्यों
0: सका
1: फायदो हुए और पूरो जैविक तरीके जैविक जकी आप बातचीत कर
0: साधारण ऐसा बिल्कुल कम खर्च
1: में खेती।

0: और घर को घर के मायने ही आप बना लेवा। एक चीज और ज्ञान है, आपनों जो कोई इलाको है कदी देखा आप बाजरी में स्वाव ज्यादा हुए, कदी मोट में हुए, कदी मूंग में हुए, कदी गुहार में हुए, तो यान को भी कदी प्रयोग करियो। कहीं के भाई कई बार आप देखा कि मूंग की फसल पूरी बिगड़ गई, या बाजरी की बिगड़ गई, या गुहार की बिगड़ गई, मोट की बिगड़ गई। इन्हें आप के तरीके हो कि भाई एक फसल बिगड़े तो दूसरी हुई, दूसरी बिगड़े तो तीजी हुई, जखे ने आप क्या करा एक मिश्रित खेती, मिलुआ खेती।
1: हाँ जी,
0: तो
1: वो
0: भी कभी प्रयोग
1: आमने
0: करियो कहीं आप।
1: मैं बात तो हमेशा ही करा सा, मिलवा खेती करा ज्यादातर, जबकि बडेरा क्या होता हमने हमने भाषा में तेड़ेरी खेती।
0: हाँ तेड़ी खेती
1: तो अब देखो
0: जान,
1: कि
0: बाजरी के सागे तिल लड़ा देवा,
1: बाजरी में तिल लड़ा
0: तेरा
1: देवा
0: काकड़िया का काचरा का बीज भी लड़वा,
1: भाई,
0: मूंग
1: बेलन
0: भी
1: तो
0: अपन
1: वही
0: लड़ा
1: है,
0: देवा।
1: काकड़िया में तेरा बाजरी में मिले है, और मूंग भी अपन आग सकान बडेरा ठेठू मोट बाजरी तो भेड़ी बीजता ही बीजता।
0: हाँ हाँ
1: हाँ तो
0: और मूंग में भी अपन तिल डाल सका,
1: बिल्कुल
0: थोड़ा
1: मुंगान
0: वो
1: में
0: भी ने लुणा ही दोरी है
1: लूणा ही
0: क्योंकि
1: तो
0: वो
1: देखो
0: दो
1: दोरी
0: फसल
1: हुए,
0: साथ
1: मूंग
0: ही
1: कई
0: हुई है,
1: बार
0: तीन
1: बड
0: साथ ही
1: बार
0: हुई है।
1: ज्यादा ले ले वजन, मूंग का ये तिल्ला माता आटा दे देवे, तो वास्ते मुंगार में तिल थोड़ा दोरा रहे है,
0: मोट में सोरा हो जावे,
1: मोटा में होरा रहे, या बाजरी में है जो तिल है
0: ग्वार
1: होरा
0: में भी
1: रहे,
0: हो जावे।
1: गुवार में भी वे पच कहीं हो। देखो आमनी अठ जमीन है जो कि एक तरह री कौन है, कटी बाजरी ज्यादा माने तो कटी तिल ज्यादा माने,
0: अब एक खेत में ही आप 20 बीघा में देखा तो भी में फर्क आ
1: बीमें
0: जावे।
1: कई जगह फर्क आवे। तो कटी मान लो मिश्रित खेती भेड़ो तेड़ेरी खेती वजन, देखो कटी तिल ज्यादा हो जावे तो कटी बाजरी ज्यादा हो जावे, तो भी वहां पाने
0: क्या तो
1: जमीन है जो
0: मतलब
1: खाली कौन
0: एक
1: रहे,
0: फसल
1: फायदा
0: को
1: मिल जाओ
0: नुकसान है जो को दूसरी फसल है पूरा कर
1: पूर
0: दे,
1: तो हो जावे।
0: और जो को आपने ए निश्चित रहे कि भी आ निपजी कि नहीं निपजी वो भी फायदा हो
1: वो
0: जाएगा।
1: फायदा हो जावे, मतलब खेत खाली कौन रह
0: खेत
1: जावे कुल
0: खाली
1: मिला।
0: कोरे नहीं, मई बिंग माए ने मान लो मूंग नहीं निपजे तो तिल निपजे, तिल नहीं निपजे तो मोट निपजे, है ना,
1: बिल्कुल।
0: ग्वार निपजे, बाजरे के सागे भी उजे, पूरी चीज जो की बन जाए।
1: और आजीवामृत में आपने एक चीज और बताओ यार जी, एक तो आप पानी तरल जीवामृत हो यो छिड़काव रो, और दूसरो इन मायने काठो जीवामृत भी और बोलिया करे जो कहने घन जीवामृत बोलिया करे,
0: वो कई तरीके होते हैं
1: जो को
0: यार।
1: तरीको लगभग हागी है बीरमा, एक पानी है जो नहीं डालिया करे, बाकी जो
0: सागी बे सागी चीजें
1: सागी
0: जो
1: चीजा है आलो गोबर है भाई, आपा 10 किलो गोबर ले लियो मात्रा मायने, 10 किलो गोबर माते 2-3 लीटर आपा गोमूत्र छिड़क दियो, और भी हम बाद में आपा 1 किलो है जो को गुड़ नाग दियो, 1 किलो बेसन नाग दियो, बिन दिन में डेली रो कहीं मिला होता रहे वहां, तो वो 10-15 दिन है जो को मिला होता रहे वहां बीर में जीवन हो जाए, बीता और बीता बन जाए, और 4-5 किला प्रति बीघा खेत में आपा छिड़काव है जो को आतू कर दे,
0: और मतलब सुको टाइप हुए
1: सुको टाइप है भुरभुरो
0: और खेत के मायने हाथ बुरका
1: हाथों
0: देवा,
1: तो बुरका दे आपा जोड़े में जियो, यूरिया फेंक है जियो फेंक देवे।
0: ओ किसी टाइम फेंकना चाहिए जहां आप पहली खेती करा भी हूं पहली या खेती करने के
1: इन्हें
0: बाद।
1: किसी टाइम नाग सका आपा ने जना जरूर तो महसूस हो, देखो खेती हूं करी हूं पहला बरसात आंता ही नाग देवा जन भी तो और भी ज्यादा फायदा है, बाद में बीरा ने
0: खड़ी
1: खेती
0: खेती में भी डाल दे आप।
1: बिल्कुल खड़ी खेती में आपा बीरा ने खेती में नाग सका, पीवत में नाग सका, पीवत में जो मतलब 4-5 किला प्रति बीघे नागा, और बीरा ने खेती में 3-4 किला ताई नाग देवा, नुकसान कदे ही
0: और
1: नहीं
0: जान
1: गए।
0: आप जमीन में बुरकाव कर दी और बीगे बाद में बरसात हुई तो बीगो जो को अंश है जो को जमीन के
1: अंश
0: मायने।
1: जातो रे जितना भी सूक्ष्म आपारा जीवाणु है फसल ने जका पोषण देने वाला जीवाणु है, वे हमारी जड़ा ताई जाए और फसल ने जो बराबर पूरा पोषण दे, सब भी जकी पोषक तत्व तो कमी जीती भी अलग अलग आवे
0: पूर्ति
1: तो
0: कर दे
1: वाह है जकी माई पूर्ति हो जावे।
0: एक आप बात करिया करा, देखो मिट्टी की जांच है, पानी की जांच है, मिट्टी की जांच करावा आप भी मापन पतो लाग जे के खेत के मायने किसा पोषक तत्व कम है और किसा डालना है भी हूँ। आप जांच कराने के बाद पतो लागे भी आपने खेत के मायने ए पोषक तत्व है आकी कमी है भी मैं ओ क्या पूर्ति करे जो को थे बतायो है।
1: भी ई रामायण पूर्ति करने वाते जो पोटास री अगर कमी बतावे है, या भी मैग्नीशियम री
0: नाइट्रोजन
1: कमी
0: की है।
1: बतावे, या कई चीजा की कमी है भाई, 16-17 पोषक तत्व तो आया करे,
0: हाँ
1: तो लगभग लगभग तो जमीन में वही है, तो कई चीजा कम हो जाए तो बीर मायने आपा है जो को और जीवामर घन जीवामर तो बना हुआ ईर माई जो 10 किला गोबर में 2 किलो राख रो उपयोग कर सका, और भी आपा कई चीजा ईर माई बड़ा मिला हुआ तो आपा ने जो कभी पोषक तत्व की पूर्ति हो जावे, और तरल जो को जीवामर तो बना हुआ जीव आपा बीर मायने भाई तांबे री कमी है या शीशे री कमी है तो लोरी कमी है, तो वह छोटा छोटा टुकड़ा है जगह आप अभी तरल जीवा मर्त्र मायने
0: और
1: गोड़ दे
0: उनको
1: बेड़ा।
0: मतलब है जितनी भी अपन चीज बता रहे हैं पूरी जैविक है, घरे तैयार कर सका, बाजारों कोई विशेष चीज अपने
1: लाने
0: लानी
1: कौन
0: कोनी पड़े और फसल भी निरोगी वे और स्वास्थ्य खातिर बा बढ़िया वे
1: और सब ज्यादा देखो ना किसान भाई जेब मत भार है जो को बिल्कुल कम
0: कम
1: पड़े,
0: हो जाए, फसल उत्पादन निरोगी और ज्यादा भी वे।
1: और आने वाले टाइम में खेत भी ज्यादा निरोगा हुई साहब, क्योंकि सूक्ष्म जीवाणु जीता अपार के मित्र कीट
0: जमीन में
1: खत्म नहीं
0: मिलना
1: हुई,
0: चाहिए
1: सूक्ष्म
0: पे
1: जीवाणु
0: बढ़ता
1: मिला
0: जाए घटे को नहीं
1: बढ़ता जाए घटे को नहीं, जितनी
0: तो।
1: बार आप भाई जैविक खाद या जैविक छिड़काव रो भी उपयोग करा तो भी सूक्ष्म पोषक तत्व तो कदी कमी आवे तो कौन ना।
0: आपकी जगी प्रयोग करोड़ चीजा है। मैं भया ताई मांडर पूरी बताई तो आपको करा धन्यवाद।

0: राम राम सर।
1: राम राम सा।
2: राम जी करी बात रोल करे उन्हाला आप तें करी पूगती आपने उड़ी के कोई लोक गीत और भजन की तो हरिनारायण शास्त्री रो गायडो और लोक भजन करा आप तें पूग तो।

तपाईँ देखो हरिनारायण शास्त्रीहरूको एउटा लोक भजन गऱ्यो आप त पुग्तो र नागौर मण्डीका आजका भाव भी आइडा नागौर मण्डीमा जो कि विभिन्न प्रकारके जिन्सा गाय बाङ्गा भाव विभिन्न प्रकार रिया मुङ बोली सुरुवात हुई 5,500 और लास्ट भाव 5,700। तिल जका है काला तिल 9,000 उलेर 11,000। सफेद तिल नीचे नीचे बोली शुरुआत है 10,000 ऊपर गई 11,500। जवार 4,500 5,800 ताई और गवार बिक्यो बोली की शुरुआत 5,000 और लास्ट 5,900। तारा मीरा 5,500 6,000। रायडो सरसों को जगह 40% फेट को तेल को भाव है 2,500 और जीरो नागौर मंडी का आज बोली शुरुआत 17,000 और ऊपर ऊपर 21,800। मेथी जकी है 5,700 लेर 6,000। इस सब गोल बोली की शुरुआत हुई 9,000 और ऊपर भाव गया 13,300। सौंप जको है 7,000 बोली शुरुआत हुई और लास्ट बोली छुट्टी 13,000 में। तो चने का भाव 5,000 लेर 5,425 और अषाढ़ी नागौर मंडी में 5,800 लेर 6,000। सिंधी सुए का जगह भाव है 6,000 लेर 7,500। ए आज का नागौर मंडी का भाव आ जे भाई को जींस बचा रखी है तो ये भाव ले सके। काले भाव थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सके और घड़ी का निजमा तो खेती बाड़ी को वक्त हुए पूरा। तो आपके जगदीश भाई नंदिरावशी करा राम राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती बाड़ी FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 7:30 हुए हैं। समय हो चला है NCERT के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम उमंग।

0: दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है लोहारा यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे और अश्विन कोल्हे जी ने। बड़ा सुंदर विचार इन्होंने भेजा है, आइए सुनते हैं।
2: लिखते हैं, सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आप सबको हमारा धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी ने लिखा है,
3: अजीत जी और विमलेश जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप कैसे हैं जी? आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आँखों से नेत्रहीन हूँ। प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूँ। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियाँ, कविताएं और ये भी जानिए मैं दुर्लभ जानकारियाँ सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। हमें दिनांक 22 जून 2026 का कार्यक्रम राग सिंदूरा बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
2: सूरज कुमार ढाकसे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेशों के लिए श्रोताओ। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं कि उमंग एक शैक्षिक कार्यक्रम है,
2: इसलिए इसमें शिक्षा की बात तो होती ही है, लेकिन ये मनोरंजन से भी भरपूर होती है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के विकास की, और इस क्रम में हमने कल बात की थी मेसोपोटामिया की सभ्यता की मिट्टी की पटियाओं की, जिन्हें हम आज की पुस्तकों का आदि रूप कह सकते हैं।
3: जी, समय का पहिया चलता गया और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लगभग 400 वर्षों के बाद एक और महान सभ्यता विकसित हुई। लेकिन वो कौन सी सभ्यता थी, ये विमलेश जी आपको बताना होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ।
2: जी,
3: वो सभ्यता उस नदी के किनारे विकसित हुई थी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है।
2: अजीत जी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहते हैं। कहीं ये मिस्र की सभ्यता तो नहीं?
3: बेशक, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब करते हैं बात पुस्तकों की और जानते हैं प्राचीन मिस्र में लेखन कला का विकास कैसे हुआ और वे कैसे लिखते थे।
2: प्राचीन मिस्र के लोगों ने नील नदी के तट पर प्रचुरता से मिलने वाले पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई।
3: पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई, लेकिन कैसे?
2: ये एक अद्भुत तकनीक थी। पहले वे पेपिरस के पौधों की कटाई करते थे, फिर इसकी मोटी लेकिन मुलायम डंडियों का छिलका हटाकर उन्हें पतली पतली पट्टियों में काटा जाता था, फिर पट्टियों को पहले एक दिशा में बिछा दिया जाता था।
3: जी, और उसके बाद दूसरी परत को उन पर आड़ा बिछाया जाता था, फिर उन्हें भारी समतल पत्थरों या लकड़ी की भारी तख्तियों से दबाया जाता था।
2: इसमें एक मजेदार बात यह है कि पेपिरस के पौधों का प्राकृतिक रस ही गोंद का काम करता था, जिससे वे आपस में चिपक जाती थी। उन्हें सुखाने पर वे कागज की तरह बन जाती थी, फिर उन पर लिखा जाता था।
3: लेकिन वो लिखते कैसे थे?
2: लिखने के लिए वे सरकंडे का उपयोग करते थे। पेपिरस के द्वारा मिस्रवासियों ने स्क्रॉल्स भी बनाए जिनमें राजाज्ञाएं लिखी होती थीं। इसी स्क्रॉल शब्द का प्रयोग आज मोबाइल या कंप्यूटर के पर्दे को ऊपर नीचे करने में इस्तेमाल होता है।
3: उनका स्याही बनाने का तरीका भी बहुत दिलचस्प था श्रोताओं। वे घास और वनस्पतियों को जलाकर कालीख बनाते थे
2: जी,
3: और उसमें गोंद मिलाते थे तो बन जाती थी काली स्याही
2: जी।
3: वे लाल गेरू से लाल स्याही बनाते थे, ये प्राकृतिक लाल रंग की बेहद चिकनी मिट्टी होती है। बता दें श्रोताओं कि महत्वपूर्ण बातों को वे लाल रंग से लिखते थे और शेष बातों को काले रंग से, इससे दस्तावेज के महत्व का पता चलता था।
2: यही परंपरा आज भी चली आ रही है। पता है श्रोताओं, पेपिरस इतना उपयोगी था कि लगभग 2000 वर्षों तक मिस्र से भूमध्य सागर के आसपास के कई देशों को निर्यात करता था। इसी पेपिरस से पेपर शब्द निकला, और पेपर को पेपिरस का वंशज कहा जा सकता है। पेपिरस के आने से पुस्तकों का वजन बहुत हल्का हो गया, जिससे उन्हें आसानी से लाया ले जाया जा सकता था।
3: विमलेश जी, तो ये बात हुई पेपिरस की
2: जी।
3: अभी जानना चाहिए कि मिस्र के लोगों ने पेपिरस पर क्या लिखा। क्या इससे मिस्र की सभ्यता के बारे में कोई जानकारी मिलती है?
2: जी अजीत जी, ये जानना बड़ा रोचक होगा। मिस्रवासियों ने पेपिरस पर धार्मिक ग्रंथ लिखे, पेपिरस पर राजाओं के वृत्तांत भी लिखे मिलते हैं,
3: और फैरो राजाओं के आदेश भी। बता दें कि फैरो मिस्र के राजा हुआ करते थे
2: जी।
3: पेपिरस पर प्राचीन मिस्र की चिकित्सा विधियां भी लिखी मिलती हैं, गणित साहित्य और कथाएं भी मिलती हैं। एक बात और साझा करना चाहता हूँ विमलेश जी, और वो ये कि प्राचीन मिस्र में लेखक बहुत सम्मानित समझे जाते थे और उन पर राजाओं की विशेष कृपा होती थी।
2: तो श्रोताओं, जिन दिनों में विश्व के अनेक देश पत्थरों और मिट्टियों की तख्तियों पर लिख रहे थे, उस समय मिस्र के लेखक पेपिरस के हल्के और लचीले पन्नों पर विज्ञान, चिकित्सा, व्यापार और साहित्य का विशाल ज्ञान संजो रहे थे।
3: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी किताबों के उद्भव और विकास की, लेकिन अभी और भी मंजिलें हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड में।
2: जी,
3: अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है, पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
3: आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं
2: और हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता।
3: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
2: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में बताते हुए प्रकाश डाला गया है कि मानसून की परिभाषा क्या है और वर्षा लाने में इसकी क्या भूमिका है।
3: धरती का हरियाला उत्सव।
4: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर

0: गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
1: नाना जी।
2: अरे ऋतिक, रश्मि भाई, आओ आओ आओ, कैसी रही चौपाल?
1: ठीक रही नाना जी। आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि
3: बहुत गर्मी पड़ रही है। कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है। नाना जी, इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
1: हाँ हाँ बताइए ना। माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
2: बेटा, मैं भूगोल पढ़ाता था।
3: ये लो, नानी जी भी आ गई।
4: अरे यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
2: अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
4: हाँ वो तो है।
1: नानी, हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
4: अच्छा तो ये बात है, तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
2: अच्छा चलो भाई चलो, मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
1: कहाँ से आया है
2: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
1: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
2: बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई। मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
3: पूरी दुनिया में नहीं होता तो फिर?
2: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
1: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
2: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है। ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
1: नाना जी, मानसूनी पवन कैसे बनती है?
2: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है, वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
1: अच्छा नाना जी।
2: चूँकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
1: अच्छा।
2: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
1: अब समझ में आया। नाना जी, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
2: देखो भाई, यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं, कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
4: और बच्चों, भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
2: हाँ।
4: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है।
1: ओ।
4: हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
2: बिल्कुल।
4: और हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
1: अच्छा।
4: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
1: अच्छी अर्थव्यवस्था।
4: हाँ।
2: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है

0: भाषा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला, साहित्य, त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
1: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है। अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रानंदन पंत, निराला और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
0: भाई, इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए
3: जी नाना जी। और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
4: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव। और आइए अब सुनते हैं हमारा अंतिम कार्यक्रम, शीर्षक है स्वामी विवेकानंद।
6: इस कार्यक्रम में भारत के महान संत, तपस्वी, विचारक और चिंतक स्वामी विवेकानंद के जीवन और भारतीय दर्शन को पश्चिमी देशों में परिचित कराने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सविस्तार उल्लेख किया गया है।

0: स्वामी विवेकानंद भारत के महान संतों में से एक हैं। वे भारतीय संस्कृति के गौरवशाली प्रतीक एवं महान व्याख्याता माने जाते हैं। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की और भारतीय परंपराओं को गौरवान्वित किया। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर का कहना है, यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। नरेंद्रनाथ का पालन पोषण खुशहाली में हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में बड़े वकील थे। वे नए विचारों के व्यक्ति थे। नरेंद्रनाथ की माताजी पुराने विचारों की धार्मिक महिला थीं। उनका अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत होता। वे नरेंद्रनाथ को रामायण और महाभारत के किस्से कहानियां सुनातीं। अतः नरेंद्रनाथ को अपने माता पिता से नए और पुराने विचारों का समन्वय मिला। नरेंद्र बचपन से ही बहुत नटखट थे। उनकी शरारतों के कारण सभी तंग रहते। एक दिन की बात है, नरेंद्र कोई शरारत करके भाग खड़े हुए। उनकी बहन उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। नरेंद्र ने तुरंत नाली में उतरकर अपने शरीर पर कीचड़ लपेट ली और बोले, अब पकड़ो मुझे। कीचड़ में लिपटे भाई को देखकर बहन अपना समूह लेकर लौट गई। नरेंद्र थे तो नटखट स्वभाव के, परंतु उनके हृदय में धर्म के प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव था। वे अपनी माँ के पास घंटों बैठे पुराणों की कथा बड़े चाव से सुनते और उन्हें याद रखते। एक दिन की बात है, नरेंद्र उस समय 8 वर्ष के थे। अपने कुछ साथियों के साथ शहर में लगा मेला देखने गए। वहां उन्होंने बहुत आकर्षक वस्तुएं देखी। उन्होंने उत्सुकता से मेले की सभी दुकानें देखी। अंत में उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग खरीदने का निश्चय किया। शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्रनाथ के पास केवल 4 आने पैसे बचे। वे अभी सोच ही रहे थे कि इन पैसों का क्या खरीदा जाए कि तभी
1: अरे, ये तो किसी के रोने की आवाज है। कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है? देखूं तो ये आवाज कहां से आ रही है? ओ, ये तो एक बच्चा है। पता नहीं क्यों रो रहा है। चलकर इसी से पूछता हूँ, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो?
2: मेरा नाम राजू है। मैं यहाँ मेला देखने आया था। मुझे माँ ने मेले में खर्चने के लिए 4 आने पैसे दिए थे। पता नहीं वो पैसे कहाँ खो गए। जब माँ को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मारेगी। मैं कहाँ से लाऊं वो पैसे?
1: चुप हो जाओ, रो नहीं, रो नहीं, मैं तुम्हें 4 आने पैसे देता हूँ। ये लो 4 आने, इन्हें अब संभाल कर अपने पास रख लो। अब माँ नहीं मारेगी तुम्हें। जाओ, खुशी खुशी घर जाओ।
2: अच्छा।
0: और इस तरह नरेंद्र ने अपने बचे हुए पैसे उस बच्चे को दे दिए। बच्चा बहुत खुश हुआ। मेले से जुड़ी एक और घटना है जिससे हमें पता चलता है कि नरेंद्रनाथ दीन दुखियों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझते हैं। मेले से खरीदा शिवलिंग हाथ में लिए नरेंद्रनाथ घर की ओर चल दिए। वे अभी मेले से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक छोटा बालक दौड़ता हुआ सड़क की ओर आ रहा है। यदि उसे तुरंत बचाया नहीं गया तो गाड़ी के नीचे आ सकता है। नरेंद्र ने तुरंत हाथ में पकड़ी हुई शिवलिंग फेंकी और दौड़कर उस बच्चे को उठा लिया। तभी पास खड़े एक वृद्ध ने उससे कहा,
3: बेटा तुम्हारा शिवलिंग तो टूट गया, अब तुम किसकी पूजा करोगे?
1: महाशय कोई बात नहीं
3: है?
1: मुझे खुशी है कि मैंने इस बालक की जान बचाई। यही मेरा कर्तव्य है, मेरी सबसे बड़ी पूजा है।
0: नरेंद्र की माताजी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया और कहा,
4: बेटे जीवन में सदैव ऐसे ही काम करना।
1: परंतु माँ एक अपराध हो गया।
4: क्या?
1: मुझसे शिवलिंग टूट गया, ये तो शिव जी का अपमान हुआ ना।
4: बेटा नरेंद्र तुमने ऐसा जानबूझकर तो किया नहीं।
1: नहीं।
4: और फिर मनुष्य और मनुष्यता की रक्षा ही सच्ची शिव भक्ति है। तुमने जो किया मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक किया।
1: माँ
0: बाल्यकाल से ही नरेंद्रनाथ में महापुरुष के लक्षण स्पष्ट रूप से झलकने लगे। एक दिन की बात है, उनकी कक्षा में प्रधानाचार्य धर्म और दर्शन पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने देखा नरेंद्रनाथ अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। उन्होंने पूछा,
5: नरेंद्रनाथ तुम सो रहे हो?
6: जी नहीं प्रधानाचार्य जी, मैं कुछ सोच रहा था।
5: क्या सोच रहे हो तुम?
6: क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे?
5: हाँ बोलो नरेंद्र, क्या प्रश्न है तुम्हारा?
6: श्रीमान जी, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं?
5: नरेंद्रनाथ तुमने बहुत कठिन प्रश्न पूछा है। तुम इस प्रश्न के उत्तर की खोज में गंभीर भी हो, निराश ना हो। मैं तुम्हें ऐसे संत का नाम बताता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सही सही दे सकते हैं। यदि वास्तव में ईश्वर के दर्शन करना और सत्य की प्राप्ति ही तुम्हारा उद्देश्य है तो तुम दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास चले जाओ, वे ही तुम्हें ईश्वर के विषय में बता सकते हैं।
0: नरेंद्रनाथ को प्रधानाचार्य की बात जच गई और वे कुछ ही दिनों बाद दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर नरेंद्रनाथ ने अपना वही प्रश्न पूछा।
6: प्रणाम महात्मन।
7: जीते रहो पुत्र।
6: महात्मन मैं आपसे अपने एक प्रश्न का उत्तर जानने आया हूं, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे?
0: जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को देखा तो वे उन्हें एकटक देखते ही रहे, जैसे वे बहुत पहले से ही एक दूसरे से परिचित हों। फिर वे नरेंद्र से बोले,
7: पूछो पुत्र, तुम क्या पूछना चाहते हो?
6: क्या आपने ईश्वर को देखा है?
7: हाँ पुत्र, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूं, तुमसे बात ही कर रहा हूं। यदि कोई सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करे तो वो अवश्य भगवान को प्रत्यक्ष पा सकेगा। यदि तुम मेरे कहे अनुसार काम करो तो तुम्हें भी भगवान के दर्शन करा सकता हूं।
0: श्री रामकृष्ण परमहंस की बातों का नरेंद्रनाथ पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। रामकृष्ण परमहंस को तो पहली दृष्टि में ही नरेंद्र के प्रति अपार स्नेह उत्पन्न हो गया और एक समय वो भी आया जब नरेंद्र श्री रामकृष्ण परमहंस के सच्चे शिष्य बन गए। उन्होंने उनके विचारों को अपनाया। श्री रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि यानी उनके निधन के बाद नरेंद्र ही उनके उत्तराधिकारी बने। वे केवल नाम के ही उत्तराधिकारी नहीं बने, उनके काम के भी बने। अपने गुरु के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की, गुरु के विचारों का प्रसार किया। देश के दीन दुखियों के लिए शिक्षा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाईं। अब वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने देश के अनेक भागों का भ्रमण किया, लोगों के असहनीय दुख दर्द को अपनी आंखों से देखा और उन्हें मिटाने का भरसक प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक पत्र में लिखा था,
6: मुझे ईश्वर में विश्वास है, मुझे मनुष्य में विश्वास है, मुझे दीन दुखियों की सहायता में विश्वास है और यही मेरा कर्तव्य भी है।
0: इसी दृढ़ निश्चय को लेकर उन्होंने दक्षिण भारत में कन्याकुमारी नामक स्थान पर समुद्र के बीच स्थित एक शिला पर 2 दिन और 2 रात अटूट समाधि लगाई।

0: इसी समाधि के दौरान उनकी आंखों के सामने अतीत और वर्तमान भारत के चित्र उभर आए। जिस शिला पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई वो आज विवेकानंद स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है। आज लाखों लोग कन्याकुमारी स्थित उस विवेकानंद स्मारक के दर्शन करने आते हैं। जन कल्याण की भावना विवेकानंद के रोम रोम में समा चुकी थी। इसी भावना को लेकर उन्होंने देश में पैदल भ्रमण किया। वो जहां भी जाते उनका आदर सत्कार होता और लोग उनके शिष्य बन जाते। इसी बीच अमरीकी शहर शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्वामी जी ने इस सम्मेलन में जाने का फैसला किया। वे शिकागो पहुंचे। वहां उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस शिकागो सम्मेलन में उन्हें अपने विचार प्रकट करने का विधिवत निमंत्रण नहीं मिला था। फिर भी अपने एक मित्र की सहायता से उन्हें सम्मेलन में केवल 5 मिनट बोलने का समय दिया गया, जिसमें वे अपने विचारों को सभा के सामने रख सकते थे। स्वामी जी ने अपने भाषण में कहा,
1: मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों, मुझे अपने देश भारत पर, अपने देश की संस्कृति पर और अपने धर्म पर गर्व है। ये वही देश है जिसने संसार के पीड़ितों की, दुखियों की रक्षा की है। सभी भारतवासियों को सर्वधर्म संभाव की शिक्षा दी है। मुझे ऐसे राष्ट्र का नागरिक होने का गौरव प्राप्त है जिसने विश्व के सब धर्मों और राष्ट्रों के शरणार्थियों को शरण दी है। इस धरती पर समय समय पर अत्याचार होते रहे हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग पीड़ित किए गए हैं। धर्म का अर्थ है अशांति और द्वेष को पूरी तरह दूर करना। हमारा कर्तव्य है कि अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए दूसरे धर्मों को नीचा न कहें। सभी धर्म एक समान है, सभी धर्मों का आदर करना हमारा कर्तव्य है।
0: स्वामी विवेकानंद का ये भाषण सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट से भवन गूंज उठा। उनके विचारों की सभी ने प्रशंसा की। इसके बाद पश्चिमी देशों में स्वामी जी के भाषणों का तांता लग गया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके भाषणों की चर्चा सारे विश्व में होने लगी। उन्होंने सुसंस्कृत भारत की जो छवि विश्व के सामने प्रस्तुत की उससे भारतवासियों के मस्तक गर्व से उठ गए। और जब वे विदेश से भारत लौटे तो भारत की जनता ने उनका भावभीना स्वागत किया। स्वामी विवेकानंद को भारतीय होने का गर्व था। वे चाहते थे कि उनके देशवासी भी ऐसे ही हों, देश के लिए जिएं, देश के लिए मरें। स्वामी जी में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनका सारा प्रेम भारत के प्रति था और भारत की सेवा में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी उनके विचार उन्हें अमर बनाए हुए हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को,
3: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
3: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। रात्रि के 8 बज रहे हैं श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं लोक गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो गोरबंद।

0: भाई साहब नमस्कार।
1: नमस्कार साहब, पगे लागो।
0: अरे जीवदारों जीवदारों काका जी, मैं काका जी तंग घना करो कोई बात है भाई साहब,
1: स्कूल के टाइम पर जाओ कोनी काका जी घरों बीर वनी जन के आज तने आंबा दी रहूं जाऊं ता तू मत बैठ जा मैं खाबो के जे मैं आते ही करो
0: खाली बातों रही बड़ो करो मन था अरे मैं क्यों खर्चो करो भाई जे मैं थोड़ा रखो यो फूलियो है मु फूलियो है
1: सही है सा।
0: और आप कार्यक्रम तो जोरदार लागे भाई साहब।
1: अरे बढ़िया सा, आप सबरी पसंद बढ़िया है।
0: हां वो कार्यक्रम होनो नहीं जने मार्ग में बैठा मिनट भी रुके बोली गया और बढ़िया लागे काका जी री ने आप री ने।
1: अरे अपनी मारवाड़ी भाषा मीठी है जो को बारे का लोग ही फोन करे राजी हुए।
0: हां बिल्कुल सा, बारे पसंद करे मारवाड़ी के मारवाड़ी बोले हमें अठारह लोग डरता कम बोले पड़े बोले तो बनो हम जी हो रो भेजा तो क्या मारवाड़ी थे बोलो
1: सही है सा, बोली मत एक दू हूं तो।
0: हाँ सा बोली मत हो ऐसा हमारे तो वार दुबे भाषण मेरी।
1: हाँ।
0: के मैं थोने पूछू काला बादलियों थे कदा सो मारे पौवना सगड़ा करे उड़ी थारी थे कद बरसो ला मारे आंगना
1: मोरिया
0: करिया बोले कोयल पपया करे पुकार खिजड़ियों में बिल के हिणिया कहे थे कदा सो मारे द्वार।
1: हाँ अबे तो आना ही पड़ी मैं उन्हें आज धाने कहीं हुनावा।
0: ओ भाई साहब हुना तो गाजो गाजो जेट असाड कवर तेजा रे
1: वसावा काका आयो
2: आ बीजा
1: आज कैसे कोई जान दो
2: ओइया मारी बीजी।

0: Ramjai, Ram Ramjai, Abronyam, video koki nirgam video.
1: अरे काकू मैं बोलूँ गांव चैनपुरा तहसील धोरीमना जिला बालोतरा हूँ जगदीश बोलूँ काकू।
0: आओ हो जगदीश जी।
1: हाँ जी।
0: ए बालोतरा में कोई कर थे
1: बस बैठा आंटी बाजे।
0: ओंजा बाजे तो मैं पानी हुए को नहीं गई।
1: मैं हो गयो कल हो गयो बाजरी जोरदार बढ़िया है और आंटी बाजे दो तीन ने जोरदार और आप आकाशवाणी नागौर कार्यक्रम रोजाना सुना।
0: अरे वाह वाह राम जी करी राम जी माने ने चोरा को और भेजो गांव में परिवार में सब ज्ञान नहीं हो
1: सब ठीक है आप की करो ठीक हो।
0: ए रेडी रेडी को थारो और बदो थाने भोगाम के शोक लाग्यो।
1: अरे प्रोग्राम री तो जितनी तारीफ करा इतनी कम है काकू।
0: ए जो की बात ऐसा हुंदा रियो ए शबा ने काके रामा श्यामा कहियो।
1: बिल्कुल सा हेंगो ने देवा जोर
0: मारी बोती आवड़ी कोई ने बात करो ने समझो ने पड़े में कमजोर बिड़े हो
1: कराओ बात।
0: ए लूणी भाई हो।
2: हां काका।
0: ए बोला तू फोन है भाई जी को कहूंता भाई से बात करना चाहता हूं।
1: अरे की करो भाई जी
2: तेरी रेटा थे सुनाओ की करो।
1: बस बढ़िया हो हमने गांव है चैनपुरा तहसील धोरीमना जिला है बालोतरा।
2: अच्छा आप बटने काई फेमस है हो।
1: हमारे तो फेमस बालोतरा में तो घणे फेमस है अबार तो रिफाइनरी काम चालू हो जो है।
2: अच्छा
1: और आप प्रोग्राम रोजाना सुनो।
2: हाँ तो यहाँ बताओ के बिल्ली ने मारवाड़ी में काई केवे
1: मिन्नी मिन्नी
2: मिनकी आज कई उड़ाला
1: बढ़िया कोई चंपम में तेरो गीत सुना दो बढ़िया जोरदार।
0: आ बेटा
2: बाजी के बालोतरा तो चंपम में तेरो जान दो।
0: ओया मारी बेटी।

0: हेलो काका, दोग दू प्रणाम करू।
1: ए जीव तारो राम जी थानी लंबी उम्र करे, आपरो नाम बीजो काके नी गांव भिजो।
0: गाँव है मारो, गाँव रिया बड़ी और नाम है नौरत राम सुवासिया।
1: ओहो नौरत जी, बचे रिया बड़ी में खोई करो।
0: रिया बड़ी में ही आपने बेज और मोटरसाइकिल का सीटकोन इटकोन बनावा, ट्रैक्टर का हुड बनावा।
1: अरे वाह शिवा, कोमड़ो के शोक चालियो।
0: काम ताकि दयो बढ़िया चाल रही है। देखो
1: ए रोम जी के दिया बूढ़े ने मोहन सम्मान दियो, और बेटो गांव में परिवार में सब क्या दियो।
0: सब ठीक है, पर काका जी बरसात कोनी, मैं कोनी अबकाले।
1: अरे वो ही राम जी गरी, राम जी मान ने जोरा को थोड़ो खंच खायो है।
0: हाँ हो जाओ तो बढ़िया, वो बात रह जाएगा, नहीं तो मामलो मोड़ो है अबकाले।
1: अरे नहीं नहीं राम जी गरी, टेंशन मत करो। ए भाइयो,
0: हाँ
1: ए मारी बोती आउड़ी थोड़ी इसको हम जाओ नियो।
0: हाँ
1: ए लूनी भाइयो,
2: कहीं को काका?
1: ए भाई जी को, नोरत जी को, रिया बड़ी फोन है, बोलो। हेलो
2: हेलो,
0: हेलो, राम राम सा।
2: राम राम साय, राम राम साय भाई जी हो।
0: हाँ
2: हर काम है टबरी साथ देवे कहीं हो।
0: हाँ काम में देवे टापर देवे।
2: अरे घर वाला इच्छा को चूर मचूर पर टिप्पण भेजे।
0: हाँ चूर मोर देवे, पर घी कौन गा लेने में।
2: तो घी भी ना के को चूर मावे हो।
0: हमने तेल में खा लेवा हमने कही।
2: और प्रोग्राम केड़ो लगे?
0: प्रोग्राम घणो ही छोको लगे, रोज डेली होना। फोन कौन लागे आज? घणो दोरो फोन लगी है।
2: वाह आज लागियो तो आज किसो गीत सुनोला?
0: बाबा रामदेव जी को भजन सुनाए, जो भाई बरसात भी हो जाए भजन के साथ साथ।

0: राम राम काका जी।
1: ए राम राम शाही आपरो न्याऊ भिजो खोकी नीर खाऊ भिजो।
0: ढींगराम बोला नरसिंहराम सोलन के।
1: ओ नरसी जी ढींगरा में कोई करो।
0: अरे साहब मुंगर निनान करा काका।
1: अरे वही हवा मूंगी जाइए गोडे गोडे आइए गई हो।
0: हाँ गोडे गोडे आएगा बरसात कौन काका।
1: ए राम जी करी राम जी मन ने जोरा को और भजो प्रोग्राम के शुभ लागे थोनी हो।
0: प्रोग्राम घने हाथों लागे काका अपन फोन दो रो कल दो लागो।
1: ए सही के उठा हो तो काका एक गाड़ी फेंकता उसका जुबा भी न हो।
0: हाँ क्या होता
1: ए ऊंट की बेटे के हिरण की चाल। बताओ कौन है वो पहलवान।
0: अब काका हाथ समझ में कोई नहीं।
1: ए लुनके
2: नहीं काका।
1: एक तुम्हारे काका जीत गया है हम क्या कहूं चाहिए तुमको।
2: अरे काका भाई जी निनान करे जन थोड़ो बार एक समझ में आई कौन है हूँ बताऊँ भाई जी का नहीं रहूंगा।
1: आज भाई जी कहीं तो भाई जी को बोले लो।
2: हेलो
0: हेलो भाई राम राम।
2: राम राम साहब भाई जी कितनी पांता साढ़ लो दिन का।
0: पांता आपको दिन साढ़ा लोनी भाई हाथ बजे ढोका लगा तीन बजे तक साढ़ा
2: कितना बिगम कर लियो
0: ना होगो दस बार बिगम में।
2: अरे वाह साहब घन करो काट ना क्यों।
0: हाँ बरसात कौन है।
2: हाँ बरसात हो जी आपको क्यों काके एक आड़ी पूछी नहीं हो।
0: हाँ भाई कौन है वो
2: क्या ऊंट की बैठक हिरण की चाल ऐसा कौन सा जानवर है जिसके पूंछ ना बाढ़।
0: हाँ
2: वो तो मेंढी किया होता है डेडरिया।
0: हाँ
2: ठीक
0: ठीक है रामदास जी भजन सुना जियो
2: काका।
1: हाँ बेटा
2: कुछ जान दो
1: मैं अगरबत्ती खाऊं जो तुम्हारी बेटा।

0: ताको जी राम राम बगल
1: ए राम राम जाई आपरो न्याव भिजो कोकी नीर गांव भिजो
0: ताको जी काकड़ो बोलो कने राल नाइक
1: ओ हो गने जी काकड़ा में कोई करो
0: कोई कना काको जी निना न रे करान मो प्ले में दवा
1: आज ओ हो की मे पानी हुयो कयो
0: हां मे पानी घणो कलो यो दो चार दिन ये कोन हो तो है के चबाड़े कर ले
1: अरे वाह शवा ए और गांव में परिवार में हगले क्या आनी हो
0: सब ठीक है काको जी थारी दिया है
1: ए रोम जी की दिया बूजे ने मोन जमान दियो भाईओ मुपड़िया वे जी लून गिर भेजी जो
0: ओ भेजा काकी काई करे काको जी
1: ए काकी छोरे काकी ने हका करी और काई करी लून के
2: काई को काका
1: ए भाई जी पूछे तुम्हारी काकी काई कहती है तो तुम करो हेलो
2: हेलो
0: सुन भाई राम राम
2: राम राम सर राम राम सर भाई जी ओ काकी तो खेत में निनान करने जावे जन टपुड़ी पे हका ही करे और काई करे हो ए काको तो ए बैठे बैठे बता रहे बेलू करवे आऊं की काम हुए को नहीं आके तो काम दूजा ने करना पड़े
0: हां तो करना ही पड़ी तो
2: नहीं तो काकाड़ो ही करे गाय भैंसिया को ही करे बस खेत में निनान कर रहे हो जन थके तो करी ना
0: काकाओ का मैं करता
2: चौमासे चौमासे थे पार गाल दो पसे तो मैं बोले पास लिया हुआ
0: चौमास चौमास मैं गाल दा पार
2: वासा वाजन कोई है करो तो भरियो दिनवाद था नो आज कहीं होनो ला
0: आज होना गोगे जी महाराज को भजन
2: काका आयो
1: आ
2: भी जाओ
1: मैं गोगो जी महाराज की गरीबी दिखाऊं तो भजन जाऊं दे
2: ओए लो

0: शिव की भजन को प्रोग्राम
1: हेलो गोरवन
0: ई प्रोग्राम में कोई भाई गीते भजन ये हो ना जाऊता है तो तुम कहीं जेऊता हो
1: काका दीतवार के दिन 12 बजे ले प्रार 1 बजे तक नगर आकाशवाणी फोन करना है
0: आई नहीं मेरे बेटे हमारी बेटी
1: नंबर है मिंडी 158 दुओ दुओ चको मिंडी 1 6 8
0: अरे वो हमारी बेटा ए डावड़ी ये
1: काई को काका
0: ही के भैया का फोन है सुमे की कोमी में ले नहीं सी गया तो उनका पाना मानचो बेटा
1: हां बंचू काका बार
0: बार कई हजार पांच
1: हाँ काका देखो जगदीश पुनिया इंदास हूँ पुकराज भाई सेन है गोगड़ा हरसुख राम है थिरोद हूँ मोहिनी भाई सत्यरण हूँ यकूब अली काका मेन सर हूँ रचना भाई है उल्टा सर
0: हूँ हाथ जोड़ के द्वारका फोन गिड़गिड़ी जो
2: इस कार्यक्रम में काका की भूमिका में थी सुभाष कंडारी और लोणी की भूमिका में थी भीकी देवी चौधरी
0: ओ भाई ओ।
1: काइको काका
0: अब बताओ आज के भोगा में तकनीकी है वो किसका है
1: एह दुर्गाराम बम्बू
0: आज के प्रोग्राम के प्रस्तुत गीता
1: अशोक कुमार गोयल
0: ये तुम्हारे को हिकिंदी पिलाएंगे देख बनाते ही
1: काका मन 2 गिलास पुआ दिया
0: आयो इसको 2 गिलास वो देंगे जब तुम्हारा के देना के पीऊंगी ए भाई
1: हाँ
0: अब लगो हंदेश
1: ए स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो
0: हेलो गोरमन
1: होन कही रहो
0: तब आप रे गो के नेर होगे
1: लून की ने दिरो सीकर करते हैं
0: रोम रोम श्याई।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो गोरबंद। 8:45 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अमेरिका के एटलांटा में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
2: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
2: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कम्प्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
1: मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
2: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
1: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी है।
2: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इम्पोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है। और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। एक रिपोर्ट।
3: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के पहले ही दिन भारत से ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों में से एक है। भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा,
4: आज 15 जुलाई को यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम उस समझौते के लागू होने का उत्सव मना रहे हैं जिससे ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार करना तेज, सस्ता और आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों ने बहुत मेहनत की है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को जाता है जिन्होंने शानदार काम किया है। मेरी टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। यह दोनों पक्षों के लिए बेहतरीन समझौता है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक
3: हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तरुण बजाज ने आकाशवाणी समाचार से कहा,
5: ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये सच में बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे जो है हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारे प्रोसेस फूड सेक्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है और हमें उम्मीद है कि ये एग्रीमेंट से हमारा ट्रेड बहुत अधिक बढ़ने वाला है।
3: इस समझौते से ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्टार्टअप, कौशल विकास और कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के समर्थन का आह्वान किया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की ये जिम्मेदारी है कि वे CSR के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास में निवेश करके राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने।
6: जो CSR है हमारी इसी भाव का प्रतीक है। एक तरफ हमारी जवाबदारी का एहसास है, क्योंकि हम जो कुछ अपनी कंपनी हो, अपना व्यवसाय हो, अपना उद्योग हो, हम जो अर्जित करते हैं वो अकेले अपने दम पे अर्जित नहीं करते, उसमें सरकार का, समाज का बड़ा योगदान होता है। ये धरती भगवान ने सबके लिए बनाई, ये धरती, ये खनिज, ये संसाधन, ये पानी, ये हवा सबकी है, लेकिन सारे संसाधन सबके पास नहीं है। तो जिनके पास है वो उससे धन कमाए, लेकिन उस धन का एक हिस्सा वो समाज के हित में समर्पित कर दें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में यात्रियों की सुविधा में सुधार और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने के लिए 5,740 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 1 अक्टूबर के बजाय 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी आनंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त तक जारी रहेगी। पहले इस चरण को 24 जुलाई तक पूरा किया जाना था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का गणना चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रारूप निर्वाचक नामावली 21 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में कहा कि गणना चरण 15 जून से 14 जुलाई तक संचालित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने के लिए कहा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है और वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। भारत क्रिप्टो को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं देता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी है। अमरीका ने आज हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया है कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देश भर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातेमेह मोहजारियानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। बंदी फिर लागू होने के साथ ही अमरीका और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच कई दिनों से जारी हमलों के बाद अंतरिम शांति समझौता खत्म कर दिया गया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
7: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 130 अंक यानी 0.2% बढ़कर 77,185 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक यानी 0.1% बढ़कर 24,079 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 6 पैसे कमजोर होकर 96.26 के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। और एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं आकाशवाणी नागौर के साथ। रात्रि के ठीक 9 बज रहे हैं श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। और आज इसमें आप सुनेंगे गैर फिल्मी गजलें। कार्यक्रम की आगाज हम कर रहे हैं अनूप जलोटा की गई इस गजल के साथ।

0: लीजिए श्रोताओं, आप सुनिए रूप कुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़ की गाई ये गजल।
1: भरे रहते हैं सारे फूल ही जिसके गरिमा में, वो क्या जाने कि टुकड़े हैं जिगर के मेरे दामा में। हवाए अब्र में क्या मीर हंसता बाग में वो था, गिरी पड़ती है बिजली आज कुछ सहने गुलिस्ता में।

आज की रात जरा प्यार से बातें कर ले। जी हाँ, आरजू बानो की गई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। रात्रि के 9:15 हो रहे हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं विविध भारती और सुनवाते हैं देश की सुरीली धड़कन।

0: अभी आपने आशा भोसले को फिल्म इजाजत में सुना, अब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को सुनिए पारसमणि फिल्म में। असद बवाली ने गीत की रचना की है और संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: वो जब याद आए।

अभी आपने जूली फिल्म में किशोर कुमार को सुना। राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में गीत की रचना की थी आनंद बख्शी ने। इसी के साथ ही कार्यक्रम आपके लिए यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आन मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था, एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। दोस्तों आज के फनकार हैं एक ऐसे सुरीले संगीतकार जिन्होंने नाजुक तरीन गाने दिए हैं, जिनका जादू आज तक कायम है और सदियों तक गाए जाएंगे उनके गीत।

संगीतकार मदन मोहन ने ढाई दशक के सिनेमा के करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। मदन मोहन की बनाई धुन आपकी नजरों ने गीत से संगीत सम्राट नौशाद इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस धुन के बदले संगीत का पूरा खजाना लुटाने को तैयार हो गए थे।

मदन मोहन कोहली का जन्म 25 जून 1924 को कुर्दिस्तान में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल वहां नौकरी करते थे। जिंदगी के शुरुआती 5 साल मदन मोहन ने वहीं बिताए। आगे चलकर उनका परिवार मुंबई आ गया और उनका बचपन बीता राज कपूर, नरगिस और सुरैया के साथ। दरअसल ये उनके पड़ोसी थे। आगे चलकर मदन मोहन ने आकाशवाणी लखनऊ में नौकरी कर ली, जहां उन्हें मिला साथ उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद बरकत अली खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी हस्तियों का।

मुंबई आने के बाद मदन मोहन श्याम सुंदर और सचिन देव बर्मन के सहायक बन गए। सबसे पहले मदन मोहन को निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल ने फिल्म आंखें में संगीत देने का मौका दिया। इसके बाद मदन मोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर और मदन मोहन का साथ लेकर आया कई अनमोल गाने। उन गानों की बात करने से पहले आपको ये बता दें कि फिल्म अदा से लता मंगेशकर और मदन मोहन ने साथ काम करना शुरू किया, जैसे अदालत।

मदन मोहन के संगीत की दुनिया लता जी तक ही नहीं सीमित रही, न ही मदन मोहन का संगीत सिर्फ संजीदा गानों तक सिमटा रहा, बल्कि उन्होंने मजाहिया गीतों का जादू भी बिखेरा, जैसे फिल्म चाचा जिंदाबाद का ये गाना।

0: उनके बेटे संजीव कोहली और समीर कोहली विविध भारती के स्टूडियो में आए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनके बेटे पैदा हुए, लेकिन मेरे हिसाब से कड़ी तो उनका संगीत है और कड़ी उनके सुनने वाले हैं और चाहने वाले हैं जिन्होंने आज तक उनको जिंदा रखा है। और ये जिंदा उनको ऐसा रखा है क्योंकि उनके गाने आज भी लोग इतने ही प्यार से सुनते हैं जैसे पहले सुनते थे। मदन जी जब गुजरे, हमारे पिताजी, मैं मदन जी ही कहूंगा क्योंकि इट बी इजी फॉर देम, जब वो गुजरे मैं 18 साल का था, समीर शायद 13-14 के थे, तो हमारी यादें जो बचपन की जुड़ी हैं वो काफी याद हैं, लेकिन कुछ धुंधलाई भी हैं। ज्यादातर हमने उनके जाने के बाद सुनने वालों के तौर पे उनको जाना। मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैंने म्यूजिक कंपनी में भी काम किया और कई संगीतकारों के साथ मिल के काम किया, कई एल्बम्स, कई लोगों का म्यूजिक बड़े मतलब चाह से सुना समझा। और ये फिर इल्म हुआ कि मदन मोहन जी का एक जो स्थान था वो कुछ अलग था। जितनी इज्जत लोगों ने उनको दी, जितना प्यार सुनने वालों ने और उनके गायकों ने, बाकी संगीतकारों ने जो उनको इज्जत बख्शी है, जिससे हमें इज्जत मिलती है कि मदन जी का संगीत इतने सालों बाद आज भी लोगों को पसंद है। 25 साल उन्होंने म्यूजिक दिया, उनका करियर 25 साल का था, जल्दी गुजर गए 51 की एज पे। हमेशा उन्हें लगता था कि जितना सक्सेस उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हमें नहीं लगता है, लेकिन उन्हें जरूर लगा। और इसकी वजह भी है, सक्सेस का जो बैरोमीटर है वो था कि बड़े बैनर हों, बड़ी फिल्में हों जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हों, दिलीप साहब हों, राज कपूर हों, देवानंद हों। फिल्म फेयर अवार्ड मिलना बहुत जरूरी था क्योंकि उस वक्त एक ही अवार्ड था, कि उनके जाने के बाद ये सब होता गया।
2: जी मेरी एक छोटी सी याद है, उस जमाने में मैं विविध भारती बहुत सुना करता था और मुझे अभी तक याद है, ये उस जमाने में टेलीविजन तो था नहीं, तो 7:05 पे आप लोगों का प्रोग्राम शनिवार को जयमाला बजता है, तो वो सुनने के लिए मैंने रेडियो करीब 7 ऑन किया और मैंने रेडियो में ये सुना न्यूज में कि दस्तक ने उस साल के सारे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स स्वीप कर लिए थे। संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर के लिए, रेहाना सुल्ताना साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, मजरू साहब को बेस्ट लिरिक्स के लिए, मदन जी को म्यूजिक के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैंने डैड को, म्यूजिक रूम घर के सामने था, मैंने फोन किया उन्हें, मैंने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस वक्त म्यूजिक सिटिंग में हूं। तो मैंने कहा नहीं, खबर बहुत अच्छी है, मैं आपसे आके मिलना चाहता हूं और खबर इतनी अच्छी कि मैं आपसे 1,000 रुपये मांगना चाहता हूं, इस खबर के लिए आप मुझे 1,000 रुपये दें। तो उन्हें कहा खबर अच्छी होगी तो मैं देखूंगा, नहीं तो तुम देखो तुम्हारी क्या हालत करता हूं, मैं बहुत बिजी हूं। तो मैं डरते डरते रोड क्रॉस करके मैं म्यूजिक रूम में गया और मैंने जब घंटी बजाई और उन्होंने कहा क्या है, तो मैं देखा कि कोने में रफी साहब बैठे हैं, राजेंद्र कृष्ण साहब बैठे थे वहां, उनकी किसी गाने की सिटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वो बड़े गुस्सा हो गए क्योंकि उन्होंने लगा कि मैं शायद उनके साथ मजाक कर रहा हूं। और उसी वक्त दरवाजे की घंटी फिर से बजी और उनके बड़े करीबी मित्र मरहूम जयदेव साहब दरवाजे पे खड़े थे, उनके हाथ में एक शैंपेन की बॉटल थी और उन्होंने कहा मदन मैंने भी अभी सुना है कि तुम्हें दस्तक के लिए अवार्ड मिला है और मैं तुम्हें मुबारकबाद।
1: इसकी एक वजह थी, वजह यह थी कि उन्हें तब तक कोई बड़ा अवार्ड मिला ही नहीं था और दस्तक 1970 में मतलब 20 साल का करियर हो चुका था, तो थोड़ा वो निराश भी थे कि मुझे अवार्ड कभी मिलता ही नहीं। और फिर वो दिल्ली जाने से उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। तो संजीव कुमार जी जिनको भी उस फिल्म के लिए एक्टर का अवार्ड मिला था वो हमारे घर आए और उन्होंने उनको मनाया कि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर संजीव कुमार जी ने वही किस्म के दो सूट सिलवाए और मदन जी और संजीव कुमार ने वही दो सूट बोटाई के साथ एकदम सेम सूट्स पहन के दोनों साथ में उस फंक्शन के लिए गए।

लेकिन मैं जैसे कह रहा था, इसकी वजह ये थी कि पहले जब फिल्म फेयर अवार्ड, जो मेन अवार्ड उस वक्त कमर्शियल अवार्ड, पॉपुलर अवार्ड होता था जो वोट से होता था, उन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला अनपढ़ 1962 में। उससे मुझे जुड़ी एक बात याद आ रही है कि हम छोटे थे, मैं 6 साल का था, तो मदन जी गाड़ी खुद चलाते थे, उनकी बहुत बड़ी गाड़ी होती थी जो पहचानी जाती थी कि ये मदन मोहन की गाड़ी है, क्योंकि बहुत स्पेशल रंग था गाड़ी का। तो वो जब हमें ड्राइव पे ले जा रहे थे, हम वर्ली सी फेस पे जा रहे थे और हम बच्चे थे, मैं जैसे काम छोटा था, तो हम बोलते थे डैड तेज चलाओ तेज चलाओ, क्योंकि वर्ली सी फेस उस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होता था। तो वो तेज चलाने लगे, आस्ते आस्ते पुलिस की सायरन्स की आवाज़ पीछे से आने लग गई। हम तो बच्चे थे, समझ नहीं आया कुछ, इतना घबरा गए कि पीछे पुलिस आ गई है। मेरी माता जी जो साथ में बैठी थी, भाई रोको गाड़ी रोको, पुलिस आ रही है, क्या तुम इतने तेज से क्यों चला रहे हो। गाड़ी रोकी और पुलिस के इंस्पेक्टर थे, इनफैक्ट वो उस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर थे बहुत, और वो उतरे और उन्होंने कहा शीशा नीचे कीजिए। उन्होंने कहा मदन जी, मैंने इसलिए आपको रोका है कि मैंने आपकी नजरों ने समझा गाना जो सुना है का माल गाना है। और फिर वो चले गए और मेरे पिताजी ने माताजी की तरफ देख के कहा कि देखो मेरे लिए अवार्ड यही है।

संगीतकार मदन मोहन ने थोड़े समय तक फौज में नौकरी की थी। जब चेतन आनंद ने बनाई फिल्म हकीकत, तो संगीत की जिम्मेदारी सौंपी मदन मोहन को और उन्होंने इस फिल्म में दिया बड़ा ही शानदार संगीत, जिसकी मिसाल है ये देशभक्ति गीत।

दोस्तों, मदन मोहन न केवल सुरीले संगीतकार थे बल्कि उन्होंने सुरीला स्वर भी पाया था। वो खुद भी गाते थे। आकाशवाणी लखनऊ में काम करते हुए मदन मोहन ने संगीत के राग रागिनियों का भी रियाज और प्रयोग किया। इन राग रागिनियों का उन्होंने फिल्मी गानों में भी खूब खूब प्रयोग किया।

सन 1975, जुलाई का भीगा भीगा मौसम, जुलाई के 14 तारीख को मदन मोहन ने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया। हम सब